मेजर वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संबद्ध 1948 के आषाढ़ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

0: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको श्रीनिवास सहाय की वार्ता सुनवा रहे हैं। वार्ता का विषय है अमरूद के बाग की देखभाल।
1: नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख फलों में अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें विपरीत दशाओं के प्रति काफी हद तक सहिष्णुता पाई जाती है। यह दूसरे फल वृक्षों की अपेक्षा अधिक गर्मी और सूखा सहन कर सकता है। अपनी लोकप्रियता और अनुकूलता के कारण इसकी बागवानी पूरे भारत में की जाती है। अमरूद के पौधों में सुंदर एवं मजबूत ढांचा देने के लिए 2 से 3 वर्ष तक कटाई छटाई की जाती है। ढांचा देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जमीन से 30 से 40 सेंटीमीटर तक मुख्य तने पर कोई शाखा न हो। इसी ऊंचाई पर मुख्य तने से 3-4 शाखाओं को चारों तरफ समान रूप से निकलने देना चाहिए। तदुपरांत पौधे के आकार को नियमित रखने एवं अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर आवश्यक काट छाट करते रहना चाहिए। कटाई छटाई मार्च से जून तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। अमरूद के छोटे पौधों को नियमित रूप से सिंचाई देते रहना चाहिए जिससे पेड़ की जड़ क्षेत्र नम बना रहे। सर्दियों में 20 से 25 दिन तथा गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर थाला विधाई विधि से सिंचाई करते रहने से पौधों का विकास अच्छा होता है। सिंचाई के बाद समय समय पर गुड़ाई एवं घास निकालते रहना चाहिए। फल लगने वाले पौधों में फूल के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि जब फूल आ रहे हों उस समय सिंचाई नहीं करें। ऐसा करने से फूल गिर जाएगा एवं फल कम लगेंगे। खरपतवार निकालते समय गुड़ाई कम करना चाहिए क्योंकि अमरूद की जड़ें ऊपरी सतह पर ही होती हैं। प्रारंभ के 2-3 वर्षों में बाग के रिक्त जगहों पर कुछ सब्जी वाली फसलें जैसे मटर, गोभी, ग्वार, लोबिया आदि उगाई जा सकती है। जब फल मिलने आरंभ हो जाए तो अंतः सस्यन नहीं करना चाहिए। नए बागों में रबी में गोभी, मटर, फ्रेंच बीन और मेथी, खरीफ में लोबिया, ग्वार, उर्द और मूंग तथा जायद में कद्दू वर्गीय सब्जियां उगाई जा सकती हैं। जिन क्षेत्रों में बरसात अधिक होती हो और भूमि क्षरण यानी कि कटाव की समस्या हो वहां बरसात में भूर संरक्षी फसलें जैसे लोबिया, ग्वार, सनई, ढैंचा आदि को बाग के खाली जगहों में लगाना चाहिए। अंतः सस्यन करते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतः फसलें कम बढ़ने वाली होनी चाहिए। फसल लगाते समय कम से कम 1 मीटर जमीन पेड़ के चारों तरफ छोड़ देनी चाहिए। इन फसलों की सिंचाई की आवश्यकता मुख्य फसल जैसी होनी चाहिए। ऐसे फसलों का चुनाव करना चाहिए जो भूमि से बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व लेते हों। गन्ना, अरहर, मक्का, ज्वार आदि फसलें बाग में नहीं लगानी चाहिए। अच्छी पैदावार और स्वादिष्ट फलों के लिए पौधों को नियमित खाद और उर्वरक देना आवश्यक होता है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा को 2 भागों में बांटकर पहला भाग जून जुलाई में और बाकी बचा पोषक तत्व अक्टूबर माह में देना चाहिए। जून जुलाई में गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा तने से 1 मीटर दूरी पर पौधों के छत्रक के नीचे गोलाई में 15 सेंटीमीटर गहरी नाली में देकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। यूरिया की बची आधी मात्रा को अक्टूबर में पेड़ों के नजदीक आप दें। यदि वर्षा न हो रही हो तो खाद के बाद पानी देना आवश्यक होता है जिससे नमी बनी रहे। अमरूद के पेड़ों में 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 260 ग्राम यूरिया, 375 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 100 ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति पेड़ प्रति वर्ष देना चाहिए। इतनी ही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ 50 वर्षों तक बढ़ाते रहना चाहिए। 5 वर्षों के बाद प्रति वर्ष 5वें वर्ष में जितना खाद एवं उर्वरक दिया गया हो उतना ही देना चाहिए। कुछ इलाके में अमरूद के पौधों में जस्ते की कमी पाई गई है। इसकी कमी से पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और बढ़वार भी रुक जाती है। टहनियां सूखने लगती हैं, फूल भी कम लगते हैं और लगे हुए फल फटकर सूख जाते हैं। जस्ते की कमी के पूर्ति के लिए 500 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति पेड़ प्रति वर्ष थाले में देकर पूरी की जा सकती है। जिंक सल्फेट को भूमि में मिलाने के पूर्व सड़ी हुई कंपोस्ट या गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। इससे जस्ते की उपलब्धता बढ़ जाती है। अमरूद के पेड़ से 1 वर्ष में 3 फसलें ली जा सकती हैं, लेकिन व्यावसायिक तौर पर एक ही फसल लेने का सुझाव दिया जाता है। फसल तोड़ने के अनुसार उसे बरसात, जाड़ा और बसंत में विभाजित करें। इस तरह से अमरूद के बाग की देखभाल करें और लाभ उठाएं। भारत

0: आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण सभा में समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुँचा सकें।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएफ के 110.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
4: भारत संतों की भूमि रही है और यहाँ एक से बढ़कर एक विचारवान संत हुए हैं। उन्हीं में से एक थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनके पास आध्यात्मिक संपदा प्रचुर मात्रा में थी। वे इसका उपयोग भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार और विस्तार में लगाना चाहते थे, लेकिन स्वयं इस हालत में नहीं थे कि सारी दुनिया को घूम सकें। नई पीढ़ी के बुद्धिजीवियों को अपनी क्षमता के आधार पर प्रभावित करना था। इसके लिए परमहंस जी को एक सहायक की आवश्यकता थी। उन्हें विवेकानंद मिले। विवेकानंद को उन्होंने परखा और ये पाया कि ये व्यक्ति प्रामाणिक भी है और सुयोगी भी। उन्होंने निश्चय किया कि इस युवक के लिए चिरसाध्य साधना में लगकर अपनी कमाई के बलबूते वो प्रयोजन सिद्ध करना थोड़ा कठिन होगा। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि उनकी जो शक्तियां हैं, जो आध्यात्मिक उपार्जन उन्होंने किया है, वो सारी विवेकानंद को दे दी जाए। धन संपत्ति कमाने की तरह ही आध्यात्मिक उपार्जन भी है। अगर किसी व्यक्ति ने प्रचुर मात्रा में धन कमाया हो, वैभव कमाया हो, तो वो जिसे चाहे उसे दे सकता है। ये उसकी अपनी मर्जी की बात है। इसी तरह से जिसने आध्यात्मिक ऊर्जा कमाई हो, उसे कल्याण के लिए खर्च करना चाहता हो, वो किसी योग्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने यह सोचा कि अगर विवेकानंद स्वयं साधना करके आध्यात्मिक उपार्जन करे तो एक बड़ा कालखंड इस पर खर्च हो जाएगा, एक लंबा समय लग जाएगा और कुछ काम ऐसे हैं जो तत्काल किए जाने योग्य हैं, इनमें देर हो जाएगी। इसीलिए सरल रास्ता यही था कि वे अपनी आध्यात्मिक संपदा हस्तांतरित कर दें। परमहंस जब शरीर त्यागने लगे तो पास ही विवेकानंद बैठे थे। उन्होंने उनके शरीर पर अपना पैर रखा। विवेकानंद के शरीर में बिजली कौंध गई। चकित होकर उन्होंने गुरुदेव की ओर देखा। उत्तर मिला, जो कुछ पास में था सो सब दे दिया, अब इसे अभीष्ट प्रयोजनों में लगाना। मैं इस शरीर से मुक्त हो रहा हूं, इस काया को ठिकाने लगा देना। विवेकानंद ने वही किया, अमानत को उन्हीं के काम में लगाया। अपनी निज की महत्वाकांक्षा के लिए उसमें से रत्ती भर भी खर्च नहीं किया। वे जब विदेशों में प्रचार के लिए गए, उन्होंने कहा है, उन्हें हर घड़ी यही अनुभव होता रहा, कोई दिव्य शक्ति उनकी वाणी और मस्तिष्क पर छाई हुई है और वही बोल रही है। अस्त व्यस्त होती भारतीय संस्कृति में प्राण लौट आए, शक्तिपात सार्थक हुआ। जिस तरह से अपनी सुयोग्य बेटियों को किसी को सौंपते समय पिता बार बार सोचकर यह निश्चय करता है कि कहीं ये बेटी कुपात्र के घर तो नहीं जा रही है, उसी तरह कोई भी गुरु जिसने आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित की है, वो बहुत गंभीरता से सोच समझकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उसे प्रदान करता है, उसमें हस्तांतरित करता है, जो उसे ठीक से व्यय करे और सदुपयोग करे। वैदिक ऋषि ने कहा था, मैं राज्य नहीं चाहता, न सुख न स्वर्ग न मुक्ति, दूसरों के दुख दूर करने भर की मेरी कामना है। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा था, जब तक एक भी प्राणी बंधन में बंधा है, तब तक उसे मुक्त करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूंगा। ऐसी उदारता आध्यात्मिक चेतना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है और हमेशा रहेगी।
0: आप सुन रहे थे आज का चिंतन मनन। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 225.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और FM के 110.1 मेगाहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में प्रातः के 6:10 हुए हैं। निवेदित है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आरंभ में सुनिए ये मातृवंदना।

सही समय आने पर ईश्वर आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए सही समय आने का इंतजार कीजिए और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए।

एक ईश्वर हमारे घर में भी है, जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। उस ईश्वर की वंदना करना हमारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी। तो फिर ईश्वर को खोजने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च क्यों जाएं? वो तो हमारे समक्ष ही है। आइए उसी की वंदना करें। वो सब कुछ दे सकता है जिसकी हमें आकांक्षा है, जो हमें इस दुनिया में लाया है, वही हमारा पालन पोषण भी करेगा। विश्वास कीजिए और माँ बाप की वंदना कीजिए।

ऐसे लोगों का मन कभी एकाग्र नहीं होता जो अपने काम को छोड़कर दूसरे के काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहते हैं ना कि लोग अपने दुख को देखकर उतने दुखी नहीं हैं जितना बगल वाले के सुख को देखकर। तो हमें अपने आप को आत्मकेंद्रित करना चाहिए, हमें खुद पर ही ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह अपने आप को प्रभु की भक्ति में लीन करेंगे।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक प्रसारण वंदना। प्रसारण आपके सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। स्वास्थ्य चर्चा इस कार्यक्रम में आज हम आपको डॉक्टर किशोर कुमार सिन्हा से ली गई भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं। भेंटवार्ता का विषय है बच्चों में होने वाले बरसाती रोग। आपसे बातचीत कर रहे हैं सचिन कुमार।

0: पीलिया जिसे अंग्रेजी में जॉन्डिस भी कहते हैं। परिचय, यह रोग प्राचीन काल से ही होते आ रहा है। इसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में भी है। यह एक वायरस।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बातें कर रहे हैं बच्चों में होने वाले बरसाती रोग के बारे में। इन बातों की जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किशोर कुमार सिन्हा को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। बरसात का मौसम है, बच्चे काफी केयरलेस भी होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, ऐसे में उन्हें कौन कौन सी बरसाती बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: जो सबसे बेहतर देखा जाता है वो सर्दी खांसी बुखार हैं, उसके बाद दस्त रोग हैं, फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बीमारी होती है जिसमें दम फूलता है बच्चे में, वो निमोनिया से उसका लक्षण मिलते हैं थोड़े थोड़े, और फिर टाइफाइड और मलेरिया और डेंगू फीवर, ये खासकर कम जो प्राय देखा जाता है। और मस्तिष्क ज्वर जो है इसकी भी संभावना बढ़ जाती है बरसात के दिनों में।
1: जी, अगर हम सर्दी खांसी बुखार की बात करें जो कि कॉमन है, उसमें कौन कौन से लक्षण सामने आते हैं?
2: प्रायः सर्दी खांसी बुखार के लक्षण जो है उसमें शुरुआत जो है सर सिर दर्द या बुखार या फिर खांसी, सर्दी के लक्षण भी रहते हैं। कभी कभी उसमें दस्त भी देखा जाता है, और ये बच्चा जो है सुस्त हो जाता है, खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। ये अमूमन जो है पाँच से सात दिन तक ये बीमारी रहती है, और 5-7 दिन के बाद जो है आप जो है उसका जो प्रायः जो लक्षण है उस अनुसार उसका इलाज किया कर दिया जाता है, और 5-7 दिन के बाद जो है ये स्वतः बीमारी ये खत्म हो जाती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मुक्त कोई इलाज संभव अभी तक नहीं है निकला हुआ है।
1: जी, तो ये बुखार जो हो जाता है बरसात में, इसका मुख्य कारण क्या है?
2: मुख्य कारण है अगर लापरवाही बरत रहे हैं, या पानी में बच्चा भींग गया है, मान लीजिए आप भींग जाता है, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन करता है, या आइसक्रीम वगैरह का सेवन करता है, ठंडे चीज़ों का सेवन करने से प्रायः जो है ये प्रेसिपिटेट होता है, ये बीमारी देखने बढ़ जाती है।
1: जी जी, तो परहेज करने से हम सर्दी खांसी और बुखार से बच्चों को बचा सकते हैं।
2: जो कारण मैंने बताया जिसका कारण से हो सकता है उससे परहेज करें तो ये बीमारियों से बचे जा सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दस्त भी बच्चों में हो जाता है, या कह लें कि डायरिया अतिसार, तो इसका क्या मुख्य कारण है?
2: दस्त रोग भी ये भी वायरल इलनेस हैं, वायरली रखते हैं हम लोग जो मुख्य, इसके जो मुख्य लक्षण रहते हैं उल्टी, पेट दर्द और पतला पखाना होने की संभावना रहती है। इसमें भी खाने की इच्छा जो है शक्ति जो है वो इच्छा कम होती है। अमूनन जो है उल्टी पेट दर्द और पतला पखाना, ये और कभी कभी जो है खून मतलब ये दस्त में जो है और ये खून भी आ सकता है, ये सब प्रयास देखा जाता है। ये भी 5-7 दिन तक अमूनन रहते हैं, और खाली इसका मुख्य इलाज में जो है ORS पाउडर और जिंक का सिरप का सेवन करना चाहिए। जिंक खासकर 14 दिनों तक दिए, और ORS अगर ये ORS का मैंने घोल अगर आप दे रहे हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं मुक्ता, उसका सेवन करें तो यही दो मुक्ता ये इलाज हैं। बाकी और कोई इलाज इसमें जो दिया जाता है उसका कोई ज़्यादा तक महत्व नहीं देखा गया है।
1: क्या बाहरी खानपान, दूषित खानपान से भी हो सकता है दस्त?
2: और सबसे कारण इसका दस्त रोग का होने का जो है पानी का जो है प्रदूषण हो जाने के कारण ये दस्त रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर जैसे बाहर में अगर आप मान लीजिए बाहर का चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, खास कर वो खुले में रखे हुए है, तो वो जो है ये संभावना प्रायः पानी के प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। अगर आप बाहर का पानी स्वतः जो है स्वच्छ नहीं है और उसका सेवन कर रहे हैं, या बाहर का ठेला का या कहीं पर खुले में रखा हुआ शो का सेवन कर रहे हैं, तो ये दस्त रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: जी,
2: इसमें एक और बीमारी जो है मस्तिष्क ज्वर है।
1: जी, जी।
2: उसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है मस्तिष्क ज्वर की, तो ये जानलेवा बीमारी हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए मुख्यतः जैपनीज बी इनकेफ्लाइटिस होती है, उसका टीका भी उपलब्ध है। बच्चों को माताओं को इसका टीका जरूर दिलवाना चाहिए, ताकि जो है समय रहते इसका जानलेवा ये साबित ना हो सके। ये बीमारी मैं आपको बताना जरूरी था।
1: जी, तो अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें कौन कौन से ऐसे बचाव करने चाहिए जिसके कारण बच्चों को हम बरसाती बीमारियों से बचा सकें।
2: बचाव के लिए जैसे दस्त की बीमारी है तो उसमें जो है रोटा वायरस खास कर दिखा जाता है, तो रोटा वायरस का वैक्सीनेशन टीका हम लोग दिलवा सकते हैं बच्चों को। और बाकी जो है बचाव के लिए हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पेय पदार्थ या आइसक्रीम या फिर एसी का दुरुपयोग या साफ सुथरा नहीं रहने से जो है ये बीमारी की अगर साफ सुथरा रखें तो ये बीमारियों से बचा जा सकता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बच्चों में होने वाले बरसाती बीमारियों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर किशोर कुमार सिन्हा से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटवार्ता का विषय था बरसात में होने वाले बच्चों में रोग। आपसे बातचीत कर रहे थे सज्जन कुमार। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस कांड पाठ। कलाकार हैं रविंद्र साठे।

सागर तट पर वानरों का विशाल समूह संपाति नामक गिद्ध से सीता के लंका की अशोक वाटिका में होने का पता पा चुका है। वृद्ध संपाति ने उन्हें यह भी बता दिया है कि जो सामने 400 कोस के विस्तार में फैले समुद्र को लांग सकेगा वही श्रीराम का कार्य संपन्न करने में सफल होगा। अपनी बात समाप्त कर जब गिद्ध चला गया तो वानरों को अपनी अक्षमता की प्रतीति हुई। ऋक्षराज जामवंत वृद्ध हो चुके हैं, उनके शरीर में पहले वाला बल नहीं है। अंगद को सागर पार चले जाने का आत्मविश्वास तो है परंतु लौट आने में संदेह है। किंतु वो तो वानर सेना के नायक हैं, उन्हें कैसे जाने दिया जा सकता है। जामवंत ने तब पवन पुत्र हनुमान के बल तथा सक्षमता का स्मरण दिलाया। बल में वे पवन के समान हैं और उसी प्रकार बुद्धिमान, विवेकशील तथा ज्ञान विज्ञान के भंडार। ऐसा कौन सा काम है जो वे नहीं कर सकते। ये सुनते ही हनुमान ने पर्वत सा आकार बना लिया। सोने जैसा वर्ण और शरीर का तेज उनकी सक्षमता का आभास देते हैं। उन्हें स्वयं अब इस बात का भान हुआ कि सामने लहराते सागर को वे खेल खेल में लांग सकते हैं।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस कानपाठ। कलाकार थे रविंद्र साठे। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। कार्यक्रम विवरण इसमें सुनिए आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रम शिला। इस कार्यक्रम में आज हम आपको मनोरंजन से जुड़ी कई जानकारियां देंगे और फल संगीत सुनवाएंगे। कानून की बातें कार्यक्रम में आपको एक वार्ता सुनवाएंगे और भी बहुत कुछ होगा इस कार्यक्रम में जो हम लाते हैं आपके लिए प्रतिदिन। फिल्म संगीत के कई कार्यक्रम आज की सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे। इसके लिए समय होगा प्रातः 9:06, प्रातः 10:00, 11:00, दोपहर 2:30 पर, शाम 5:30 पर और रात्रि 8:00। कार्यक्रम होंगे नगमे नए पुराने फिल्म संगीत पुराने फिल्मों से, फोन इन आपकी पसंद चित्रपट से और रजनीगंधा। आज प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के हमारे कलाकार होंगे राजीव कुमार सिंह। प्रातः 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत, कलाकार होंगे जयप्रकाश शर्मा। दोपहर 12:00 आप सुनते हैं महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। दोपहर 12:30 पर शास्त्र संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम में आज आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन और उस्ताद साबरी खां का सारंगी वादन सुनेंगे। दोपहर 1:00 और दोपहर 1:20 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग, कलाकार होंगे गौतम कुमार मंडल। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक संताली पत्रिका कार्यक्रम जियोन झरना। दोपहर बाद 3:00 हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक संगीत और दोपहर बाद 3:25 से शाम 5:00 तक आप सुनेंगे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। शाम 5:00 हम आपको सुनवाते हैं युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक प्रसारण युववाणी। शाम 6:00 आप सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे लोकगीत। शाम 7:52 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी, कलाकार होंगे ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती और उसके बाद रात 10:00 हम आपको सुनवाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इन दोनों कार्यक्रमों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप कार्यक्रम विवरण में आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और FM के 110.1 मेगाहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, इस खुशनुमा सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से हो रही बारिश ने सभी को खुश किया है। पिछले दिनों पड़ रही गर्मी ने हम सबको परेशान जरूर किया है और उमड़ती घुमरते बादल सिर्फ दिखाई पड़ते थे, बूंदों में तब्दील नहीं हो रहे थे। ये हम सब के लिए जरूर चिंता का विषय था। किसान के मुख मुरझाए हुए थे। आखिर धान की रोपनी जो करनी है, बिचड़ा जो गिराना है। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, हम सभी का जीवन खेतों पर ही निर्भर है। अगर फसल नहीं होगी तो फिर हम सब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से परेशान तो होंगे ही। हालांकि रात में हो रही रुक रुक कर बारिश और आज सुबह से हुई बारिश ने लोगों को सुकून तो जरूर दिया है। तो आइए हम इस बारिश की बूंदों के साथ साथ आप तमाम श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपको बता दें, तारीख है 11 जुलाई, दिन शनिवार, और समय की अगर बात करें तो समय हमारे स्टूडियो घड़ी में हैं 7:02:38। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएं कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम चिंतित हैं मौसम के इस बदलते मिजाज को लेकर। अल नीनो का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। हमारे राज्य की अगर बात करें तो बारिश तो बहुत कम है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 50-60% बारिश अभी तक कम हुई है। वहीं अगर उत्तर के राज्यों की बात करें, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ पर अतिवृष्टि हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि लोगों को काफ़ी परेशानी का अनुभव करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में लोगों को अपना ध्यान रखना है। जल का संरक्षण हमारे क्षेत्र में जरूर करना चाहिए, क्योंकि कम होती बारिश से आगे आने वाले समय में हमें कई समस्याओं से जूझना पड़ेगा। भूमि जल का स्तर निश्चित रूप से नीचे की ओर जाएगा और हमें इसके लिए अपने आप को अभी से तैयार करना होगा। हमें जल का संरक्षण जरूर करना चाहिए। जल एक अमूल्य निधि है साथियों, वो सीमित मात्रा में है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जल बहुत दिन तक हमारे साथ नहीं है। आने वाले कई दशकों के बाद जल संकट एक भयावह रूप लेगा और उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी कि हम जल का संरक्षण करें। तो इसके लिए आप पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। सार्वजनिक जगहों पर जहां भी आप देखें कि नल से पानी टपक रहा है, उस नल को बंद करें। रास्ते में बेवजह पानी न गिराएं। धार्मिक आयोजनों में पानी का दुरुपयोग रोकें। अपने यहाँ जो आयोजन होते हैं, शादी विवाह और भी बहुत सारे जो आयोजन होते हैं, उसमें पानी की बर्बादी को रोकने का हमें पूरा इंतजाम करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ उतनी ही पानी का उपयोग करें जितने की हमें ज़रूरत है। और इस प्रकार से और भी कई उपायों को अपनाकर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। आज के समय में जब बारिश कम हो रही है, भूमि का स्तर जल स्तर गिर रहा है, नली आपके कुएं, नदी इत्यादि सूख रहे हैं, तो इस स्थिति में जल का संरक्षण करना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए हम आपको सबसे पहले बता दें मौसम के बारे में। तो दोस्तों, आगे आने वाले समय में या यूँ कहें कि आगे आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मौसम विभाग द्वारा ये बताया गया है कि आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। ज़िले में 1-2 स्थानों पर गरज और चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। अगर सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो सुबह में 90 से 95% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान में कहा गया है कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना है। मौसम की चेतावनी भी दी गई है दोस्तों कि जिले में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इस स्थिति में आपको अपनी पूरी सुरक्षा करनी चाहिए। आंधी बिजली और तेज़ हवा में फसलों पर वज्रपात होने की संभावना होती है। किसानों को खेत का कार्य स्थगित करना चाहिए और फसल और पशुओं को सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। किसानों को सलाह दी गई है कि आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए फसलों में सिंचाई के को स्थगित कर दें। खाद, कीटनाशक और छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। तो ये तो दोस्तों थी मौसम की जानकारी और अब आइए आपको लिए चलते हैं सुगम संगीत की ओर। आज के हमारे कलाकार हैं शर्मिला गुप्ता, तो आइए उनसे सुनते हैं आरंभ में ये नाचारी।
1: उसकी पहचान इस बात

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just ₹6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
3: दोस्तों, आइए सुगम संगीत के कार्यक्रम में एक और महेश वाणी हम सुनते हैं।
4: और करोड़ों श्रमिक

0: सुगम संगीत सुनने के बाद आइए हम आपको लिए चलते हैं कानून की बातें की ओर। दोस्तों, हम सभी काम करते हैं, लेकिन सरकार ने हमारे संरक्षा के लिए हमारे लिए एक लेबर कोड भी बनाया है, जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है कि ये अधिनियम क्या है और सरकार कानून के द्वारा हमारी किस प्रकार हमारे अधिकारों की रक्षा करती हैं। इस बारे में आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता अंजलि आनंद, जो आपको जानकारी दे रही हैं नए श्रम कानून, जैसे हम न्यू लेबर कोड भी कहते हैं। तो आइए न्यू लेबर कोड के बारे में अधिवक्ता अंजनी आनंद से जानकारी प्राप्त करते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज कानून की बात में मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रही हूं जो कि केवल कानून का विषय नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार और करोड़ों श्रमिकों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। वह विषय है नई श्रम संहिताएं, अर्थात न्यू लेबर कोड्स। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 नई श्रम संहिताएं लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा श्रम सुधार है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाना, उद्योगों को सरल बनाना, कानूनी व्यवस्था प्रदान करना और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाना है। लेकिन एक अधिवक्ता के रूप में मेरा मानना है कि किसी भी कानून को समझने के लिए केवल सरकारी घोषणा पर्याप्त नहीं होती, हमें यह भी देखना होता है कि उस कानून का वास्तविक प्रभाव आम नागरिक, श्रमिक और नियोक्ता पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आखिर श्रम सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न समयों पर अलग अलग परिस्थितियों में श्रम कानून बनाए गए, परिणाम यह हुआ कि भारत में 29 अलग अलग श्रम कानून अस्तित्व में आ गए। प्रत्येक कानून की अपनी प्रक्रिया थी, अपना रजिस्टर था, अपना निरीक्षण तंत्र था और अपनी कानूनी जटिलताएं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कई बार कानूनों का पालन करना स्वयं एक कठिन कार्य बन गया। उद्योगों को अनुपालन में परेशानी होती थी, श्रमिकों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती थी और विवादों के समाधान में अनावश्यक विलंब होता था। इसी समस्या को समाप्त करने के लिए 29 कानूनों को 4 बड़ी श्रम संहिताओं में समाहित किया गया। पहला, वेतन संहिता 2019। दूसरा, औद्योगिक संबंध संहिता 2020। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। चौथा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थिति संहिता 2020। अब प्रश्न उठता है कि इन चारों संहिताओं से क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेतन संहिता की। किसी भी कर्मचारी की सबसे पहली चिंता उसका वेतन होता है। नई वेतन संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम वेतन मिले और समय पर मिले। पूरे देश में वेतन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और समान बनाने का प्रयास किया गया है। यह व्यवस्था केवल श्रमिकों को लाभ देने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस कर्मचारी को समय पर और उचित वेतन मिलता है, वह अधिक उत्पादक और अधिक समर्पित होकर कार्य करता है। अब बात करते हैं औद्योगिक संबंध संहिता की। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तब मजबूत होती है जब उद्योग और श्रमिक दोनों के बीच संतुलन बना रहे। यदि उद्योगों को अत्यधिक कठिन कानूनों में जकड़ दिया जाए तो निवेश प्रभावित होगा, और यदि श्रमिकों की अधिकार कमजोर कर दिए जाएं तो सामाजिक न्याय प्रभावित होगा। नई संहिता इसी संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करती है। यह विवादों के शीघ्र समाधान, औद्योगिक शांति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी, विकास का अर्थ केवल उद्योगों का लाभ नहीं है। विकास का अर्थ यह भी है कि श्रमिक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। भारत का संविधान केवल आर्थिक प्रगति की बात नहीं करता, बल्कि सामाजिक न्याय की भी बात करता है, और श्रम कानून उसी सामाजिक न्याय का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। अब हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता की। यदि मुझसे पूछा जाए कि नई श्रम संहिताओं का सबसे

0: महत्वपूर्ण भाग कौन सा है तो मैं बिना किसी संकोच के कहूंगी सामाजिक सुरक्षा संहिता, क्योंकि पहली बार कानून ने यह स्वीकार किया कि भारत का श्रमिक वर्ग केवल फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाले युवक भी श्रमिक है, डिलीवरी एजेंट भी श्रमिक है, घरेलू कामगार भी श्रमिक है, निर्माण कार्य में लगा मजदूर भी श्रमिक है और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी श्रमिक है। नई संहिता इन सभी को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास करती है। यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हुई तो करोड़ों परिवारों को सुरक्षा का एक नया आधार मिलेगा। यह संहिता 9 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर बनाई गई है। शामिल किए गए पुराने कानून, इस संहिता ने 9 पुराने कानूनों को एक जगह समेट दिया है, जिनमें प्रमुख हैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, उपदान भुगतान अधिनियम, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। इनके कवरेज का कितना विस्तार है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, भारत में पहली बार जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर जैसे ऐप आधारित डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवरों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। असंगठित क्षेत्र, खेतिहर मजदूर, निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक और रेहड़ी पटरी वालों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्रेच्युटी के नियम, अब निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की लगातार नौकरी की शर्त नहीं है, उन्हें 1 साल की सेवा के बाद भी अनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी। वेतन की नई परिभाषा, वेतन की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। भत्ते आपकी कुल सैलरी के 50% से अधिक नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी कम से कम 50% होगी, जिससे आपका पीएफ योगदान बढ़ेगा। महिला सुरक्षा और लाभ, 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश जारी रहेगा और कंपनियों में क्रेच की सुविधा अनिवार्य होगी। नियोक्ताओं के लिए बदलाव, रजिस्ट्रेशन, सभी प्रतिष्ठानों के लिए एक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, अब अधिकारियों की भूमिका केवल जांच करने की नहीं बल्कि वेब आधारित सहायता देने की होगी। जुर्माना और राहत, छोटी गलतियों के लिए सीधे जेल की सजा के बजाय नियोक्ताओं को सुधार के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता की। एक सभ्य समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह अपने श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कितना महत्व देता है। किसी भी कर्मचारी का अधिकार केवल वेतन प्राप्त करना नहीं है, उसे सुरक्षित कार्यस्थल मिलना चाहिए, उसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलना चाहिए, उसे मानवीय और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलना चाहिए। नई संहिता का उद्देश्य कार्यस्थलों को अधिक सुरक्षित और उत्तरदायी बनाना है और यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब मैं इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर आना चाहती हूँ। किसी भी कानून की सफलता उसकी भाषा में नहीं, उसके क्रियान्वयन में होती है। भारत में समस्या कानूनों की कमी नहीं है, समस्या कई बार उसके प्रभावी पालन की होती है। कागज पर अधिकार देना आसान है, लेकिन जमीन पर अधिकार दिलाना कठिन है। कागज पर सुरक्षा लिख देना आसान है, लेकिन प्रत्येक श्रमिक को वास्तव में सुरक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होगा कि कानून कितना अच्छा लिखा गया है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि कानून का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं। क्या मजदूर को समय पर वेतन मिला? क्या महिला कर्मचारी सुरक्षित महसूस कर रही है? क्या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा मिली है? क्या कार्यस्थल वास्तव में सुरक्षित बना है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तभी इन श्रम सुधारों को सफल कहा जाएगा। एक अधिवक्ता के रूप में मैं यह मानती हूं कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके श्रमिकों में निहित होती है। कारखानों की मशीनें स्वयं उत्पादन नहीं करती, उत्पादन श्रमिक करता है। सड़कों का निर्माण मशीनें नहीं करती, निर्माण मजदूर करता है। अर्थव्यवस्था केवल नीतियों से नहीं चलती, अर्थव्यवस्था श्रम, परिश्रम और मानव संसाधन से चलती है। इसलिए श्रमिकों का सम्मान केवल संवैधानिक दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नई श्रम संहिताएं भारत की श्रम व्यवस्था को आधुनिक बनाने का एक बड़ा प्रयास है। इनका उद्देश्य कानूनों को सरल बनाना, उद्योगों को सुरक्षा देना, श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, लेकिन किसी भी कानून की वास्तविक परीक्षा उसके परिणाम से होती है। यदि श्रमिक सुरक्षित होगा तो उद्योग मजबूत होंगे, यदि उद्योग मजबूत होंगे तो रोजगार बढ़ेगा, यदि रोजगार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और यदि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत और अधिक सशक्त बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, न्यू लेबर कोड के बारे में अभी आप अंजलि आनंद अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त कर रहे थे। बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई कि किसी भी कानून को केवल बना देने से नहीं होगा, उसकी व्यवहारिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस तरीके से लागू किया जा रहा है और उसका लाभ जिनके लिए वो कानून बनाया गया है उस तक पहुंचता है या नहीं। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम अधिवक्ता अंजलि आनंद को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं रेलवे सूचना की ओर। भागलपुर रेलवे स्टेशन से प्राप्त रेलगाड़ियों के आवागमन संबंधित सूचना के बारे में आपको बता दें कि 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसके भागलपुर से खुलने का समय प्रातः 7:50 है, जो कि भागलपुर से खुलकर जयनगर को जाती है, ये गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर से प्रस्थान करेगी। 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, जो कि जमालपुर से चलकर हावड़ा को जाती है, जिसके भागलपुर आने का सही समय प्रातः 7:45 पर है, ये गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर स्टेशन आएगी। 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो आनंद विहार दिल्ली से चलकर भागलपुर को आती है, जिसके भागलपुर आने का सही समय प्रातः 8:15 है, ये गाड़ी भी अपने सही समय पर भागलपुर स्टेशन पहुँचने की संभावना है। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि डिब्रूगढ़ को से आकर दिल्ली की ओर जाती है, जिसके भागलपुर आने का सही समय प्रातः 8:05 है, ये गाड़ी अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा विलंब से आने की संभावना है। 15416 जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर, जो कि जमालपुर से चलकर साहेबगंज की ओर जाती है, जिसके भागलपुर आने का सही समय प्रातः 8:37 है, ये गाड़ी भी अपने सही समय पर भागलपुर स्टेशन आएगी। 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसके भागलपुर आने का सही समय प्रातः 9:00 है, ये गाड़ी भी अपने सही समय पर भागलपुर स्टेशन पहुंचने की संभावना है। 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू, जिसके भागलपुर आने का सही समय प्रातः 9:15 है, ये गाड़ी भी अपने सही समय पर भागलपुर स्टेशन आएगी। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि मालदा से चलकर क्यूल को जाती है, जिसके भागलपुर आने का सही समय प्रातः 9:35 है, ये गाड़ी भी अपने सही समय पर भागलपुर स्टेशन आएगी। 13229 गोड्डा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, जो कि गोड्डा से चलकर राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना को जाती है, इस गाड़ी के आने का सही समय प्रातः 10:15 है, ये गाड़ी भी अपने सही समय पर भागलपुर स्टेशन पहुंचने की संभावना है। और 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसके भागलपुर आने का भागलपुर से चलने का सही समय प्रातः 11:55 है, ये गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर स्टेशन से प्रस्थान करेगी। तो अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे रेलगाड़ियों के आवागमन संबंध के बारे में, और आइए अब हम आपका कुछ मनोरंजन भी कर लें। आइए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: द फ्यूचर फील्स एफर्टलेस विद द ग्रैंड विटारा, बिकॉज़ सम जर्नीज डिजर्व मोर देन जस्ट मूवमेंट, दे डिजर्व कंफर्ट, प्रेजेंस एंड पीस ऑफ माइंड। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग होम द ग्रैंड विटारा एट जस्ट ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TLC apply.
1: Nexa.
4: दोस्तों, ये तो हम और भी सुनेंगे, लेकिन आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास के बारे में। दोस्तों, इतिहास बहुत कुछ कहता है, वो हमें बताता है अपने बीते दिनों के बारे में। तो आज के बारे में हम भी जानकारी प्राप्त कर लें कि आज के दिन इतिहास में क्या घटनाएं घटी थी। तो ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार आज 11 जुलाई वर्ष का 192वां दिन है, और लीप वर्ष की बात करें तो 193वां दिन है, और साल में अभी 173 दिन और शेष हैं। अगर महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो आज ही के दिन 1922 में हॉलीवुड ब्राउल की शुरुआत हुई थी। 2002 में चोंग शोंग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 2003 में आज ही के दिन लाहौर में दोस्ती बस और दिल्ली से सदाए सरहद बस का परिचालन हुआ था। 2004 में HIV एड्स पर एशियाई मंत्रियों का सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था। मुंबई उपनगर में आज ही के दिन सन 2004 में 7 रेल बम विस्फोट हुए थे। 2007 में चर्चित चित्रकार MF हुसैन ने न्यूयॉर्क की कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था, और 2008 में पाकिस्तान में वर्जिस्तान में एक अमेरिकी हवाई हमले में 11 लोग घायल हुए थे। ये तो वो घटनाएं थी जो इतिहास में आज ही के दिन घटी थी। अब आइए नज़र डालते हैं आज ही के दिन जिन महान विभूतियों का जन्म हुआ उन्हें हम याद कर लें। 1956 में आज ही के दिन अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार अमिताभ घोष का जन्म हुआ था। 1920 में आज ही के दिन B.R. नेदुनचेजियन, जो कि 3 बार तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। 1902 में आज के दिन सरदार बलदेव सिंह, जो कि भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और देश के प्रथम रक्षा मंत्री थे, उनका भी जन्म हुआ था। 1899 में राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री C.S. वेंकटाचार का आज के दिन जन्म हुआ था, और 1857 में सी शंकरन नायर, जो कि भारत के न्यायाधीश और राजनेता थे, उनका भी जन्म हुआ था। तो आज के दिन हम इनको याद करते हैं, और अब हम उन्हें याद करते हैं जो आज हमें छोड़कर चले गए थे, यानी कि जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। इसमें प्रसिद्ध भारतीय लेखक विश्व साहिनी, जिनका निधन 2003 में आज ही के दिन हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का आज ही के दिन 2011 में निधन हुआ था। शियाओं के नज़ारे इस्माइल मत के आध्यात्मिक नेता आगा खां तृतीय का निधन आज ही के दिन 1957 में हुआ था। और प्रसिद्ध फ्रांसीसी नेत्र रोग विशेषज्ञ फर्डिनांड मोनोयर का निधन आज ही के दिन 1912 में हुआ था। दोस्तों, आज का दिन एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस पर हमें इस बात का प्रण लेना चाहिए कि हम देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में अपना योगदान देंगे। सरकार के द्वारा चलाए कई कार्यक्रमों पर हम ध्यान देंगे, उन्हें लागू करने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। सरकार तो कहती है कि हम तो हमारे तो, यानी कम संख्या में आप संतान की उत्पत्ति करें, और अगर आपका परिवार छोटा होगा तो आपका परिवार खुशहाल होगा। और दोस्तों, आज के दिन कौन खुशहाल होना नहीं चाहता। तो आइए इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और गीत सुनवाते हैं।

तो दोस्तों आज बस यहीं तक। तो हमें याद रखना है कि हमें जल का संरक्षण करना है, भूमि जल को बचाना है और आगे आने वाली पीढ़ियों को और हमारे बच्चों के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए जल को छोड़ कर जाना है। तो आइए हम सभी ये प्रण लें कि हमें जल का संरक्षण करना है। और साथ ही दोस्तों आज विश्व जनसंख्या दिवस है, तो इस जनसंख्या दिवस पर भी हमें ये प्रण लेना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो भी योजनाएं सरकार ने लागू की हैं, हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकें, जिससे हम और अधिक खुशहाल हो सकें और अधिक अच्छे से रह सकें। तो आज हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रम शिला, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने वाले हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली की प्रसारण सभा में समाचारों के लिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी।

0: उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
1: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
2: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल एक प्रसिद्ध इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरी है, और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है। और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और

0: 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
2: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जनगणमन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन 5 MOUs इन की एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री टू बूस्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
5: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report from Auckland, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News.
4: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
6: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
4: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Mr. Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Welcoming Prime Minister Modi, Mr. Luxon said it was a pleasure and an honour to host him, adding that the visit reflects the growing strength of bilateral ties.
7: This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity, and I'm therefore delighted to welcome you here. Thank you for the relationship and thank you for what you've put into it personally. I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. Very proud to announce that we will be forming a strategic partnership, which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here.
4: Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
8: Highlighting the growing economic partnership between the two countries, Prime Minister Narendra Modi said the free trade agreement was concluded in a record 9 months and expressed confidence that the bilateral trade would double by 2030. He welcomed New Zealand's target of investing $20 billion in India over the next 15 years, describing India as not only a market but a launchpad for global growth. The Prime Minister invited New Zealand businesses to invest in manufacturing, technology, agri-tech and innovation. He also proposed greater exchange of young business leaders under the age of 35 to strengthen future economic cooperation between the two countries. Manju Meena for Akashwani News, Auckland, New Zealand.
4: In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. Prime Minister Modi arrived in Auckland yesterday on the third and final leg of his three-nation tour after concluding his successful visits to Australia and Indonesia. The Indian Navy is all set to commission its sixth project, 17A Indigenous Stealth Frigate Mahendragiri F-38, into its Eastern Fleet at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by Defence Minister Rajnath Singh. It will mark another significant milestone in India's journey towards defence self-reliance and indigenous warship construction. Addressing the naval personnel in Vishakhapatnam during Barakana on the eve of the commissioning ceremony, the Defence Minister reaffirmed India's stand as the primary guarantor of peace and stability in the Indian Ocean region. We have more from our correspondent.
9: Designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Mezagon Dockship Builders Limited in Mumbai, Mahendragiri is a state-of-the-art stealth frigate equipped with advanced weapons, sensors and electronic warfare systems. The warship is capable of undertaking anti-air, anti-surface and anti-submarine operations. It can also carry out maritime security protocols, search and rescue missions, humanitarian assistance and disaster relief operations and sustained deployments in the Indian Ocean region. With over 75% indigenous content, the frigate reflects the government's push for self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. The government says its induction will further enhance the Indian Navy's operational capability and reinforce India's position as a leading indigenous warship building nation. Allu Murli, Akashwani News, Vishakhapatnam.
4: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security, along with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal. The Home Minister said only licensed private security agencies should be entrusted with port security and only personnel trained by the Central Industrial Security Force or CISF should be deployed. He directed that training at the Port Security Training Institute should begin at the earliest by utilizing the existing infrastructure. A report.
10: The Bureau of Port Security is being established as a statutory body under Section 13 of the Merchant Shipping Act 2025. To be headed by a Director General, the Bureau will function under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. It will be responsible for regulating and inspecting the security of ships and port facilities. The Bureau will also ensure the timely collection, analysis and sharing of security-related information with a special focus on cybersecurity. A dedicated division will safeguard the IT infrastructure of ports against cyber threats. With Anupam Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
4: The Ministry of Coal has opened the bids for the 15th round of the commercial coal blocks auction, conducted along with the second attempt of the 13th and 14th tranches. The Ministry said that a total of 21 bids were received for 8 of the 23 coal blocks offered in these rounds, reflecting strong industry participation in India's commercial coal mining framework. A total of 16 companies participated in the auction around. US President Donald Trump has said Washington and Tehran have agreed to continue talks despite a recent escalation of hostilities, but he firmly declared that the ceasefire reached between the two sides last month was over. President Trump in a social media post said Iran has asked to continue talks and the US agreed to do so. The United States also stepped up demands that Iran stop attacks on ships in the Strait of Hormuz, where recent hostilities have pushed oil prices higher. The death toll in Venezuela's devastating twin earthquake

0: खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी।
1: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहिमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संगमिल करार दिया है जिसे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरीन खत्ते में अमन इस्तेहकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज 5 अहम मफाहिमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें दिफा, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेरी, सियाहत, खेलकूद और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के शोबे शामिल हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में एक नया बाब है। इन माहिदों पर दस्तखत ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ की सतह की बातचीत के बाद किए गए। इससे पहले वफ की सतह की बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका ये दो तरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा होगी। वजीर आजम ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड भारत बहरुल काहिल खत्ते में अमन इस्तेकाम और सलामती को मुस्तकम बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संग मील करार दिया, जो पिछले 40 वर्षों में भारत के किसी वजीर आजम का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। जनाब लक्सन ने जनाब मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी मेजबानी उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। दोतरफा बातचीत से पहले गवर्नमेंट हाउस में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया था, जिसमें वजीर आजम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में वजीर आजम मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब ने ऑकलैंड में 2026 की भारत न्यूजीलैंड तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाली हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम मोदी ने सरकर्दा ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आजाद तिजारती समझौता महज 9 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे दोतरफा ताल्लुकात में एतबार और रफ्तार का अंदाजा होता है। उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि दोतरफा तिजारत 2030 तक दोगुना हो जाएगी। वजीर आजम ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के न्यूजीलैंड के अज़्म को भी उजागर किया। उन्होंने इसे बढ़ती हुई इक्तसादी शराकत दारी में एक बड़ा संगमेल करार दिया। भारत को मौकों की सरजमीन करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत महज एक मार्केट नहीं है, बल्कि ये आलमी सतह पर तरक्की करने के लिए एक लॉन्च पैड भी है। उन्होंने खासतौर पर कहा कि पॉलिसी असलाहत, मैनुफैक्चरिंग तरगीबात, आलमी दर्जे की मसनूआत साजी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क बन गया है। वजीर आजम मोदी ने दोनों मुल्कों के नौजवानों के दरमियान मजीद सरगर्मियों के लिए भी कहा। उन्होंने तजवीज रखी कि 35 साल से कम उम्र के कारोबारी जज्बे वाले अफराद पर मुश्तमिल तजारती वफूद को एक दूसरे के मुल्कों में लगातार दौरे करते रहना चाहिए, ताकि तवील मुद्दती शराकत दारी कायम की जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान मुस्तकबिल में इख्तिराकारों और कारोबारी भारत न्यूजीलैंड इक्तसादी तआवुन की तश्कील करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबर लाने के लिए मैं असलम बेग।

0: जनाब मोदी, दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के रिश्तों की अक्कासी के सिलसिले में आज भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वजीर आजम तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल ऑकलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। भारतीय बहरिया अपने छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में अपने मशरकी बेड़े में शामिल करेगी। इस तकरीब की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत और जंगी जहाजों को मुल्क ही में तामीर करने की जानिब एक और अहम कदम है। इस जहाज को बहरिया में शामिल किए जाने की तकरीब के मौके पर बड़ा खाना के दौरान बहरी अमले से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बहर हिंद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बुनियादी जमीन के तौर पर भारत के मौकफ को दोहराया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारतीय बहरिया के जंगी जहाजों को डिजाइन करने वाले ब्यूरो के डिजाइन करदा और मुंबई में मजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का तामीर करदा ये जहाज महेंद्रगिरी एक ऐसा जंगी जहाज है जो जदीद तरीन हथियारों, हसास आलात और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निजाम से लैस है। ये जहाज दुश्मन के हथियारों को फतह और जमीन में नीज आबदोज कर सकता है। ये समंदर में सलामती के लिए गश्त, तलाश और बचाव का काम भी अंजाम दे सकता है। ये जहाज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद, कुदरती आफात की सूरत में राहत कार्रवाई और बहर हिंद खित्ते में मुस्तकिल तैनाती की खिदमात भी अंजाम दे सकता है। इस जहाज का नाम मशरकी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ी सिलसिले पर रखा गया है। हुकूमत ने कहा है कि इसे कामकाज में शामिल किए जाने से भारतीय बहरिया की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा होगा और बहरी जहाजों की मुल्क ही में तामीर के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत उजागर होगी। इस जहाज से बहर हिंद खित्ते में भारत को सलामती के शोबे में शराकतदार मुल्क के तौर पर एक तरजीही मुल्क की हैसियत कायम होगी। विशाखापट्टनम से अल्लू मुराली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कोयले की वजारत ने कोयला ब्लॉकों की तिजारती नीलामी के 15वें मरहले के लिए बोलियों का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने बताया कि इन मरहलों में जिन 23 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी उनमें से 8 के लिए कुल 21 बोलियां मौसूल हुई हैं, जिससे भारत के तिजारती कोयला कानकनी के फ्रेमवर्क में सनअतों की मजबूत शिरकत की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के साहिली सलामती के निजाम को इंतहाई पुख्ता बनाने के तई अहद बस्ता है। जनाब शाह ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल के साथ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS के क्याम से मुतालिक पेशरफ का जायजा लेते हुए ये बात कही। वजीर दाखला ने कहा कि बंदरगाहों की सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को ही दी जानी चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए CISF के जरिए तरबियत याफ्ता एहलकारों को ही तैनात किया जाना चाहिए। जनाब शाह ने BOPS के तहत तैनात किए जाने वाले सभी हिफाजती एहलकारों का जामे डेटाबेस तैयार करने की भी अफसरान को हिदायत दी। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि BOPS हिफाजती फ्रेमवर्क के तहत आने वाली सभी बंदरगाहों को कंटेनर स्कैनिंग सहूलतों से लैस होना चाहिए। वजीर दाखला ने विशाखापट्टनम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंदड़ा बंदरगाह समेत बड़ी बंदरगाहों पर मुजव्वजा सिक्योरिटी इंतजाम की आजमाइश करने की CISF को हिदायत दी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS बहरी जहाजों और बंदरगाहों की सहूलतों की हिफाजत का मुआयना करने और उन्हें मुंजबित करने का जिम्मेदार है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, सरहदी इंतजाम से मुतालिक सेक्रेटरी, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के सेक्रेटरी और माही परवरी के महकमे के सेक्रेटरी, नीज CISF के डायरेक्टर जनरल और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मर्चेंट जहाजरानी कानून 2025 की दफा 13 के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम को कानूनी इदारे की शक्ल दी जा रही है। ये ब्यूरो बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तहत डायरेक्टर जनरल के मातहत काम करेगा। ये ब्यूरो सलामती से मुतालिक मालूमात मुश्तरक करने, तज्जिया करने और उन्हें बरवक्त जमा करने की यकीनी बनाएगा। इसके अलावा ब्यूरो साइबर सलामती पर खसूसी तवज्जो देगा और एक मखसूस डिवीजन साइबर हमलों के खिलाफ बंदरगाहों के IT बुनियादी ढांचे को तहफ़ फराहम करेगा। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: नायब सदर CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया का एक रोजा दौरा कर रहे हैं। इस दौरान नायब सदर गया के बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में बिहार कानून साज असेंबली के अराकीन के तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुखासिमत में हालिया इजाफे के बावजूद वाशिंगटन और तेहरान बातचीत जारी रखने पर रजामंद हो गए हैं। ताहम सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया कि फरीकैन के दरमियान गुज़िश्ता महीने हुई जंगबंदी खत्म हो चुकी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की है और अमरीका इस पर राजी हो गया है। वहीं अमरीका ने भी मुतालबा किया है कि ईरान आबनाए हुरमुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले बंद करे। आबनाए हुरमुज़ में जारी लड़ाई की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सदर ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब 3 कतरी और सऊदी तिजारती टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद अमरीका को ईरानी मकामात पर हमले करने पड़े और जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद 4,000 से तजावुज कर गई है। वेनेजुएला की पार्लियामेंट के चीफ जॉर्ज रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लातिनी अमरीकी मुल्क में 7.2 और 7.5 शिद्दत के जके बाद दीगरे आए 2 जलजलों में कम अज़ कम 4,118 अफराद हलाक हो गए हैं और 16,740 अफराद जख्मी हो गए हैं। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत अपने आइंदा नशरिए में जनाब आशीष अग्रवाल से बातचीत करेंगे, जो माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए लोगों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप 100.1 मीटर पर आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 पर सुन सकते हैं। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर भी सुन सकते हैं। फीफा आलमी कप में कल रात अमेरिका के इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले फ्रांस ने बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मराकिश पर 2-0 की आसान जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। विंबलडन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज लंदन में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खवातीन खिलाड़ी अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं। पहली मर्तबा विंबलडन का फाइनल खेल रही मुचोवा पूरी तरह अपने खेल और तजुर्बे पर इन्हिसार कर रही हैं, जबकि अपनी सख्त हिटिंग के लिए मशहूर नोस्कोवा भी अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहेंगी। विंबलडन में कल मर्दों के सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा, जहां आलमी नंबर 1 यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। खवातीन क्रिकेट में लंदन के शहर लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली बारी के अपने स्कोर 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेल की शुरुआत करेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 3 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचने की खबर को अहमियत दी है, जहां न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जबकि रोजनामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ के जरिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में तआवुन बढ़ाने के लिए एक रोडमैप जारी किए जाने की खबर पर तवज्जो मरकूज़ की है। ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु के कदीम वीरसे की वापसी पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने खुशी का इजहार किया और कहा कि भारत के मालामाल सकाफती वीरसे को उसके मकाम पर वापस लाने की समत में ये एक अहम कदम है। इस खबर को रोजाना प्रताप ने उजागर किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशी की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहिमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया जिससे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज शाम विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बहर हिंद खत्ते में अमन इस्तेकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
5: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
4: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज गया जी में बिहार विधानसभा के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर में करेंगे शुभारंभ। वरिष्ठ न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और अररिया समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी आ रहे हैं। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: गया जी के बिपाड़ परिसर में विधायकों के लिए 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। शिविर का उद्देश्य नए और पुराने सभी सदस्यों को संसदीय कार्य प्रणाली और विधानसभा की नियमावलियों से परिचित कराना है। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियां पूरी कर ली है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

0: वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह में इस सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की भी शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहेंगे।
1: यह व्यवस्था प्रदेश के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी। निबंधन के पूर्व संबंधित व्यक्तियों को अंचलाधिकारी को जमीन के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए GIS तकनीक से निरीक्षण किया जाएगा। वहीं मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से जमीन, फ्लैट या प्लॉट की घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध होगी। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए e-nibandhan.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1-4-5-4-4 पर भी संपर्क किया जा सकता है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारी।
0: प्रदेश में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 3008 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। श्री कुमार ने पटना, सारण, गया और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारियों को टाउनशिप के सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि सोनपुर में हरिहरनाथ टाउनशिप के लिए 2000 एकड़, गया जी के मगध टाउनशिप के लिए 1629 एकड़ और मुजफ्फरपुर के तिरहुत टाउनशिप के लिए 1191 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों का नियोजित विकास और विस्तार तथा नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सैटेलाइट टाउनशिप मददगार साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के निर्णय के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम की घोषणा की। श्री सिन्हा ने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है।
2: मैं शुरू से मैं बूथ मंत्री बना, बूथ अध्यक्ष बना, महामंत्री बना और मैं दो बार से मंडल अध्यक्ष रहा और जिला उपाध्यक्ष का भी कार्य मैं युवा मोर्चा में किया हूँ। जीत तो बहुत जबरदस्त होने जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे आम जनता हम लोग बांकीपुर नमन को बहुत बहुत आशीर्वाद देने जा रही है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनके कार्य को देख करते हुए आज लोग यहाँ पे देंगे।
0: प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन करेंगे। इससे पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। श्री कुमार ने 9 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। पटना में पार्टी प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
3: मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
0: गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित है। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। बिहार और हरियाणा के बीच सुरक्षित और सुलभ परिवहन के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में दोनों राज्यों के बीच कल द्विपक्षीय बस परिचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर बिहार सरकार की ओर से राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच नियमित बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा जिससे यात्रियों को किफायती दरों पर सुरक्षित, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, पानीपत सहित अन्य निर्धारित शहरों से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 6 प्रमंडलों पटना, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर के लिए आधुनिक वातानुकूलित बसों का नियमित परिचालन किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के वरीय न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। कल उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित समारोह में उन्हें औपचारिक विदाई दी गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से पटना समेत कई जिलों में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सीवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पटना, अरवल, खगड़िया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली और मुजफ्फरपुर समेत 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर घंटा रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटाड़ में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया और मधेपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में हर महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल 97,84,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में DBT के माध्यम से राशि भेजने के बाद यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर महीने की 10 तारीख को पात्र लाभुकों के खाते में पेंशन राशि पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर पात्र व्यक्ति को पेंशन योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। श्री सिन्हा ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने को भी कहा गया है। श्री सिन्हा ने उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि वे उर्वरक खरीदते समय रसीद अवश्य लें। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा 26 जुलाई को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में ली जाएगी। बिहार की टीम हैदराबाद में खेली जा रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय जूनियर बालक रग्बी 7 प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में बिहार का मुकाबला केरल से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में बिहार ने छत्तीसगढ़ को 34-0 से पराजित किया। और अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार। भोजपुर जिले के अगियाओ थाना क्षेत्र अंतर्गत आहर के पास छापेमारी कर पुलिस ने सामुदायिक सेवा केंद्र को लूटने की योजना बना रहे अपराधी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों की तरफ से फायरिंग होने पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। मौके से फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। मधुबनी पुलिस ने बेनीपट्टी थाना के डायल 112 टीम के जवानों पर जानलेवा हमला

करने के मामले में अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान 96 मामलों की सुनवाई की। कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पेंशन योजना के पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का अभियान चलेगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, केंद्र ने E20 की लागत अधिक बताकर कीमत भी नहीं घटाने का दिया संकेत। सरकार का स्पष्ट संदेश, शुद्ध पेट्रोल या E10 लौटना अब संभव नहीं। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर उपचुनाव पर लिखा है, भाजपा ने 72 घंटे में प्रत्याशी बदला, नीरज कुमार सोमवार को करेंगे नामांकन। प्रभात खबर लिखता है, राहत, बीपी शुगर कैंसर समेत 39 नई दवाओं की कीमत तय। आज अखबार की सुर्खी है, 15 अगस्त के बाद जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज गया जी में बिहार विधानसभा के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर में करेंगे शुभारंभ। वरिष्ठ न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और अररिया समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश। ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
1: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी कि 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं। उस भड़ास को दबाने के लिए किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर
0: जी।
1: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोग लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
0: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
1: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होता है दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग, तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का एमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का एमिशन हो रहा है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में है तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम × 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
0: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
1: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो तीन प्लास्टिक चार प्लास्टिक यूज हो जाता है। तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती है। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से। आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का। अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
0: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा? तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर?
1: थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जो एलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है। तो आज के डेट में जितने भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है? तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी। और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
0: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
1: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं। और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
0: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
1: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
0: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते
1: हैं। जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
0: जी।
1: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो

टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ था उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा

0: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली? अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वॉन्ट है। तो एक बार नीड वर्सेज वॉन्ट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इंपल्स है, तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वॉन्ट है। और फिर नीड है कि वॉन्ट है, फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वॉन्ट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है। और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया x से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर यह धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता है जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल। तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस।
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर

0: इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रैवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशंस बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होते हैं ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डी क्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डी क्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है, इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं? तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इंप्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की। तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बींग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था एस्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज अ कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहाँ 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश किए कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने एज ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें, ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं राजीव कुमार सिंह। आइए आरंभ में सुनते हैं उनसे ये भजन।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे राजीव कुमार सिंह, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुराने फिल्मों से। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म पगला कहीं का एक गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
3: उमंग
4: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में सुनिए फिल्म प्रोफेसर का ये गीत।

सुनिए, फिल्म दिल एक मंदिर का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:31 हुए हैं। नीचे सुनिए लोकगीत। कलाकार हैं जयप्रकाश शर्मा। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये देवी गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the

आप सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थे जयप्रकाश शर्मा। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

मीडियम 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने मन पसंदीदा गानों की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में करवा सकते हैं। साथ ही आप अपनी फरमाइश प्रत्येक शनिवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन सकते हैं। तो लेते हैं हम अपने पहले कॉलर को। नमस्कार, फोन इन

0: की पसंद में आपका स्वागत है, आप कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहरमन टोला जिला मधुबनी बिहार से।
0: क्या बात है साबिर जी, इतने दिनों बाद आपने फोन किया है। और बताइए मौसम कैसा चल रहा है वहाँ पे?
1: दिल्ली में है सर, मौसम तो यहाँ बरसात का है।
0: जी जी जी, और आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। और इतने दिनों बाद फोन किया है और दिल्ली में है, तो बताइए वहाँ पे आपको भी मन लग रहा है कि नहीं?
1: जी जी जी।
0: चलिए, आप करते क्या हैं तो वहाँ पे?
1: हम तो गाड़ी चलाते हैं सर।
0: तब तो बहुत अच्छी बात है। और अभी बारिश भी चल रही है, सुनने में आया है कि बहुत जगह पे मतलब थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है दिल्ली में।
1: जी जी
0: जी, और बताइए तो आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर बारिश हो रहा है तो बारिश का गाना सुना दी, फिल्म का नाम है गोपी किशन।
0: क्या बात है,
1: माने जो बोले छतरी न खोल बरसात में।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं गुलफराज आलम जी हैं भागलपुर के,
0: जी
1: खालिद अंसारी जी हैं,
0: जी
1: नाहर मंटोला के जाहिद अली, शाहिद अली, साजिद अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली और कादिर अली को।
0: जी जी जी, तो आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे। और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: हम विनय कुमार बोल रहे हैं सर।
0: अच्छा विनय जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: चौधरी भागलपुर से।
0: अच्छा विनय जी, करते क्या हैं?
1: हम अपना बिजनेस करते हैं।
0: अच्छा, और बताइए अभी मौसम कैसा चल रहा है भागलपुर में?
1: मौसम सर गुम्बस चल रहा है।
0: अच्छा गुम्बस चल रहा है, बारिश आती है कभी कभी, अच्छा लगता है, फिर गर्मी वैसे ही बढ़ जा रही है। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: गाना
0: धड़कन
1: जी।
0: कौन सा गाना?
1: अक्सर मिलते हैं अनजाने राहों में।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हम अपने दोस्तों से सुन सकते हैं सर।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद पे गाना जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: अरे सर जी नमस्कार, मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह।
0: अशोक जी कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, बस आपका कार्यक्रम
0: जी
1: सुन रहे हैं सर, फोन ही में लगे हैं।
0: जी जी आपको बताना चाहेंगे कि 17 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये आपको न्याय के लिए, ठीक है ना?
1: जी
0: आपने सुना होगा बहुत देशों में इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं जो इंटरपोल
1: जी
0: वगैरह ये सब के लिए कार्य करती है। आजकल बहुत सारे देशों की सुरक्षा एजेंसियाँ एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ों को पकड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है, तो ये
1: जी
0: दिवस इसी को समर्पित है। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सर आप तो एक से एक जानकारी लाते हैं हर दिवस की। सर गाना सुना दीजिए, अब ठंडी है बरसात का मौसम सुहावना है, राम दुलारी मैं के गई खटिया अमरी कड़ी कर गई,
0: जी
1: मेरी बीवी की शादी पिक्चर का गाना।
0: जी तो ठीक है, आपकी पसंद पे ये गाना हम जरूर सुनाएंगे। ये गाना आप खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: आप और सभी दोस्त सुनने वाले भागलपुर के जितने भी हैं, श्रोता बंधु सभी के लिए
0: जी तो ठीक है, आपकी पसंद पे
1: बहुत
0: गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मुंदेचक भागलपुर से गौरव जोशी बोल रहा हूँ।
0: अच्छा गौरव जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं।
0: हम भी अच्छे हैं। और गौरव जी, आपको बताना चाहेंगे कि कल 11 जुलाई है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और इसके बारे में आपको जानते हैं?
1: हाँ, जनसंख्या को, जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन,
0: जी
1: भारत
0: जी
1: में बढ़ती
0: जी
1: आबादी को लेकर के है।
0: जी जी जी और बढ़ती आबादी से आपके रिसोर्सेस जो हमारे हैं उस पर दबाव अतिरिक्त होता है, तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है ताकि हम आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाएं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और
1: जी,
0: सभी को इसका ध्यान देना चाहिए। तो बताइए आज आप क्या
1: जी,
0: सुनना चाहेंगे?
1: आज बैराग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना?
1: वो शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो गाना खुद सुनेंगे या अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: परिवार जन के साथ सुनना चाहेंगे, पवन जोशी, संगीता जोशी, कृतिका जोशी और गौतम जोशी के साथ।
0: जी, तो ठीक है, आपके परिवार के तमाम सदस्यों को और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इस तरह हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ठीक है, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं चिरमिरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आपका निमित श्रोता इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। सर
0: इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी पीरियड में हूँ सर, और ड्यूटी में हूँ और सीएल में सर्विस करता हूँ। यहाँ पर मैं जंगली नर्सरी के बीच में हूँ सर, और यहाँ बादल किया हुआ है और सर थोड़ा हवा चलता है तो ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन उमस गर्मी बना हुआ लगता है कि पानी गिरेगा लग रहा है सर।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, अभी उमस चल रहा है कई जगह पे, और कोई बात नहीं, लेकिन बारिश आ गई, ये अच्छी बात है। हम लोग कल यानी 11 जुलाई को हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, वो हमारे लिए एक तरफ से रिसोर्स तो है, लेकिन हमारी जो संसाधन है प्राकृतिक, उस पर एक दबाव भी पड़ता है। तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, इसके लिए तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं
1: सर? जनसंख्या का सर ऐसे परिवार नियोजन का सबसे पहले तो मेन जरूरी सर कि कम से कम घर में दो ही बच्चे हो तो वही अच्छे हैं
0: जी।
1: ये परिवार नियोजन का अपनाना बहुत जरूरी है सर, बच्चे दो ही अच्छे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा होता है सर, और मेंटेनेंस होता है और उसका देख रेख भी होता है। तो घर में दो बच्चे होते हैं, लड़का लड़की हो या लड़का लड़का हो या लड़की लड़की हो,
0: जी
1: तो
0: जी
1: दो होना दो बच्चे ही बहुत पर्याप्त है सर।
0: जी, और दो बच्चे रखे लेकिन उनको योग्य बनाए। आप बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, आप योग्य नहीं बनाते हैं, तो एक तरह से आप समाज के प्रति जो आपका एक कर्तव्य है, उसको आप सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पे हमारा भी एक दायित्व तो बनता है उस समाज के लिए। तो अगर आपके बच्चे योग्य होंगे तो समाज को कुछ अच्छा देंगे, अयोग्य होंगे तो वो समाज को बुरा देंगे। तो इसीलिए योग्य बनाएं और उसको उस अच्छे से पालन पोषण करें, और ताकि वो समाज, देश और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे।
1: जी सर, माता पिता का सबसे मेन उद्देश्य है सर।
0: जी तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैं सुनूंगा सर, फिल्म का नाम है अजनबी का गाना है ना, जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, आज गोरी चोरी चोरी अब तो रहा ना जा रे, गाय किशोर कुमार आशा भोसले। सबसे पहले गीत आपको, केंद्रीय निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी भागलपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके स्टाफ कर्मचारियों को, और पूरे भारत श्रोता को, हेलो एक्टर रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, आपके परिवारजन को, सभी लोगों को डीडी कर रहा हूँ सर, खासकर आपको।
0: जी जी जी, तो आपकी पसंद पे खूबसूरत सा गाना हम

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार, टेकचंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, आसिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात है टेकचंद जी, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप?
1: बस सर हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर?
0: हम भी अच्छे हैं। और अभी क्या चल रहा है?
1: सर फिलहाल तो जो घर के छोटे मोटे काम रहते हैं सर उसी में व्यस्त रहते हैं,
0: जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: सरकारी काम से तो अब हम लोग
0: जी जी
1: सेवामुक्त हो चुके हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं, और इसका उद्देश्य है युवाओं में, खास करके कि युवाओं में आप टेक्निकल, वोकेशनल, एजुकेशनल जो ट्रेनिंग है, जो आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो अभी आवश्यक है, इसको बढ़ावा देना, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, ताकि आपका जो ये स्किल है वो आपके समाज के लिए और आपके देश के विकास में इसका योगदान मिले सभी को, इसी के लिए मनाया जाता है। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर मुझे सुनवा दीजिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, कांच और हीरा फिल्म का गाना
0: जी। कौन सा गाना?
1: नजर आती नहीं मंजिल।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: बस सर आपको सुनाएंगे और हमारे जितने भी आकाशवाणी भागलपुर के श्रोता मित्र है
0: जी जी
1: सभी के साथ सुनेंगे सर।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: शुक्रिया सर, नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार, कैसे हैं?
0: हम तो अच्छे हैं, और बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं सुजीत राय बात कर रहा हूँ कहलगांव से।
0: सुजीत जी, और बताइए कैसा मौसम है आपके यहाँ अभी?
1: बस बस भैया, जो मौसम अभी है अब क्या बताया जाए, हल्की फुल्की छिटपुट बारिश हुई है।
0: जी जी, और लेकिन फिर गर्मी बढ़ जा रही है।
1: हाँ गर्मी बढ़ जा रही है, लेकिन श्रोताओं को हम यही कहेंगे कि आप गर्मी के, देखिए ये जो मौसम है ना, कभी बरसात कभी गर्मी, तो ऐसे मौसम में हमें सावधान रहना जरूरी है ना?
0: जी जी,
1: नहीं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको बताना चाहेंगे कि 12 जुलाई जो आने वाली, इस दिन हम लोग पेपर बैग डे मनाते हैं। आपने
1: जी
0: देखा होगा कि अभी हमने वन सप्ताह मनाया है, और
1: जी
0: जस्ट
1: महोत्सव जी,
0: जी तो अभी क्या है कि पेड़ काटने का एक बहुत बड़ा कारण होता है पेपर बनाने से भी, ठीक है,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: साथ ही अभी प्लास्टिक का पॉल्यूशन भी आपने देखा है।
1: जी
0: तो ये दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है, और लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाना है कि आप पॉलिथीन वगैरह ये सब का इस्तेमाल कम करें, ठीक है ना,
1: जी जी
0: और आप रिसाइकल पेपर से भी पेपर बैग बनता है आजकल, और उसका
1: जी
0: इस्तेमाल करें ताकि आप पर्यावरण संरक्षण भी करें और रिसाइकलिंग होगा तो अच्छा रहेगा।
1: जी जी
0: जी तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे वही तलाश का सुनाइए सर, के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना, ये वाला गीत।
0: क्या बात है, आप गाते भी बहुत अच्छा है, तो आपकी पसंद पे गाना तो हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन ये गाना आप खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: नहीं सर जी, अकेले कैसे कैसे सुन लेंगे जी, आप हैं,
0: जी
1: अनिमा दीदी हैं, हमारे सरसार सर भी हैं,
0: जी
1: और हमारे जितने भी दोस्त हैं रेडियो दोस्त, उन सभी के साथ सुनेंगे। परवेज जी हैं, और सतीश शर्मा जी हैं, प्रिंस पासवान जी हैं, सोनू
0: जी
1: गौतम जी हैं,
0: जी
1: और हमारे जैसे जितने भी आकाशवाणी भागलपुर के श्रोता हैं, सभी के साथ सुनेंगे सर। अकेले सुनेंगे तो मजा आएगा, आप बताइए।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपकी पसंद पे आपके तमाम चाहने वालों को और अपने तमाम श्रोताओं को ये गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: हम धुरैया गंगदोरी से सांदेव हरी बोल रहे हैं।
0: अच्छा सांदेव जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: और बताइए क्या चल रहा है अभी?
1: अभी तो हम खेती बाड़ी ही सिर करते हैं।
0: और बताइए कि अभी मौसम आप लोगों को कैसा मिल रहा है?
1: मौसम तो अभी बहुत खराब चल रहा है सर, दिन रात पानी एकदम पड़ रहा है सर, डर लगा हुआ है।
0: अच्छा, तब तो बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है।
1: हाँ अभी दिक्कत हो रहा है सर।
0: अच्छा तो बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: हम सर नीलकमल फिल्म का गाना सुनेंगे सर।
0: कौन सा गाना?
1: वो मोहम्मद रफी का जो आवाज है।
0: अच्छा अच्छा, तो गाना खुद सुनेंगे या अपने घर वालों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: अपने घर वाले के साथ सुनेंगे सर।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद पे गाना आपको हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: आणि सरु कुमार साहब, सादर सप्रेम प्यार है नमस्कार। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और आपसे वार्तालाप हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है। बहुत खुशी प्रसन्नता होती है कि हमारा भी फोन है आकाशवाणी भागलपुर में लग गया है और अपनी फरमाइश के हम गीत सुनना पसंद करेंगे।
0: जी जरूर जरूर, और आपकी फरमाइश को हम जरूर पूरा करेंगे। तो आज आपने इतनी दूर से फोन किया है, और बताइए वहाँ ब्रज का मौसम वगैरह कैसा चल रहा है?
1: मानवर 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जुलाई के महीने में अच्छी खासी वर्षा हुई है, और थोड़ी सी अभी बारिश रुकी हुई है, खिली खिली धूप है, मंद मंद हवाएं चल रही हैं, तापमान थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन उमस भरी गर्मी बढ़ गई है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जहाँ जहाँ पे बारिश लेट से हुई है वहाँ पे अभी उमस भी हो रहा है, और ये बहुत ही दुर्भर, मतलब गर्मी से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है, पसीना बहता रहता है और लोग परेशान होते रहते हैं।
1: जी जी निसंदेह ये उमस वाली गर्मी जो है ज्यादा बेचैन परेशान करती है, मतलब बेचैनी से महसूस होती है, चिप चिप चिप चिप पसीने से तरबतर रहते हैं, और एसी के अलावा कूलर पंखे तो काम ही नहीं करते हैं इस मौसम।
0: जी, तो आपको बताना चाहेंगे कि 12 जुलाई के दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलाला डे मनाते हैं, और आपने सुना होगा कि एक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आपको एक एक्टिविस्ट थी मलाला यूसुफजई, उन्होंने स्कूल जाने के क्रम में जो उनके साथ घटना हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को, मलाला डे।
1: जी जी जी बिल्कुल जी। उनके जो उन्होंने कार्य किए और अपने संघर्ष के लिए किया था, उसके कुछ लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने उनके साथ में जो भी किया अच्छा नहीं किया।
0: जी जी, महिला शिक्षा के लिए मतलब ये दिन समर्पित है।
1: जी जी
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मानवर वर्षा ऋतु है, अषाढ़ का महीना है, और एक बहुत ही अच्छा गीत है मुझे याद आ रहा है, फिल्म का नाम है हमराज।
0: जी,
1: महेंद्र कपूर साहब ने गीत गाया है, नील गगन के तले धरती का प्यार पले।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो गाना खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी, मैं तो सदैव अपने मित्रों को इस गीत में शामिल करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने परम मित्र सौरभ कुमार साहब को सादर समर्पित करता हूँ ये गीत।
0: धन्यवाद।
1: और याद करना चाहता हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सर्वश्री लोकेंद्र वर्मा, राजू यादव, राजीव लोवानिया और टेकचंद अग्रवाल, सतीश रघुवंशी जी हैं, अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी साथ में हैं, पूरन वर्मा और पुष्कर नाथ जी, राकेश कुमार, इन सभी दोस्तों के साथ में याद करता हूँ पुरुषोत्तम जी को भी।
0: तो ठीक है, आपके तमाम चाहने वालों को और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जी हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है, यानी वक्त है आपसे विदा लेने का। पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फोन इन आपकी पसंद की रिकॉर्डिंग आप प्रत्येक शुक्रवार को 11:30 से 12 बजे के बीच में करवा सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शनिवार को 11:00 से 12:00 बजे के बीच में किया जाएगा। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता यानी मुझे सौरभ कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद। स्वर सहयोग एवं इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।
1: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
2: क्रेश,
3: क्रेश
1: और बाल्टी बॉय।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
5: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
6: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
7: सुबह के सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
8: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
7: रूबरू होंगे आप खबरों से,
8: देश दुनिया की ताजा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
7: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
8: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
7: आकाशवाणी भागलपुर से। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर
8: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
7: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
8: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
7: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर।
8: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
7: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
9: सुनो ना।
10: हाँ?
9: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
10: तो रोका किसने है? हाँ?
9: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
10: मुझसे।
9: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
10: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
9: पर उससे मेरा क्या फायदा?
10: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
9: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
10: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
9: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
10: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
10: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
10: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
9: 8700014242।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
11: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है नारीलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हम भारतीयों को अपनी बढ़ती हुई आबादी की ओर जागरूक होना है ताकि हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो सके और सभी को रोटी, कपड़ा, मकान और आराम मिल सके। किसी देश की जनसंख्या उसकी धरोहर और पूंजी होती है। जनसंख्या को संतुलित कर प्रगतिशील बनाया जाए तो देश उन्नतशील बनेगा। सन 1987 में 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ हो गई थी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की ताकि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती विश्व की जनसंख्या से लोगों की आंखें खुले। जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष यह याद दिलाता है कि हमें अपने परिवार को सीमित रखना चाहिए ताकि हर सदस्य को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिले। इस दृष्टि से ही दो ही बच्चे हो तो अच्छे, चाहे वे बेटे हो या बेटियां। एक परिवार में कम बच्चों को ही अच्छे ढंग से परवरिश हो सकती है और खुद माता पिता भी आराम का जीवन जी सकते हैं। यह समय की भी पुकार है कि हमें मानसिक तौर पर बदलना होगा और बेटा बेटी का भेद मिटाना होगा और दोनों को समान मानवीय अधिकार देते हुए दोनों की क्षमताओं को एक ही तरह से आगे बढ़ाना होगा। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। हम लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें इस प्रकार जागरूक बनाएं कि वे सोच समझकर कम बच्चे को जन्म दें और अपने जीवन को भी खुशहाल बनाएं। आज के हिस्टपुस्ट और पढ़े लिखे बच्चे कल के समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। जनसंख्या दिवस एक जागरूक अभियान दिवस है बहनों। महिलाएं अपने डॉक्टर से सलाह लेकर विभिन्न पद्धतियों द्वारा अपना परिवार सीमित रख सकती है, तभी उनका समाज का और देश का कल्याण हो सकता है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं जिनमें सीमित जनसंख्या का ही पालन पोषण किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारी आबादी बेतहाशा बढ़ती रही तो जल, भोजन, बिजली और न जाने कितनी चीज़ों के लिए हाहाकार मचेगा, जिससे हम सभी का जीवन तबाह होगा, देश भी गर्त में लुढ़केगा। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब तक पहुंचने में सैकड़ों हजारों वर्ष लगे, फिर महज 200 वर्षों में यह 7 गुना बढ़ गई। 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 अरब के आंकड़े पर पहुंच गई। 2021 में यह लगभग 7.9 अरब थी और 2030 में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लगभग 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब तक पहुँचने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा दुनिया में शहरीकरण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और प्रवासन की गति भी तीव्र हो रही है। 2007 में पहला ऐसा वर्ष था जब ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग रहते थे और 2050 तक ये उम्मीद की जा रही है कि विश्व की लगभग 66% आबादी शहरों में निवास कर रही होगी। इन व्यापक रुझानों के दूरगामी परिणाम हैं। ये आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। साथ ही ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पानी, भोजन और ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी प्रभावित करते हैं। व्यक्तियों की आवश्यकताओं को अधिक स्थायी रूप से पूरा करने के लिए नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि इस ग्रह पर कितने लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं और उनकी आयु कितनी है और उसके बाद कितने लोग आएंगे। इसी के साथ बहनों, अब हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: बहनों, अब आइए सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। विषय है सुरक्षित परिवार नियोजन और भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर रेखा झा और भेंट करता है संगीता घोष। तो आइए सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता।
4: आज के स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुरक्षित परिवार नियोजन पर। देखा जाए तो परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण कई दशकों से एक केंद्रीय मुद्दा रहा है। हम सभी जानते हैं कि परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार छोटा रहे, बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर हो, यानी हम सभी खुद तय करें कि कितने बच्चे हों और कब हों। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में हम खतरे में पड़ जाते हैं, गंभीर परिस्थिति से गुजरते हैं, नुकसान भी उठाते हैं, क्योंकि सुरक्षित परिवार नियोजन की जो अवधारणा है उससे हमारी कई बहनें अनजान हैं। ऐसी और भी कई बातें हैं जिसे जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज विशेषज्ञ के तौर पर हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रेखा झा को। आप शहर की जानी मानी प्रसूति रोग चिकित्सक हैं। डॉक्टर रेखा झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरक्षित परिवार नियोजन पर आपसे बहुत सारी बातें तो होंगी ही, लेकिन हम चाहेंगे आप सबसे पहले बहनों को बताएं कि परिवार नियोजन का प्रारंभ कब हुआ, खासकर हमारे देश में।
5: हमारे देश में जब से चिकित्सा शिक्षा और एलोपैथिक मेडिसिन का प्रचार प्रसार हुआ, तभी से, काफ़ी साल पुराना ये है
4: जी,
5: जब से एस्टैब्लिश हुआ गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री आज़ादी के बाद, तब से ही प्रचार प्रसार इसका हो रहा है।
4: अच्छा अच्छा, और कुछ बताएं।
5: इसके पहले भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भी जो है हेल्थ केयर सिस्टम में इसका था, मगर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार ये आज़ादी के बाद ही हुआ
4: जी। डॉक्टर साहिबा, अक्सर लोग कहते हैं कि परिवार छोटा होना चाहिए, तो क्या इस नियोजन के पीछे कुछ और भी खास उद्देश्य है, क्यों ऐसा लोग?
5: खास उद्देश्य तो यही है कि पॉपुलेशन जो है, हमारी जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और हमारे देश में जनसंख्या बहुत ही फास्ट रेट से उसका ग्रोथ है। इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी सरकारी तौर पे जनसंख्या को घटाने के लिए परिवार नियोजन के ऊपर ध्यान दिया गया, और साथ ही साथ अपना स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य को भी सही रखने के लिए एक सही अंतराल पर बच्चा हो, उसको परिवार को नियोजित किया जा सके, इसकी आवश्यकता है
4: जी। और इसमें उम्र सीमा भी बहुत मायने रखती है।
5: उम्र का भी बात है कि 18 वर्ष के पहले अगर किसी को बच्चा होता है तो वो उसके लिए खतरा होता है, अतः जो है उससे पहले अगर किसी भी कारण, वैसे तो विवाह होना नहीं चाहिए, या किसी भी कारण हो गया विवाह, तो उस समय भी परिवार नियोजन होना चाहिए। शादी के बाद बच्चा हो, लेकिन हमेशा सही एज में बच्चा हो, इसके वजह से सही एज में शादी होना चाहिए
4: जी।
5: जब भी अनपढ़ लोग या अभी भी गांवों में जो है कम उम्र में जो शादी कर दी जाती है
4: जी,
5: तो परिवार नहीं बढ़े, इसके लिए कुछ तो नियोजन होना चाहिए। पुराने जमाने में होता था कि गौना ही नहीं होता था, इसीलिए इस तरह का नियोजन अपने आप स्वतः हो जाता था, लेकिन अगर साथ लोग रहने लगे और कम उम्र में बच्चा हो जाए तो ये खतरे की घंटी होती है।
4: और एक बात ये भी है कि परिवार नियोजन की जो बात हम करते हैं, और जैसे गांव में आपने कहा कि कई लोगों को कई बातों की जानकारी नहीं होती है, कई ऐसे साधन हैं जिसे जानना चाहिए, लेकिन शहरी परिवेश में रहने वाली भी कई बहनें हैं जो अनभिज्ञ रहती हैं, उन्हें पता नहीं रहता। तो कितने ऐसे साधन हैं जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, जो आसानी से बहनें उसको समझ भी पाएँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मेडिकल टर्म जो भाषा होती है कई लोग उसको समझ नहीं पाते। सहज रूप से क्या अपनाएं, क्या होना चाहिए, किस साधन के बारे में उन्हें जानना चाहिए, इस पर थोड़ा खुलासा करें।
5: सबसे पहले जो है, सबसे छोटा चीज परिवार नियोजन में है कॉन्डम्स, जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको बोलते हैं
4: जी।
5: कि ओवम और स्पर्म का मिलन ही नहीं होगा

0: महिलाएं जो है अस्पतालों में जाती हैं या डॉक्टरों के पास जाती हैं, ये गांव
1: जी
0: में हो, पीएचसी में हो या शहर में हो,
1: हाँ
0: उस दौरान अगर महिलाएं डिस्चार्ज से पहले या डॉक्टर से बात कर लें या डॉक्टर भी समझा दें कि आपको अब अगला बच्चा 3 साल बाद ही होना चाहिए और उसके लिए ये उपाय आप कर सकती हैं, ये आपके हाथ में है, तो शायद परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार और अधिक इफेक्टिव ढंग से होता जाएगा।
1: जी, तो ये तो है कि जब तक हमारी बहनें संपर्क ना करें चिकित्सक से तो थोड़ी दिक्कत होती है,
0: थोड़ी दिक्कत है।
1: लेकिन अगर स्त्री पुरुष दोनों ही अगर सोचे और साधन को नहीं अपना पाए किसी ना किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षित परिवार नियोजन के लिए वो क्या करें
0: अगर मतलब
1: अगर
0: अगर
1: किसी
0: पिल्स
1: साधन को
0: या
1: वो नहीं अपना पाए।
0: हाँ, तो फिर उनको जो है ऐसे केस में, तो मैंने पहले तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताया ही कि कॉन्डम्स यूज़ करें, और सेफ पीरियड्स भी कुछ होता है, लेकिन ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव और सेफ पीरियड का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो अपनाएं भी कि मेंस के आगे पीछे ही सेक्स हो, और जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो ये कंसीव करने के लिए जो बेस्ट पीरियड है कि 13th to 21st डे ऑफ मेंस, उसमें सेक्स ना करें, ये सब हो सकता है थियोरेटिकली, लेकिन इसमें चूंकि फेलियर रेट बहुत है, 18% है, तो इतना फेलियर रेट ले करके कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवली काम नहीं करेगा,
1: ये दिक्कत
0: दिक्कत
1: आएगी।
0: है ये।
1: तो ज़्यादा परेशानी अगर देखा जाए तो हमारी जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए तो है, क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से समझ भी नहीं पाती कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन उन्हें अगर जैसे अस्पताल में आती हैं और उन्हें कुछ जानकारी मिलती है किसी न किसी जरिए से, चाहे डॉक्टर बताएं या फिर जो उनके मित्र सहेली वहाँ आए उनके द्वारा उन्हें पता चले, तो किस तरह की बातों को वो सहज तरीके से ले सकेंगी?
0: सबसे बड़ी बात है कि जानकारी सबको होती है आजकल, मगर जानकारी से भी ज़्यादा दुष्प्रचार ज़्यादा होता है,
1: जी
0: खास करके इंट्रायूटराइन डिवाइसेस के बारे में दुष्प्रचार होता है कि ये खराबी करता है, इससे कैंसर भी हो जाता है, ऐसा दुष्प्रचार है, ये बातें सही नहीं है, ब्लीडिंग अधिक होता है, पेन होता है, कैंसर हो सकता है या पेट में चला जाएगा, ये सब तरह का दुष्प्रचार इसलिए होता है कि किसी भी चीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कुछ केसेस में, तो जो जिसके साथ कॉम्प्लिकेशन हुआ रहता है वो इसका जम के दुष्प्रचार करते हैं, तो इस कारण से ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि सबके साथ ऐसा हो जाएगा, कहीं ना कहीं शायद लगाने वाले में कोई प्रॉब्लम हो या किसी नर्स द्वारा लगाया हो जो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं, कभी कभी अच्छे चिकित्सक के पास भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 1000 में या 2000 में एक किसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ उसके वजह से हम कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं अपनाएंगे और अपने आप को उससे भी बड़े खतरे में जो एबॉर्शन से रिलेटेड है उसमें डालेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है,
1: जी,
0: तो दुष्प्रचार कैसे रोका जाए इसकी
1: ये
0: ज़रूरत है,
1: वो जरूरी
0: और
1: है,
0: इसकी ज़रूरत
1: अवेयरनेस
0: है
1: तो बहुत ही
0: अवेयरनेस और हेल्थ वर्कर के पॉजिटिव बोलने से,
1: जी
0: क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो होना ही है कभी ना कभी किसी के साथ, तो ये बताना है कि 1000 में 1 के साथ जो है ऐसा हो सकता है, हो सकता है उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो तो रिजेक्शन हो गया हो या ज़्यादा पुश हो गया हो, ऊपर चला गया हो, ये सब हो सकता है, लेकिन ये सीधे कह देना कि ये अच्छी चीज़ नहीं है ये बात नहीं, हमें तौलना होगा कि एबॉर्शन ज़्यादा रिस्की है या इंट्रायूटराइन डिवाइस लगाना ज़्यादा
1: जी
0: रिस्की है,
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: सही,
0: उसमें एबॉर्शन ज़्यादा रिस्की है, इसीलिए
1: हाँ
0: जो है लगाना ही ज़्यादा उचित है।
1: और ये जब तक जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी तो लोगों के समझ में ये बात
0: नहीं
1: आएगी भी
0: आती
1: नहीं।
0: है।
1: जैसे कई लोग ये कहते भी सुने गए हैं कि अगर

0: अगर आप पिल्स नहीं लेती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो इंजेक्शन भी ऐसा कुछ है क्या?
1: पिल्स और इंजेक्शन दोनों दवा हुआ, ठीक है, एक मुंह से लिया जा रहा है, एक इंजेक्शन द्वारा मतलब इंट्रामस्कुलर दिया जा रहा है नॉन ओरल रूट से, दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है।
0: जी।
1: जो इंजेक्शंस है उसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन है, और जो पिल्स है वो दोनों तरह का आता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन भी और ओनली प्रोजेस्ट्रॉन पिल भी। तो वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट दिया जाता है, किस पेशेंट को किसकी आवश्यकता है। और रही बात की इंजेक्शन, तो इंजेक्शन चूंकि दिया जाता है और वो 3 महीने के लिए होता है उसका डोज, तो उस 3 महीने तक मेंसेस नहीं आता है। तो कुछ महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि पता नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, वो समझ नहीं पाती हैं। पिल्स में ऐसा है कि उसमें बीच में ब्लीडिंग होता है, फिर अगले महीने का लेना है
0: जी।
1: तो वो समझती हैं। लेकिन बात यह है कि पिल्स रोज लेना पड़ता है, जिसमें भूलने का चांस रहता है, और अगर 2 दिन भूल जाते हैं तो बीच में बच्चा ठहरने का चांस रहता है। तो ये सब बातों के कारण इंजेक्शन में ज़्यादा
0: मतलब इंजेक्शन
1: इजियर हो जाता
0: सुरक्षित
1: है,
0: मानते हैं।
1: नहीं सुरक्षित नहीं, मतलब इजियर हो जाता है एक
0: इजियर,
1: तरह से,
0: हाँ
1: कि मतलब एक बार लिया और 3 महीने भूलना तो है नहीं, फिर 3 महीने
0: जी
1: बाद जाके उन्हें इंजेक्शन लेना है।
0: जी
1: तो इस तरह से जो है, जिन्हें याद नहीं रहता है या उतनी ज़्यादा समझदार नहीं है, तो वो इंजेक्शन से उनका काम चल सकता है।
0: जी
1: मगर वही है फिर कि इंजेक्शन में तो आपको इंजेक्शन लेना है, और टैबलेट्स तो इजी है, खा लेना है। तो अगर समझ के कोई पिल्स ले, तो मेरे हिसाब से पिल्स, ओरल पिल्स ज़्यादा अच्छा है,
0: अच्छा
1: क्योंकि वो समझ भी रही है, और जब उसको स्टॉप करना है तो उसी समय स्टॉप भी करेगी, कोई उसको मेंस्ट्रुअल इरेग्युलरिटी नहीं फेस करना पड़ेगा।
0: इसमें साइड इफेक्ट्स ऐसा कुछ?
1: साइड इफेक्ट्स प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल में बहुत कम ही साइड इफेक्ट है,
0: जी
1: ईस्ट्रोजन से थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, मगर उसको तौल के दिया जाता है कि किस पेशेंट को ईस्ट्रोजन डिपेंडेंस से प्रॉब्लम होगा,
0: जी
1: ये डॉक्टर ही बता सकते हैं कि किसको देना है
0: हाँ,
1: किसको
0: और
1: नहीं।
0: इसके लिए बीच बीच में संपर्क तो करते ही रहना
1: हाँ
0: चाहिए,
1: हाँ
0: क्योंकि जाने अनजाने कई ऐसी गलतियाँ हो सकती है
1: हाँ
0: बहनों से।
1: हाँ
0: अगर ऐसी बहनों की बात अगर हम करें कि जहाँ की उन्हें खुद सब कुछ देखना है और कोई सहयोगी नहीं है, घर के पुरुष अगर उनका साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी बातों को समझना होगा।
1: बिल्कुल
0: तो थोड़ा और ये जो सुरक्षित तरीके से जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि परिवार नियोजन के लिए, तो थोड़ी सी और जानकारी आप बहनों को दें, ताकि हमारी बहनें और भली भांति समझ
1: तो
0: सके सारी बातों को।
1: हाँ, तो जब भी किसी का डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी के बाद उन्हें करीब 1.5 महीने तक तो गर्भ नहीं ठहरने का चांस रहता है।
0: जी
1: तो हम हमेशा बुलाते हैं कि 1 महीने बाद आकर के परिवार नियोजन की बातें कर लो। तो जैसे ही 1.5 महीने होते हैं, उसके बाद उन्हें या तो मल्टीलोड लगा लेना चाहिए,
0: जी
1: या फिर जो कि इंट्रायूटराइन डिवाइस है, जिसको कि गर्भाशय के अंदर डाला जाता है,
0: जी
1: उसके बारे में जो अवधारणा है कि उससे कैंसर होता है, वो ऐसा बात नहीं है। उसमें सिर्फ एक मेटल होता है, कॉपर होता है, तांबे से कुछ नहीं होता है। तांबा तो कॉपर तो खाते भी हैं, मतलब मुंह से भी टैबलेट्स में लोग लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि तांबा से आपके शरीर में भी कोई रिएक्शन नहीं होता है वैसा,
0: जी
1: तो उससे कोई हानि नहीं पहुंच सकता। जिस तरह हम लोग किसी तरह का गले में कान छिदवाते हैं
0: जी
1: कॉपर के तार से,
0: बिल्कुल
1: उसको पहने रहते हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये भी सिर्फ बॉडी के कंटैक्ट में रहता है कॉपर और कंटेनिंग डिवाइस, लेकिन उसमें उससे कुछ हानि नहीं उसको होती है
0: जी
1: पेशेंट को। तो इसीलिए सबसे सेफ ये डिवाइस है, और अगर सूट कर जाए तो सबसे अच्छा है।
0: जी
1: किसी किसी को कभी कभी सूट नहीं करती है, तो उसके केस में फिर मैं एडवाइस करूँगी कि पिल्स पर ही वो रहें। और अगर उन्हें कन्वीनियंस लगता है कि नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, 3 महीने मेंस नहीं हो, तो वो इंजेक्शन भी ले सकती है।
0: जी तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपने ये सारी जानकारी दी बहनों को, और बहनें इसका बहुत बेहतर तरीके से लाभ तो उठाएंगी ही। चलते चलते हम चाहेंगे कि आप सारी बहनों के लिए इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी देना चाहें, कोई संदेश के तौर पे जो आपको लगे कि होना चाहिए।
1: परिवार नियोजन से बच्चे, जिसको आपने लाया है, बच्चा जो आपका संसार में आया है, उस पर आप अच्छे से ध्यान दे सकेंगी, क्योंकि दूसरा बच्चा तुरंत नहीं आएगा। तो एक बच्चे को अच्छे से लालन पालन कर लें, उसके बाद आपका भी हेल्थ 2-3 साल में ठीक हो जाए, तभी दूसरा बच्चा होना चाहिए। और 2 बच्चे से ज़्यादा

0: हमारे देश में तो बहुत ही मुश्किल है, अगर 3 होता है तो पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से भागेगा, बल्कि अब तो ऐसा हाल हो रहा है कि एक ही बच्चा रहे तो वो बेहतर है। मगर ठीक है, 2 तक इसलिए कि बच्चे को भी भाई बहन चाहिए, लेकिन तीसरे में तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा ही मेरा सोचना है।
1: और हर एक की ये सोच बन जाए,
0: अगर
1: तो
0: हर एक की सोच बन जाए तभी जनसंख्या कंट्रोल होगा
1: जी।
0: और जनसंख्या नहीं कंट्रोल होने से सारे संसाधनों की कमी तो होनी ही
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ख़ास बातों के बारे में बताया और हमारी बहनों ने इसे सुना और समझेंगी भी, और जाहिर सी बात है कि इसे अपने जीवन में अपनाएंगी भी।
2: अभी बहने सुन रही थी पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय था सुरक्षित परिवार नियोजन। भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर रेखा झा और भेंट करता थी संगीता घोष। और अब बहनों चलते चलते आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

नारीलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुर संगम कार्यक्रम। आज सुर संगम के कलाकार हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद साबरी खान। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन से। आइए सुनते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग मध्यमाद सारंग में।

आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग मध्यमाद सारंग में। सुर संगम कार्यक्रम को अब हम बढ़ाते हैं थोड़ा और आगे और आपको सुनवाते हैं उस्ताद साबरी खान का सारंगी वादन राग गॉड सारंग में।

आप सुन रहे थे उस्ताद साबरी खान का सारंगी वादन राग गॉड सारंग में। इसके साथ ही संपन्न होता है सुर संगम कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजा है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज लोकरंग के गायक कलाकार हैं गौतम कुमार मंडल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनकी गाये देवी गीत से।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आप सुन रहे हैं लोकरंग कार्यक्रम। कार्यक्रम को अब हम बढ़ाते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं गौतम कुमार मंडल के स्वर में ये शिव भजन।

लोकरंग कार्यक्रम को हम देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रभावी तरीके से जारी। 14 जुलाई को बीएलओ और चुनाव पाठशाला की दूसरी समीक्षा बैठक। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने पर जोर। कोयला मंत्रालय ने खोली कमर्शियल कोल ब्लॉकों की नीलामी के नए चरण की बोलियां। 23 में से 8 ब्लॉकों के लिए 16 कंपनियों ने लगाई 21 बोलियां। नई दिल्ली कंसल्टेंट्स को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में खराब कानून व्यवस्था के कारण निवेश की संभावना नहीं के बराबर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में 14 और 15 जुलाई को तेज बारिश का अनुमान। मौसम केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची के जिम्नास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने दिल्ली में जीता स्वर्ण। चोट के बावजूद ऑल इंडिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड का नाम किया रोशन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत 14 जुलाई को बीएलओ, बीएलए2 और चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिहीन बनाना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें न जुड़ सके। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और पुराने चरणों के दूसरे प्रयास की बोलियों खोल दी है। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए कुल 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत की मजबूत भागीदारी दर्शाते हुए 16 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट्स को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा खराब कानून व्यवस्था के कारण यहां निवेश आने की संभावना नहीं के बराबर है।
1: राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो काफी खराब है। आए दिन आप देखते होंगे कि अपहरण हो रहा है, चोरी, डकैती, हत्या, पूरे झारखंड में स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के वातावरण में भय का माहौल हो तो फिर वहाँ कोई इन्वेस्ट करेगा, इसकी हमें संभावनाएं बहुत कम दिख रहा है।
0: राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकारी वाहन लौटाने और मुख्यमंत्री से किसी भी तरह की नाराजगी की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार या मुख्यमंत्री से उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। श्री किशोर ने कहा कि उन्होंने किसी विवाद के कारण नहीं बल्कि केवल व्यवस्था की मौजूदा खामियों पर सवाल उठाए हैं।
2: सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुख्यमंत्री जी से कोई गिला शिकवा नहीं। ये व्यवस्था पर कि राज्य का पुलिस महानिदेशक वित्त मंत्री के पद का जवाब 2.5 महीना तक ना दे, ये सवाल उस पर है। राज्य वित्त विभाग का संयुक्त सचिव अगर कोई पत्र लिख दे मंत्री को, ये सर्विस रूल में कहीं नहीं है अधिकार उनको प्राप्त। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने ये कदम उठाया है।
0: रामगढ़ में डाक विभाग रक्षाबंधन के अवसर पर मात्र 70 रुपए में देश के किसी कोने में हस्त निर्मित राखी भेजने के लिए विशेष स्पीड पोस्ट अभियान चला रहा है। इस विशेष शुल्क में 55 रुपए स्पीड पोस्ट चार्ज, 10 रुपए का वाटरप्रूफ लिफाफा और 5 रुपए प्रबंधन शुल्क शामिल है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रविशंकर राय के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक को बढ़ावा देना और डाक सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। दुमका जिले के सभी गांवों को इस वर्ष दिसंबर तक ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए छूटे हुए घरों में शौचालय, सोखपीट और नापेट का निर्माण तेजी से किया जाएगा। गांवों को पूरी तरह कचरा मुक्त बनाने के लिए हर घर से सूखा कचरा संग्रह और उसके वैज्ञानिक निष्पादन की व्यवस्था होगी। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र में GSSP PGT शिक्षक नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की घूस मांगते हुए एक आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है। चंडील अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव प्रकाश कुमार ने बताया कि आरोपी सुशील कुमार को ग्रामीणों ने रंगो हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी के पास से शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 6 ब्लैंक चेक और एडमिट कार्ड बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.aar.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @DIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी इलाकों में भी हाथियों के प्रवेश से स्थानीय लोगों में भारी दहशत है। वन विभाग के DFO सौमित्र शुक्ल ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
3: एक क्विक रिस्पांस टीम और वन रक्षी सभी लोग लगातार हाथियों की मॉनिटरिंग करते हैं, हाथी को ट्रेस करके उसे सेफर इलाके में ले जाने का प्रयास। इसके लिए माइकिंग कराई जा रही, लोगों में अवेयरनेस भी करी जा रही। जहां भी हाथी होता है उसके अगल बगल के सभी गांवों को हम लोग डेली सूचित करते हैं वहां पर कि यहां पर हाथी का प्रेजेंस है और यहां पर अभी बाहर नहीं निकले या रात में या अकेले जंगलों में ना।
0: इधर स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने लगातार हो रही जंगलों की कटाई को इस समस्या का मुख्य कारण बताते हुए वन विभाग से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है। दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी सुरक्षा के लिए 600 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगा। मंदिर परिसर, गर्भगृह, कांवरिया कतार और शिव गंगा जैसे प्रमुख स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाएंगे। आज पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1990 से हर साल 11 जुलाई को यह दिवस नियमित रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य विषय युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में धनबाद के सदर अस्पताल में परिवार कल्याण मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में नुक्कड़ नाटकों और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन अपनाने और बच्चों के बीच उचित अंतर रखने के प्रति जागरूक किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि यह अभियान आगामी 10 अगस्त तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में जारी रहेगा।
4: अभी हमारा जो आंकड़ा है 2.1% हमारा एक बर्थ रेट, यानी प्रत्येक दंपति को 2 बच्चे, यानी हमारा आबादी 1.40 करोड़ है। ये अगर हम आंकड़ा जो तय करते हैं तो हमारा स्टैग्नेंट रहेगा, लेकिन हमारा झारखंड का राष्ट्रीय बर्थ रेट है हमारा 1.9, अभी स्टैटिक बर्थ रेट अभी टिके हुए हैं, ये हमें मेंटेन रखना है।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही मौसम विभाग ने 11 से 15 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 14 और 15 जुलाई को कई जिलों में तेज और भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे राज्य में मानसून की कमी दूर होने की उम्मीद है।
5: 13 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी और कहीं कहीं पर भारी वर्षा की भी संभावना है 13-14। सबसे बेहतर स्थिति रांची डिस्ट्रिक्ट का ही है, -11% है, और सबसे डिफिशियंट रेनफॉल है जो चतरा डिस्ट्रिक्ट का है, जो करीब -78% है।
0: रांची के युवा जिमनास्ट पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने दिल्ली में आयोजित 3rd ऑल इंडिया मंथन जिमनास्टिक कप के इंडिविजुअल मेन यूथ वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। चोटिल होने के बावजूद उन्होंने कड़े संघर्ष से यह मुकाम हासिल किया है और अपनी सफलता का श्रेय कोच विकास कुमार गोप व माँ श्वेता भट्टाचार्य को दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान प्रभावी तरीके से जारी। 14 जुलाई को BLO और चुनाव पाठशाला की दूसरी समीक्षा बैठक। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने पर जोर। कोयला मंत्रालय ने खोली कमर्शियल कोल ब्लॉकों की नीलामी के नए चरण की बोलियां। 23 में से 8 ब्लॉकों के लिए 16 कंपनियों ने लगाई 21 बोलियां। नई दिल्ली कंसल्टेशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में खराब कानून व्यवस्था के कारण निवेश की संभावना नहीं के बराबर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में 14 और 15 जुलाई को तेज बारिश का अनुमान। मौसम केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची के जिमनास्ट पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने दिल्ली में जीता स्वर्ण। चोट के बावजूद ऑल इंडिया जिमनास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड का नाम किया रोशन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार से पहले आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम। लोकरंग कार्यक्रम को अब हम बढ़ाते हैं आगे और गौतम कुमार मंडल के स्वर में आपको सुनवाते हैं ये पूर्वी।

गौतम कुमार मंडल के गाए इस झूमर के साथ ही संपन्न होता है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संताली पत्रिका कार्यक्रम जीवन झरना। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

जीवन झरना कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनिए प्रादेशिक समाचार हमारे

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और जन कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। श्री राधाकृष्णन कयाची के पीपाट परिसर में विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विकसित बिहार के बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। समारोह को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य नए और पुराने सभी सदस्यों को संसदीय कार्य प्रणाली और विधानसभा की नियमावलियों से परिचित कराना है। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह से इस सुविधा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की भी शुरुआत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बुजुर्गों को घर भूमि, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की सुविधा उपलब्ध होगी। सेवा के अंतर्गत पेपरलेस निबंधन, सीओ द्वारा निबंधन संबंधी पूर्व जानकारी तथा जीआईएस तकनीक के माध्यम से स्थल निरीक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। श्री सिन्हा ने पटना में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने किसानों से आग्रह किया कि वे उर्वरक खरीदते समय रसीद अवश्य लें। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना में भी लगभग 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बगहा की एक अदालत ने मानव तस्करी के एक मामले में पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी। यह मामला मात्र 24 दिन पुराना है। अररिया जिले के बथना थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 18 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। किशनगंज में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में पूर्णिया आदिवासी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम विजेता बनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنا ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ جمہوریت میں تضادات ایک فطری امر ہے، لیکن آئین کے تئیں عزائم اور عوامی فلاح سب سے بالا تر ہونا چاہیے۔ جناب رادھا کرشنن گیا جی کے بیپاٹ احاطے میں ارکان اسمبلی کے ٹریننگ کیمپ اور پربودھن پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے عوامی نمائندوں سے جمہوری اقدار، شفافیت اور عوام کے تئیں جواب دہی کو ترجیح دینے کی اپیل کی۔ جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ترقی یافتہ بہار کے بغیر ترقی یافتہ بھارت کے نشانے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تقریب میں گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: संगठनों स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 2:15 होने वाले हैं। आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट

0: मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार

0: तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
3: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानसोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1

0: होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जब वी मेट, फिल्म से। गायक कलाकार हैं उस्ताद सुल्तान खान। गीत इरशाद कामिल के हैं। संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रेया घोषाल एवं उदय मजुमदार के युगल स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत। गीत गुलजार के थे, संगीतकार थे एआर रहमान और फिल्म थी गुरु। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कोयला से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत इंदिवर ने लिखे हैं, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब

0: घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण एवं चित्रा के युगल स्वर में। गीत इब्राहिम अश्क के हैं, संगीतकार हैं राजेश रोशन और फिल्म है कोई मिल गया।

तुलसी कुमार के गाए लुका छिपी फिल्म के इस गीत के साथ ही संपन्न होता है चित्रपट से कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम। आज प्रादेशिक संगीत के कलाकार हैं मधुकर निराले और साथी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनकी गाए गणपति वंदना से।

मधुकर निराली और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही संपन्न होता है प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:20 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

बादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुक्त हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारुमित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओ मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कोड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, हुमल महिंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूता पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड, लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, ये पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा, वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हमने पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खां महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए पढ़िए।

0: अल्लाह अल्लाह।
1: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
0: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
1: हाँ पीर बाबा।
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
1: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
0: बेटे रही माँ, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
1: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
1: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी जलील हरकत, तूने जान नहीं ले ली उसकी?
1: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहां था?
1: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
0: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
0: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
1: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
0: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहाँ?
1: अभी तो आपके पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
0: और तेरे साथी?
1: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
0: देख रही माँ, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
1: हाँ बाबा।
0: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
1: जो हुकुम पीर बाबा।
0: अल्लाह।
1: बाबा
0: बोल बेटे।
1: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
0: हाँ हाँ बोल।
1: इस फकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
0: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
1: अच्छा बाबा, खुदा हाफिज बाबा।
0: अल्लाह हाफिज।

0: घड़े कमानदाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग मांगड़ियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुकुमंदाता।

0: महारावल का इकबाल बुलंद हो।
1: नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
2: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
1: हुजूर की मेहरबानी है।
2: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
1: जो हुक्म अंदाता।
3: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
1: खबर सही है।
3: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
1: एकदम सच है।
3: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोली पिटवा रखी है।
1: आप बजा फरमाते
3: हैं। क्या तुम वही रहीम खां हो?
1: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीम है।
2: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
1: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
2: हमारा काम क्या डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
1: गुस्ताखी माफ हो अंदाता। रहीमा इंसानियत की, वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है जो 7 समंदर पार से यहां आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस छीन लाने का काम अंजाम देता है।
2: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती है।
1: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
3: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
1: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
4: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
1: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
2: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
1: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
2: तो फिर ठीक है। देवान जी,
5: हुकुम।
2: रहीम खां को अपनी टोपी लगा दो।
5: जो हुकुम अंदाता।
2: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
1: घनी घनी खम्मा अंदाता।

0: खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
1: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
0: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
2: मुर्दाबाद,
0: वतन के दुश्मन
2: मुर्दाबाद,
0: इनकलाब
2: जिंदाबाद,
0: हिंदुस्तान
2: जिंदाबाद।
0: अब चलो, ऊंटों के पिलान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, welcome, Mr. Harsan. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया। हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से Mr. Harsan, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है।

0: गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है, इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
1: जरूर मिस्टर हर्सन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
0: राम सिंह
2: हुकुम अंदाता।
1: हर्सन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है, रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे, इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
0: That's very good. Thank you, Your Highness.
3: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

0: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
1: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
0: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंधाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पोस्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
1: कैसी वारदात?
0: वहां अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
1: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
0: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
1: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
0: यहाँ मौत का डर किसको है, जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
1: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
0: अच्छा, अलविदा।
1: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
2: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: 对，妹，把你，感觉特别，
1: 妹，提供给你吗？
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं, जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहनी दे से
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूँ।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंधाता को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूँ? नहीं, जो अब तक

0: खुशेर आसी रहने दे करीमा,
1: मेरी बात मानो रहीम भाई, चलो मेरे साथ।
0: अब ये झाड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
1: ऐसा मत बोलो रहीम भाई, ऐसा मत बोलो।
0: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा। आगे ये काम तुम लोग करना, फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना।

0: जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह,
1: या खुदा, तेरी खुदाई, पीर बाबा आप यहाँ।
0: पीर बाबा, आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
0: आमीन। अलविदा बाबा।
1: अल्लाह, तुम वैसे नहीं जा सकते।
2: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
3: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
4: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
3: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि

0: आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता और।
1: जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है।
0: जी
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन लें।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
1: जी,
0: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे
1: याद आया। क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।
0: जी

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर

0: है, वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
1: जी।
0: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
1: जी जी।
0: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।
1: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
0: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ, वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
1: जी जी।
0: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना, तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
1: बिल्कुल, एक हेल्दी कंपटीशन था हमेशा।
0: जी जी।
1: तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
0: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ, क्योंकि देखिए जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
1: जी।
0: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूंगा। मैं, वो बैठ नहीं सकते थे।
1: हाँ।
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
1: फ्री नहीं बैठ।
0: हाँ, फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से, बोले नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनकी जज्बात फीलिंग्स वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो जारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म खत्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी, जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लावल के कलाकार, उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं है।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
0: जी,
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
0: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनो ये तो आपने
0: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
0: जी।
1: मेरी माता जी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: वाह बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुपकर क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी, उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच और माँ जिस तरह की शायरी करती थी, उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी, तो सबसे पहले क्या लिखा आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल, जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहां जहां पढ़े पग संतन के वहीं वहीं भंडा ढार। जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली।
0: हाँ,
1: में
0: जी।
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे, और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद, चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है,

0: फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
1: जी।
0: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
1: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
0: जी कई मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी,

0: मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं और एड,
1: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
0: महानदी।
1: महानदी,
0: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
1: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपके किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहां से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लिखने के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आपकी रचनाओं में जो आपके किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूं, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, बिना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
0: जी,
1: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना। हाँ
0: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
1: जी।
0: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
1: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश, मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहां पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे,
0: बिल्कुल
1: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहां गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा, तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, 2 और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपये पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी, 5,000 उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5,00,000 रुपए आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं मुझे है ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने कहा पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपए देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
0: माध्यम बनी।
1: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
0: जी,
1: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी
0: जी। जी एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
0: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी
1: जी।

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिससे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही है, छलांगे मारती है, ये भी लिख दो, वो भी लिख दे, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना। आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं। और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए, क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा, खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
0: हर पलम सीखती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
1: बहुत संघर्ष रहा है। जीना जो है ना, वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
0: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
1: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
0: जी।
1: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ, मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी थोड़ा सा इस मामले में, बोल देती थी, आउटस्पोकन थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए,

0: अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
1: जी।
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो
1: जी,
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत,
0: उनकी मेहनत और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं, जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतु खैरा कोई भी बन जाएगा
1: जी,
0: स्टार
1: जी,
0: नहीं बनते ना
1: जी। तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो
0: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो है ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
1: जी। चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। बाँ बाँ।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत बस कुछ ही।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

0: बेचैन नहीं है अब मेरी आंखें, मगर सच है कि तुम्हें ढूंढती जरूर है। नमस्कार, मैं हूं अवनीश और हाजिर हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी को लेकर। साथियों, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं। हमेशा की तरह आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। सच कहूं तो जितनी दफ़ा मैं आपसे मिलने के बारे में सोचता भर हूं, मन प्रसन्न हो जाता है। आपकी प्रतिक्रिया और उस पर मिल रहे आपके प्यार से हमेशा नतमस्तक हो जाता हूं। आकाशवाणी भागलपुर और ख़ासकर युववाणी को लेकर जो प्यार हम सभी आपके जो आप प्यार मिलता है, हम सभी इसके लिए आपके ऋणी हैं। और इस ऋणी के बदले हम आपको खूबसूरत कार्यक्रम लाने का प्रयास करते हैं और हमेशा आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अब तक जुड़ चुके होंगे हमारे साथ मीडियम वेव 1458 किलो हर्ज या 105.7 मीटर पर और FM के 100.1 पर या न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आकाशवाणी भागलपुर से। और मैं हूं अवनीश। आज की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए हाजिर हूं तो युववाणी कार्यक्रम में हम आपके लिए आपको लिए चलेंगे भावों की अपनी अनोखी दुनिया भावगीत में। साथ ही दिन विशेष चर्चा में हम बातचीत करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस पर। आज की सुर्खियों पर नज़र डालेंगे सेगमेंट करंट अफेयर्स में। मनोरंजन के इस सफर में हम आपके ज्ञानवर्धन के लिए सेगमेंट को शामिल करेंगे डेली ट्रिविया में सामान्य जानकारियाँ। साथ ही हम आपसे पूछेंगे फन फैक्ट के सवाल जिसके जवाब आपको सफ़र के दौरान ही सोचना है। सही जवाब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, तो अभी नोट कीजिए फन फैक्ट का हमारा यह सवाल। रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रसारण कब हुआ था? सवाल एक बार फिर से, रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रसारण कब हुआ था? सवाल का सही जवाब कार्यक्रम के अंत तक आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल पर। ईमेल आईडी नोट कीजिएगा phaiarbhagalpur@gmail.com। साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा को यहीं समाप्त करते हैं और आपको लिए चलते हैं युववाणी की मनमोहक यात्रा पर। साथियों, आज 11 जुलाई है, आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और ये विषय हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो चुकी है। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, इसलिए भी यह हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और सतत विकास जैसे मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साथियों, जनसंख्या तभी एक शक्ति बनती है जब उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और रोजगार के अवसर प्राप्त हों। साथ ही हमें जनसंख्या नियंत्रण पर भी विचार करने होंगे। परिवार नियोजन, महिलाओं का सशक्तिकरण और किशोर स्वास्थ्य संतुलित जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख आधार हैं और युवा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम सभी इंटरनेट की दुनिया में देश के समस्याओं से हमेशा अवगत रहते हैं, तो हमें अधिक जागरूक रहना होगा और अपने क्षेत्र के ऐसे लोग जहाँ तक कि अभी जागरूकता नहीं फैली है वहाँ जाकर लोगों को जागरूक करना होगा। हम युवाओं का देश के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी है। साथियों, आज के दिन विशेष चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे युववाणी के शेष कार्यक्रम भावगीत के साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वेलकम बैक, मैं अवनीश और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। साथियों, जब भावनाओं और खूबसूरत एहसास की बात हो तो हम सभी एक सफर को चुनते हैं, प्यार का सफर। प्यार एक ऐसा अनोखा एहसास है जिसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। तो आइए आज की शाम भावगीत के माध्यम से आपको लिए चलते हैं प्यार की एक खूबसूरत सफर पर।

हॉल की बत्तियां जल रही थी। बल्ब की रोशनी उसकी कान के बालियों से टकराकर आदित्य की निगाहों को बेचैन कर रही थी। बड़े भाई की सगाई का माहौल था, लेकिन आदित्य तो कहीं और खो रहा था, किसी और के निगाहों में डूब रहा था। भाभी के पास खड़ी एक लड़की, जिसके नए नक्स तो ऐसे थे जिसे खूबसूरती की तारीफों से तो कैद नहीं किया जा सकता था। कपड़े और हाथ के कंगन सफ़ेद चमकीले पत्थरों से जड़े थे, जो बार बार बल्ब की रोशनियों से अटखेलियां कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी जैसे पूरी महफिल मुस्कुरा उठा हो, मासूम जैसे कोई रेशम की डोरी हो।

कुत्ते उसकी नजरों से खुद को दूर नहीं होने दे रहा था। वह अपनी फोन में बार बार इस खूबसूरती को कैद कर लेना चाहता था। वो कोई भी ऐसा पल नहीं छोड़ना चाहता था जिसे कैमरे में कैद ना किया जा सके। सगाई के रस्मों के बीच आदित्य ने पास जाकर हल्की सी आवाज से पूछा, क्या नाम है आपका? हल्की सी मुस्कान के साथ, शिवानी। आप बहुत खूबसूरत हो, आप भी। शिवानी मुस्कुराते हुए दूर जाकर खड़ी हो गई। अब दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिल रही थी। अगर मैं उस दिन डॉक्टर होता तो बिना किसी शोध के जरूर कह देता कि दिल का रास्ता निगाहों से होकर गुजरती है। उसके पास रहना, साथ मुस्कुराना और चुपके से शिवानी का अपने हाथ से एक कंगन उतारकर आदित्य को सौंप देना प्यार की सहमति हो गई। आदित्य ने कंगन को कई बार निहारा, प्यार की गहरी सांसें ली, उसे चूमा और एक अमानत की तरह शर्ट की ऊपरी पैकेट में रखा और झूम उठा जैसे

सगाई की रस्म खत्म हो गई। सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है और ये दोनों अपने यादों को समेट रहे हैं। एक दूसरे को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। आदित्य ने उसे देखते हुए कंगन को एक बार फिर चूमा और आंखें बंद कर ली।

साथियों, उम्मीद करते हैं आपको यह मोहब्बत का सफ़र पसंद आया होगा। और अब बारी है डेली ट्रिविया का, जहां हम सभी सामान्य रोचक तथ्यों से रूबरू होते हैं। तो आज के डेली ट्रिविया में जानेंगे युवा आबादी के अनुसार भारत में दुनिया का स्थान क्या है, यानी रैंक क्या है। शायद आपको पता भी होगा, हम पहले स्थान पर हैं। 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की हमारी आबादी लगभग 35.6 करोड़ के करीब है और दूसरे स्थान पर चीन का स्थान है। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। हमारी सेगमेंट करंट अफेयर्स में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने की घोषणा की है और वस्तुओं में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का 35,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथियों, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। फन फैक्ट, जो हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपसे एक सवाल पूछा था, अब वक्त है उसके सही जवाब आपको देने के। तो उसका सही जवाब है 1906। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने जवाब सोच लिया होगा और जवाब जो है वो आप भेजे नहीं, आपने ईमेल नहीं किया, लेकिन आपने सोच जरूर लिया होगा। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप भेजेंगे। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी आदमपुर भागलपुर, पिन कोड है 812001। साथियों, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। फिर मुलाकात होगी, तब तत्काल के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी भागलपुर को, और दीजिए अपने दोस्त अवनीश को इजाज़त। नमस्कार।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: श्रोताओं, अंतराल के पहले आपने बादल फिल्म का गीत सुना। गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह और उदित नारायण। और आइए अब सुनते हैं बोल बच्चन फिल्म में हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल को।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं फिल्म बंटी और बबली का गीत। गायक कलाकार हैं अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और लॉय मेंडोंसा।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे और अब कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज की सभा में अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे विशेष भेंटवार्ता विश्व जनसंख्या दिवस 2026 युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज के लिए और भविष्य के लिए। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा और इनसे बातचीत करेंगे सुप्रभात राय। 7:50 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुरलहरी, कलाकार होंगे ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान की अगली कड़ी। 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 पर संस्कृति भारती कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे से। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। कल की सभा सुबह 5:55 पर खेत खलियान कार्यक्रम के साथ आरंभ होगी। 6:05 पर आप सुनते हैं चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल आप डॉक्टर अजय कुमार सिंह से दी गई भेंटवार्ता सुनेंगे। विषय होगा बच्चों में इंसेफलाइटिस। 7 बजे से लेकर 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम होगा गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम में कल आप डॉक्टर स्मिता सिन्हा के गाए कुछ गीत और भजन सुनेंगे। साथ ही साथ शिवशंकर सिंह पारिजात की वार्ता भी हम आप सुनवाएंगे वन फूल और भागलपुर। 9:30 पर बच्चों के लिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा बाल मंजूषा। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में कल के कलाकार होंगे विश्वनाथ ठाकुर। 11 बजे से फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 12 बजे आप सुनेंगे एक और साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान वाणी। 12:30 पर सुर संगम में कल आप शाहिद परवेज को सुन सकते हैं। 1 बजे लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोकरंग, कलाकार होंगे नूतन कुमारी। 1:30 पर आप सुनेंगे अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण। 2:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 5 बजे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम लेकर आते हैं हम युववाणी। 6 बजे ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में कल आप शिवशंकर कुशवाहा के गाए कुछ लोकगीत सुनेंगे। 7:50 पर सुरलहरी के कलाकार होंगे स्वामी प्रणवानंद। 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 पर पुनः आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं और 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा का अनुप्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से करेंगे। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बंधुओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शंकर का नमस्कार।
1: सभी श्रोताओं को पूरो काफी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शंकर भाई।
0: नमस्कार नमस्कार पूरो भाई,
1: क्या हाल समाचार है, क्या कैसे हैं आप?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ पूरो भाई। अपना सुनाइए, धान का बिहन बाग किए कि नहीं? समय समय पर अब वर्षा होने लगी है भाई, आषाढ़ महीना चल रहा है, धान रोपने का समय आने को ही है पूरो भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल शंकर भाई, देखिए अब तो मतलब बरसात जो अभी पिछले एक सप्ताह हम कह सकते एक सप्ताह से एकदम हर तरफ एकदम वर्षा वर्षा खूब हो रहा है, और अभी आप न्यूज वगैरह सुन रहे होंगे तो कई जगह में तो बाढ़ जैसी समस्या
0: और गंगा यमुना भी बढ़ने लगी है,
1: पूरे पूरे उफान पे धीरे धीरे आने लगी है। और इसी समय होता क्या है शंकर भाई कि देखिएगा कि नोचनी जैसी समस्या है, या फिर घर में हल्कू सेमा सेमा रहेगा, कपड़ों में गंध आने वाली समस्या, फंगस जैसी समस्या, ये ज्यादातर ना अब समाज में फैलेंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अभी कहा जाता है ना कि हमारा जो पाचन क्रिया है वो बहुत धीमा हो जाता है, तो इस समय जैसे अभी हमें एकदम बहुत मसाले वाली सब्जी या फिर जो एकदम जो मांस मछलियों का सेवन करते हैं उनको इन सब चीज पर एकदम विशेष ध्यान
0: दूर रहना चाहिए।
1: एकदम एकदम बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और अगर आपको नोचनी जैसी समस्याएं हो तो सबसे पहले अपना तो शरीर का ध्यान रखे, और ज्यादा समस्या लगे तो डॉक्टर से एकदम सलाह ले लेना चाहिए।
0: मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ जाता है यदि आप घर के आसपास या अपने घर की सफाई नहीं रखते हैं, तो कुछ जानलेवा मच्छर आपके हमला कर सकते हैं, वो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये सारी,
1: क्योंकि पानी है अगर कहीं जमा रह जाए तो वहां पर फिर मच्छर, फिर लार्वा, फिर धीरे धीरे वहां जनसंख्या मच्छरों की बढ़ने लगती है। तो खास तौर पे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी मजबूत है
0: बिल्कुल
1: उनको तो थोड़ा कम असर होगा।
0: बिल्कुल, घर के आसपास तो जो गंदा पानी है उसे तो साफ करें ही, और छत पे खास करके कोई ऐसा बर्तन ना रखें जिसमें पानी बहुत दिनों तक रह जाए, कि साफ पानी में भी मच्छर पैदा होता है।
1: होता है शंकर भाई कि हम लोग जैसे अभी कूलर गर्मियों में चला रहे थे, बहुत सारे जगहों में कूलर चल रहा था, तो उसमें पानी हम लोग छोड़ दे रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वो पानी की निकासी कर लेनी चाहिए, और जो हमारी पानी की जो टंकी है उसकी साफ सफाई भी एकदम होते
0: रहे। करती
1: रहे बिल्कुल, क्योंकि स्वच्छ अगर हम पानी पिएंगे तो हमें टाइफाइड डायरिया जैसी समस्याएं नहीं होंगी।
0: कहने का मतलब पूरे भाई, मौसम कोई भी हो हम लोगों को निजी तौर के साथ साथ अपने अपने घर के बच्चे बुजुर्गों एवं पशुधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: जी जी जी,
0: नहीं तो बीमारियों का शिकार आप कभी भी हो सकते हैं।
1: एकदम एकदम एकदम।
0: और पूरे भाई आज 11 जुलाई
1: है,
0: और आज के दिन को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जानते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: तो जब 11 जुलाई 1987 को पता चला कि की आबादी 5 अरब हो गई है, तब 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने इसकी शुरुआत की, और जिसे मनाने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है।
1: बिल्कुल,
0: कहने का मतलब है पूर्व भाई कि जैसे परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के महत्व को समझना, ये सारी बातों पे ध्यान दिया गया है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
1: जी
0: 2026 में विश्व जनसंख्या दिवस वैश्विक जनसांख्यिकी रुझानों को आकार देने में युवा सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करने पर जोर देता है।
1: जी बिल्कुल शंकर भाई, हर वर्ष यह दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि बढ़ती जनसंख्या हमारे जीवन में, समाज में, पर्यावरण में और देश के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते
0: हैं। बिल्कुल,
1: साथ ही यह दिन हमें यह संदेश देता है कि यदि जनसंख्या के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संसाधनों का संतुलन विकास हो, तो यही जनसंख्या किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा शक्ति भी बन सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विश्व जनसंख्या दिवस का विचार जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सामने लाया गया, जैसा कि आपने भी बताया। तो 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 अरब तक पहुंचने से लेकर 2022 के अंत तक 8 अरब से अधिक होने तक,
1: एकदम एकदम,
0: यह दिवस हमें संसाधनों, स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास का जनसंख्या गतिशीलता में महत्वपूर्ण प्रभावों की याद दिलाता है।
1: जी जी जी।
0: और जहां तक बात है पूर्व भाई 2026 के विश्व जनसंख्या दिवस विषय की, तो इस वर्ष का थीम युवाओं को उनकी इच्छा अनुसार सशक्त परिवार बनाने, साथ ही स्थिरता एवं समानता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कराता है। और पूर्व भाई एक बात बताऊं, वैश्विक जनसंख्या 1 अरब से बढ़कर आज लगभग 7.9 अरब हो चुकी है।
1: अच्छा,
0: और शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शंकर भाई होता है क्या है ना कि भारत में जो अपना विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश एकदम अग्रणी हो चुका
0: बिल्कुल।
1: और इतनी बड़ी आबादी के साथ अपने अनेक अवसरों को लेकर वो भारत आता है, लेकिन यदि योजनाएं और संसाधन पर्याप्त हो तो अनेक चुनौतियों का सामना भी किया जा सकता है, जैसे आप शहरीकरण जैसी समस्याएं बता रहे हैं। और जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो भोजन, पानी, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर भी दबाव पड़ता है।
0: बिल्कुल, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक वैश्विक आबादी का लगभग 66% लोग शहरों में रहने लगेंगे।
1: जी जी जी।
0: इसलिए मुझे जहां तक समझ में आता है पूर्व भाई कि विश्व जनसंख्या दिवस 2026 वैश्विक जनसंख्या चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसलिए जागरूकता अभियान के तहत शैक्षिक कार्यक्रम, चित्रकला जैसी रचनात्मक शैली, इन सारे माध्यम से हम सबों में से हर व्यक्ति, छात्र और संगठनों को इस दिवस को मनाने में योगदान करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस को सही तरीके से मनाने का संकल्प लेना ही जरूरी है, और यदि संकल्प लेके कोई काम आप नहीं करते हैं तो वो लगभग समझ लीजिए कि अधूरा रह जाता है।
1: बिल्कुल।
0: जिससे ये सुनिश्चित हो कि आने वाली हमारी पीढ़ियां एक संतुलित एवं न्याय संगत विश्व का उत्तराधिकारी बन सके।
1: जी जी जी,
0: है ना
1: जी। शंकर भाई, होता क्या है ना कि जब भी हम जनसंख्या के विस्फोट की बात करते हैं कि अभी जैसा कि हम बता रहे हैं 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या है,
0: बिल्कुल,
1: तो पर्यावरण पर भी इसका गहरा प्रभाव
0: एकदम पड़ रहा है।
1: जंगलों की कटाई हो रही है, जल संकट सबसे बड़ा संकट जो अभी सामने आने को है, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि विकास और जनसंख्या के बीच में हम संतुलन कैसे।
0: और एक बात जानते हैं, सबसे जरूरी क्या समझना है आम लोगों को
1: जी,
0: कि अब किन्हीं के घर में यदि लगातार पुत्री का जन्म हो रहा है तो वो पुत्र के आशे में
1: जी जी
0: पुत्री
1: जी
0: जन्म देते जा रहे हैं। अरे भाई, पुत्र हो या पुत्री हो, बेटा हो या बेटी हो, दोनों समान है।
1: बिल्कुल।
0: आप दोनों को समान समझिए, समान शिक्षा दीजिए और वो आपके लिए तैयार होगा। कहने का मतलब है कि ये भावना आप छोड़ दें
1: जी। और यही है ना शंकर भाई की, अगर शिक्षा जैसा
0: ये ब्रह्मास्त्र बात, ये बात
1: ब्रह्मास्त्र उन्हें दे दिया,
0: इसके लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है कि शिक्षा यदि आ जाए तो फिर क्या
1: सब
0: कहना
1: कुछ, पर्यावरण भी संतुलित हो सकता है,
0: बिल्कुल,
1: रोजगार के नए अवसर भी मिल सकते हैं,
0: तो शिक्षा
1: गांव या शहर रहे, हम कहीं भी रह के अपना जीव को उपार्जन कर।
0: देखिए ना, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने भी 1952 में दुनिया भर में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। इतना ही नहीं, मिशन परिवार विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, आयुष्मान भारत जैसे कई कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कराया। साथ ही शादी के कम उम्र लड़का लड़की को बराबर मान्यता
1: जी,
0: हम दो हमारे दो जैसे नारा के साथ साथ आबादी बढ़ रही तो पेड़ भी बढ़ाओ भाई।
1: एकदम एकदम।
0: यदि जरूरत है कुछ करने का, पेड़ को आपने काटा फिर नया लगाओ भी।
1: जी जी जी।
0: इससे पानी भी बचेगा, जरूरतमंद संसाधनों की आपकी पूर्ति भी होगी।
1: जी जी।
0: आप एक काट लिए पेड़, अमरूद का था, खा रहे थे, अब क्या खाओगे, फिर से लगाओ।
1: जी जी,
0: है ना।
1: मतलब शंकर भाई, मिला जुला के ये कहना होगा कि संतुष्टि मन में हो।
0: बिल्कुल।
1: और संतुष्टि से बड़ा ही चीज कोई नहीं हो सकती। अगर आपके मन में संतुष्टि है कि हाँ हम इतने में ठीक हैं, तो आपके लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है।
0: बिल्कुल,
1: और अगर आप सोच लेंगे तो संसाधनों की कमी तो पड़नी ही है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब संध्या का भी समय हो चुका है शंकर भाई, और देवी मैया की कृपा अगर बनी रहे ना तो परिवार में सब कुशल मंगल रहता है।
0: शनिवार भी है।
1: जी जी। आइए एक देवी माँ का गीत सुनते हैं जी।

0: रेणु भारती जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, कितना बढ़िया, मतलब माँ दुर्गा का अनुपम एकदम पूरा सौंदर्य गुणगान। अब आगे शंकर भाई की कुछ हम लोग संदेश पहले सुन ले, उसके बाद फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।
1: जी बिल्कुल।
2: देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: जी, संदेश के बाद एक बार हम अपने श्रोताओं का पुनः स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। शंकर भाई, अभी हम लोग ना देश में जनसंख्या की बात कर रहे थे, चर्चा इसी पे हो रही थी कि कैसा मापदंड होना चाहिए। कोई देश अगर प्रगति करता है या फिर विकासशील कोई देश होता है या फिर कोई विकसित देश होता है, तो उसका विकास का ना क्रम होता है, एक एक करके हम लोग सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें जनसंख्या की भी कहीं ना कहीं जरूर अहम भूमिका रहती होती है। जी जी, तो अपने श्रोताओं को एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनाते हैं। देश के विकास में जनसंख्या की भूमिका क्या होती है, वार्ताकार हैं त्रिपुरारी मिश्रा जी।
4: आइए सुनते हैं।

0: जनसंख्या किसी भी देश के विकास के लिए वरदान होती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ देश में बड़ी संख्या में युवा आबादी भी बढ़ती है, जिनके कंधों पर देश के विकास की जिम्मेवारी होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह परिस्थिति ज़्यादा लागू होती है, परंतु जब अधिकतम सीमा रेखा को पार कर जाती है तब वही अभिशाप बन जाती है। वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हमारे सामने अभी जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या मात्र 36 करोड़ थी, जो अब वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 121 करोड़ से भी अधिक हो गई है। विश्व की लगभग 15% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि भूभाग की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.5% है। यह हमारे लिए बेहद चिंताजनक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न महत्वपूर्ण कारणों में जन्म एवं मृत्यु दर में असंतुलन, कम उम्र में विवाह, अत्यधिक निरक्षरता, धार्मिक दृष्टिकोण, निर्धनता, मनोरंजन के साधनों की कमी, संयुक्त परिवारों में युवा दंपतियों में अपने बच्चों के पालन पोषण के प्रति जिम्मेवारी में आई कमी तथा बंध्याकरण के प्रभावों के विषय में गलत सूचना या सूचना का अभाव आदि उल्लेखनीय है। गरीबों के द्वारा अधिक बच्चे पैदा करना दर्शाता है कि गरीबी एवं जनसंख्या के बीच आंतरिक संबंध है। गरीबी या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का कारण भी है और प्रभाव भी। अधिक बच्चे पैदा करके अपने परिवार की बढ़ती आवश्यकताओं से जूझते माँ बाप को बाध्य होकर उन्हें स्कूल जाने से रोकना पड़ता है, ताकि वे घर के खर्च में मदद कर सके। और फिर अशिक्षित एवं अज्ञानी बच्चे अपने पिता के जैसे भाग्य के ही उत्तराधिकारी हो जाते हैं। वे अपने पिता की तरह ही आवश्यकता से अधिक संतान चाहने लगते हैं। आज जनसंख्या वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ रहा है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में चमत्कारिक प्रगति के बाद भी हमारी प्रति व्यक्ति आय में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाई है। जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण की सैद्धांतिक व्याख्याओं के अंतर्गत एक व्याख्या मानी जाती है कि विकास जनन क्षमता की दर को कम कर देता है। यह भी कहा जाता है कि विकास मृत्यु दर को जन्म दर की अपेक्षा अधिक कम करता है, जिसका परिणाम जनसंख्या में वृद्धि है। सरकार की जनसंख्या नीति का उद्देश्य न केवल व्यक्तियों की संख्या की अनियंत्रित वृद्धि पर अंकुश लगाना होना चाहिए, बल्कि जनसंख्या के अनियंत्रित प्रसार को रोकना, शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों के बढ़ते हुए केंद्रीकरण को रोकना और व्यक्तियों के पंचमेल मिश्रण के लिए पर्याप्त आवास स्थान एवं आकर्षक पर्यावरण उपलब्ध कराना भी होना चाहिए। इन लक्ष्यों को ऐसी नीति के सृजन और क्रियान्वयन से संयुक्त रूप से जोड़ देना चाहिए, जिसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रित करना और भौतिक एवं मानव संसाधनों को लाभप्रद कार्यों में लगाने की योजना बनाना हो। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि अपने आप में भले ही समस्या ना लगे, किंतु यदि उसे संसाधनों की उपलब्धता से जोड़ दिया जाए तो यह चिंता का विषय बन जाती है। यदि देश लगभग 1.5 करोड़ व्यक्तियों की प्रति वर्ष की वृद्धि से बचना चाहता है तो केवल एक ही मार्ग शेष है, आवश्यक परिवार नियोजन एवं जनसंख्या हतोत्साहन की कड़वी घूंट लोगों को पिलाई जाए। इसके लिए एक उपयुक्त जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। परिवार नियोजन को उस दलदल से बचाना होगा जिसमें वह फंसा हुआ है। इसके लिए कार्यक्रम को आंतरिक रूप से और विकास की इकाई के रूप से देखा जाना चाहिए। परिवार नियोजन अभियान को फिर से खड़ा करने के लिए अनेक उपाय करने होंगे। इसके लिए थोड़ी बाध्यता के साथ प्रोत्साहन भी आवश्यक है। वैधानिक उपाय भी सहायक हो सकते हैं, लेकिन उत्तरदायी माता पिता की भावना पैदा करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि सामाजिक जागृति एवं भागीदारी अधिक से अधिक हो। सबसे अधिक बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में बंध्याकरण की अपेक्षा फासले की विधि को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे इसके अनुरूप जनांकीय प्रभाव प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में लगभग 5 में से 3 विवाहित स्त्रियां 30 वर्ष से कम आयु की हैं और 2 या अधिक बच्चों की मां हैं। बच्चियां ही बच्चे पैदा करें, इस सच्चाई को बदलना होगा। यह केवल फासले की विधि तथा लड़कियों का अधिक उम्र में विवाह को प्रोत्साहन देने से भी संभव हो सकेगा। परिवार नियोजन स्त्रियों की सामान्य परिस्थितियों को सुधारने में भी सहायक होगा। वह स्त्री जिसके पास पालन पोषण के लिए बच्चे हों और जो बार बार प्रसव प्रक्रिया से गुजरती हों, वह अपना अधिक समय माँ एवं पत्नी के रूप में ही व्यतीत करती हैं और घर की 4 दीवारी में ही बंद रहती हैं। वह समुदाय और समाज में कोई भूमिका अदा नहीं कर सकती जब तक वह अपने परिवार के आधार को तर्कसंगत न बना ले। परिवार नियोजन न केवल परिवार कल्याण में सुधार करेगा, बल्कि सामाजिक समृद्धि तथा व्यक्तिगत रूप में भी योगदान करेगा। भारत जैसे विकासशील देश में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसके परिणाम स्वरूप देश में अशिक्षा, गरीबी, भूखमारी, भूख, बीमारी, बेरोजगारी, आवासहीनता जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होंगी और देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अतः जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक को इस विकट समस्या से लड़ना होगा। समाज सेवी संस्थाओं की भी इस समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। आज अंध परंपराओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। बाल विवाह एवं बहुविवाह पर कानूनन प्रतिबंध तो लगाया जा चुका है, परंतु आम नागरिकों द्वारा भी इन कुरीतियों को किसी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। महिलाओं के शिक्षित होने से विवाह की आयु बढ़ाई जा सकती है। प्रजनन आयु वाले दंपतियों को गर्भ निरोधक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उन्हें छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात समझाई जा सकती है।
1: सालू का मैट्रिक
2: पूरे भाई, इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी
3: जी जी जी, जी।
2: देखिए, जनसंख्या जो है वृद्धि हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको शिक्षित करना पहले बहुत जरूरी है,
3: जिससे देश का विकास में भागीदारी हो सबूकी, तो ज्यादा हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
2: ये हम में से सभी लोगों को ये समझना होगा
3: जी।
2: सरकार तो एक नियम बनाती है, एक योजना तैयार करती है, लेकिन अमल करना हम लोगों को ही होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग उस पर अमल करें
3: जी जी जी।
2: आगे की कार्यक्रम की बात थोड़ी आप बता दें
3: जी जी। अब तो मतलब जैसे जैसे संध्या हो रहा है शंकर भाई, तो मन हो रहा है कि बीच बीच मतलब कुछ बातें भी होते रहे, कुछ गीत संगीत भी चलता रहा
2: है। क्या बात,
3: तो एकदम दोनों साथ में चले और अपने श्रोताओं को भी एक बड़ा बढ़िया एकदम 6 मासा सुनाते हैं। रेणु भारती जी का बड़ा सुंदर गाया हुआ है, आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं
2: 6 मासा।

0: बहुत सुंदर
1: जी
0: आपने
1: जी
0: सुनवाया है 6 माह साहब। और देखिए ये आषाढ़ महीने से शुरू हुआ और 6 मास तक जो है ये ऐसा वर्णन है। इस
1: जी जी जी
0: आगे के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा आप दृष्टिपात करा दें।
1: जी शंकर भाई, आप मुझे लग रहा है कि आज आप बाहर गए थे और किसान भाई से मिले हैं, तो वो जो बातचीत है, आपने जो किसान भाई से महत्वपूर्ण बातचीत की है कि केले की खेती पर क्या उनके विचार रहे हैं, और राजेश भाई थे ना? जी जी, तो आइए राजेश भाई और आपकी जो बातचीत है हम अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं बाह्य ध्वनिंकन के माध्यम से।
0: श्रोताओं, आए दिन हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबों को शिक्षा, चिकित्सा या फिर खेती गृहस्थी से संबंधित किसान भाइयों से ही भेंट करवाते हैं, और वो अपनी खेती किस तरह से करते हैं, क्या उनके खेती का रहस्य है जो कि अधिक से अधिक उपज वो प्राप्त करते हैं और अधिक से अधिक लाभान्वित होते हैं,

0: तो आइए आज हम इसी कड़ी में एक किसान भाई से मिलते हैं और उनके ही मुख से ही सुनते हैं कि वो केले की खेती खास करके जैविक खाद के माध्यम से कैसे करते हैं। राजेश भाई नमस्कार।
1: प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
0: कहिए कैसे हैं राजेश भाई?
1: ठीक छे, लेकिन अपने को हम पहचान लिए हैं ना सर।
0: है क्या बात करते हैं आप राजेश भाई, हमको आप कैसे भूल गए?
1: वह तो देखे छे कि अपने यहाँ लो छो है केलारो बगान देखी लो छो निहारी लो छो।
0: क्या बात है राजेश भाई,
1: अपने परिचय दे बहुत तब न कि कहाँ से है लो छो।
0: ये बात, हम राजेश भाई आकाशवाणी से आए हैं, आकाशवाणी भागलपुर से।
1: अच्छा अच्छा।
0: और ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम के तरफ से
1: हाँ?
0: हम आपसे भेंट करने आए हैं।
1: अच्छा अच्छा। प्रणाम प्रणाम।
0: हाँ, आपके बारे में पता चला कि आप भाई बहुत अच्छे ढंग से केले की खेती करते हैं और उसमें किसी भी तरह का पौधे में कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है और आपका फल भी स्वादिष्ट होता है, बाज़ार में उसकी मांग है। तो सोचिए एक बार ज़रा आपसे मिलें और ये जानकारी लें कि आप अपने केले खेती किस तरह करते हैं जो इतना अच्छा से होता है, तो और भी किसान भाई सुनेंगे आपकी बात। तो थोड़ा सा
1: की बताइए सर, है केला और खेती तो मत पूछो, जे हमरा सुनी का बरसात और पानी में जे दिक्कत हो है, कभी अंधड़ आएल नी तो सबटा जे है दू डेढ़ महीनार जे मेहनत पानी में चल
0: गया।
1: आरो है केला और खेती तो हम सनी लगाबे तो एक हम सनी खाद पानी थोड़े दे
0: तब
1: हो तो हम सनी बलवा रो गोबर
0: ओ
1: बकरी रो
0: भेनाड़ी
1: यहाँ सनी के सुखा के धूपो में कूटी करी के दे जड़ी में है। देखो केला रो गाछ केहन हो।
0: क्या बात है राजेश भाई, एकदम सही में। अच्छा, ये कौन सा केला है जो आप लगाए हैं?
1: है जो छो सिंगापुरी रुचको गाछ।
0: अच्छा अच्छा।
1: आरो है छको मालभोग रो।
0: अच्छा अच्छा ठीक।
1: आरो है छको जे छे हो बड़का बागलर केला जी कहे छो।
0: अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ
1: वह छो।
0: अच्छा वो एक सबसे छोटका जो होता है
1: हो सकर चिनिया।
0: हाँ वही वही। हाँ यही तो हम बोल रहे थे, देखिए ये एकदम सकर चिनिया ही है।
1: है सब देवी देवता का भी चढ़ाई छे।
0: क्या बात है क्या बात है।
1: और खेबो नहीं सर तो हाउ मिठो लगता हूँ कि मत पूछो।
0: हाँ और एक बात सुने हैं राजेश भाई बड़े बुजुर्गों से कि शिकर चिनिया केला जिसको बोलते हैं तो शकर चिनिया, शक्कर मीन्स मीठा।
1: हाँ।
0: चीनी के तरह जो मीठा शक्कर के तरह लगे।
1: लगे हाँ, सर।
0: हाँ, हाँ, हाँ। तो हम भी खाए तो बड़ा अच्छा लगा, तो पता चला कि किसी भी तरह का रोगी बीमारी आदमी भी इसको खा सकता है, एकदम बिल्कुल ये अलग चीज है।
1: हाँ।
0: जैसे कहते हैं कुछ बीमारी में केला खाने से फलेरिया बढ़ जाता है या ये होता है वो होता है,
1: ना ना हो
0: तो उसमें वो नहीं है।
1: हाउ सनी सर हाउ जे जैविक खाद जे हम सनी दे छे नी देसला ओकरा में कोई बीमारी नहीं छे।
0: क्या बात है क्या बात है।
1: हाउ यूरिया हाउ पोटास हाउ की जे दे छे तो ओकरा में तो एक मर तो हमरो गाछे जला दे।
0: आत्री भला बताइए, ई तो लेनी का देनी पड़ गया।
1: देख के बचवानी और जितना मात्रा में पड़ना चाहिए उतना नहीं दिख रही है, ढेर ढेर ढेर के बकट्टो बकट्टो
0: गड़बड़
1: बस
0: गड़बड़
1: सबटा गाछ पीला हो गया।
0: अच्छा राजेश भाई, जब आप लोग खेती केला की शुरू करते हैं तो विशेष तौर पे किस महीना में शुरू करते हैं और पहले खेत कैसे तैयार करते हैं?
1: खेत बाबू साहब एक पहले तो ट्रैक्टर से जोता पड़े छो।
0: ठीक है।
1: आ जोता करी कहो केला जो फरे जे छो ओकरा काटी काटी जना आलुआ नहीं रोपे छे होने के पहले लगाए पड़े छे।
0: ओ
1: तब गाछ हो छे।
0: हाँ।
1: तब जे छे पच पच हाथों पर एक गो गाछ दे छे।
0: अच्छा पांच हाथ अठारह पचे नब्बे।
1: हाँ तो ओकरा में जे की हो छे कि फल भी मजबूत हो छे, पांच हाथ देवे ते आरो गाछ में गाछ जे छे वो सुरक्षित रहते, गाछ का कोई डिस्टर्ब भी नहीं होते।
0: वाह। अच्छा तो खेत को पहले एकदम भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लेते हैं फिर उसमें पौधा लगाते हैं।
1: हाँ।
0: कितने महीने तक पालने पोसने के बाद इसमें फल आता है?
1: ओकरा से दो से तीन महीना में फल आते सर।
0: अच्छा रोपने के बाद।
1: हाँ
0: अच्छा। अब फल आने

0: के बाद वो पकने की स्थिति कितने दिनों में आती है?
1: डेढ़ महीना के लमसम।
0: डेढ़ महीना, कहने का मतलब 3 से 4 महीना में केले की खेती का एक चक्र चलता है।
1: हाँ सर,
0: यानी साल में 2 बार आप ले सकते हैं।
1: हाँ,
0: हाँ। 6 महीने में कहने का मतलब है कि एक चक्र पूरा हो जाता है।
1: देखो सर, लायरता जे छे नी, मने किसान का तत्पर रहले पड़े छे।
0: बिल्कुल।
1: आरो जैसे कि हेठोम फड़ले, फरू जे छे हो 5 हाथ जे छोड़ला छे, ओकरा बीचो बीचो में दे देबे।
0: वाह वाह वाह, जो इधर खत्म होगा तब तक वो शुरू हो जाएगा।
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया बात आप बताए।
1: फल जब कटते नी, तेकरा हम काटै छे, काटी के फरू छोटो करी देबे तो फरू गाछ दूसरो तैयार हो जेते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा राजेश भाई, अभी एक चीज सुनने में आया है, पौधे से यानी कि पुराना जो आपका पेड़ हो गया जिसे आप फल काट लिए, उससे धागा तैयार किया जाएगा।
1: हाँ धागो है चे सर।
0: तो उससे, उसके लिए आप लोगों को संपर्क में कुछ जानकारी है?
1: ना सर, होते जी छे नी सरकार मशीनों से बनाई छे धागा।
0: अच्छा,
1: सुनाई छे।
0: ठीक ठीक,
1: तो सरकारे नहीं करता है हमरा सुनी का सर।
0: मतलब कच्चा माल लेने के लिए आप लोगों तक अभी कोई नहीं आया है?
1: ना कोई ना आवे छे, या खेते में सड़ी गेला।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें जो केला जो आपका जब उपज जाता है, इसको जो आप बेचते हैं, तो बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है?
1: बेचल तक की बताइयो सर, साइकिल पर जे छौ नी डोला बनावे छी डोल।
0: ठीक।
1: ओकरा से जे छे गेलियो यहाँ से जे छे साइकिल लेकर के, कभी तिलकावन जी चलो गेलियो, कभी खंजारपुर चलो गेलियो, कभी आदमपुर गेलियो, कभी वहाँ जे छे नहीं बिकलो नी सर, तो वहाँ जे छे अपन ही रो आकाशवाणी लंग भोला बाबा रो मंदिर छे नी।
0: हाँ,
1: बस महीन ठने जे छे लगा करी के हमरो भोला बाबा सबटा बिक जाए। चलो
0: क्या बात है,
1: भोला
0: बाबा
1: कृपा से।
0: चलिए बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, भोलेनाथ क्या पुजारी भी हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसमें जब बाजार में आप बेच रहे हैं, आपको जितना अभी खेत है,
1: हाँ,
0: जिस तरह से आप केले की खेती कर रहे हैं,
1: हाँ,
0: तो साल में लगभग आपको कितना बचत हो जाता है?
1: बचत तो कभी हो रहा हूँ सर,
0: बीघा के आधार पे।
1: हाँ, बीघा के 10,000-20,000 बहुत हो गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए।
1: हमरा सुनी तो किसान आदमी है ने, बेमौत मर छी।
0: कहने का मतलब, आप जैसे पहले आपने बात बताई कि आंधी तूफान बेवजह बारिश से जो पौधा पेड़ गिर जाता है, उससे नुकसान उठाना पड़ता है आप लोगों को।
1: तकनी तो मान करे छो नी सर कि हम सुनी किसान आदमी आत्महत्या करी लियो।
0: सही बात, लेकिन प्रकृति का आगे किसका जोर चला है राजेश भाई?
1: भगवान जी करे।
0: बस वही बात है, भगवान से हम आप नहीं लड़ सकते।
1: हाँ,
0: लेकिन प्रकृति को भी कहीं कहीं हानि हमने आप नहीं पहुंचाया है। बेवजह गाछ को हम लोग काट लेते हैं, चारों तरफ पक्की पक्की कर रहे हैं, कई नल फैक्ट्री खोल दिए, वातावरण दूषित हो रहा है, तो ये सब स्थिति तो पैदा हम ही लोग कर दिया जो असमय वर्षा हो रही है, असमय आंधी तूफान आ रहा है। चलिए राजेश भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप जो ये बात बताए केले की खेती के बारे में, और वो भी जैविक खाद पे विशेष आपने जोर दिया।
1: हाँ सर, ओकरा मत जे छौ नी, वह खाद जे छौ नी हम सनी उपज करी के बकरी पालै छियौ, 2 भैंस छौ,
0: वाह,
1: 1 गाय छौ।
0: मतलब खेती गृहस्थी के साथ साथ आप पशुपालन भाग का भी काम करते हैं?
1: हाँ सर।
0: चलिए,
1: ओकरे गोबर दे छियो जमा करी के,
0: अपना दूध खाए भी, थोड़ा बेच भी लिए, इनकम भी हो गया है ना?
1: हाँ, बेचै छिये कहाँ सर, यहाँ तो जे छे बाले बच्चा।
0: हाँ, ये बात भी है, घर में बच्चा उतरू है तो भाई पहले उसको खाना जरूरी है। हाँ, सेहत जरूरी है। हाँ, स्वस्थ जब रहेगा उस शरीर से तो दिमाग से भी रहेगा, तभी वो आगे चल के कुछ करेगा। अच्छा
1: है, देखो पानी में भिंगता भिंगता जे छे बचवा गेलो मरी, तो गया बिस्का गेलो।
0: तरीके
1: अब ये दूध जो दे चलो आधो से वो बंद कर ही देलको।
0: अच्छा, क्या कीजिएगा, आप लक्ष्मी को खिलाइए पिलाइए, फिर से तैयार होगी, अपना नया बच्चा देगी, फिर दूध खिलाइए कि नहीं। हाँ, चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा राजेश भाई, आपने इतने अच्छे ढंग से हमारे श्रोताओं को इतना आसानी से बताया कि जब आप किसी भी तरह की खेती में पौधे में अंग्रेजी खाद देते हैं तो उससे कीड़े खोरी की संभावना बढ़ जाती है, और जब जैविक खाद का आप प्रयोग करते हैं तो कीड़े खोरी का कोई नाम निशान ही नहीं है, पौधा ज़्यादा स्वस्थ और फल भी ज़्यादा स्वस्थ मिलता है।
1: हाँ सर, एकरा में तो जे छौ नी हो जे चलू।

0: यूरिया जे देलियो एक मरता तो हमरो गाछे चौपट
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, जैसे बता रहे जल गया था पूरा।
0: हाँ तवा हम सनी जे छन यह अब गोबर आर हो बकरी रो भेनाड़ी सनी जे छन ने घास नी सुखा का कुटी दे छियो महीन करी का आ दे दिलियो खेतों में छिटी करी कर
1: वाह
0: आ ट्रैक्टर से जोतवा दिलियो।
1: खूब बढ़िया खूब बढ़िया। चलिए राजेश भाई हम लोग फिर मिलते हैं और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपको बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छा प्रणाम सर।
1: प्रणाम प्रणाम।
0: आते रहे भाई सर अपने।
1: जरूर जरूर जरूर आएंगे राजेश भाई, जरूर फिर मिलेंगे।
0: ठीक है
2: जी। राजेश भाई को एकदम बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया जानकारी बहुत सरल तरीका से एकदम जो देसी अंदाज में जो इन्होंने अपने किसान भाइयों से बात शेयर की कि कैसे खेती हो और प्रकृति की भी मार कैसी हो जाती है कई कई बार। अब तो हम मौसम की बात कर रहे हैं, खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, तो
1: हाँ,
2: शंकर
1: भाई देखिए ये समय तो हमारे किसान भाइयों के लिए आ गया है अब धान की रोपाई का, है ना। लगभग कुछ किसान भाइयों का बिचड़ा तैयार हो गया है, कुछ का तैयार हो रहा है, तो हमारे किसान भाई जो हैं अब जुताश में लगे हुए हैं, खेत को जोत रहे हैं, पानी के लिए मेड़ बांध रहे हैं।
2: जी जी जी।
1: और मूंग की खेती लगभग अब समाप्ति की ओर है, कुछ फली बच गया जो किसान भाई लोग तोड़ रहे हैं और उसको संग्रहित कर रहे हैं। और रही बात मौसम सूचना की, तो आप कुछ हमारे किसान भाइयों को मौसम सूचना बता दें कि आगे दिनों में क्या होने की संभावना है।
2: जी बिल्कुल,
1: कुछ हम बातचीत करते हैं।
2: जी, मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 से अभी 15 तारीख तक दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं मध्य वर्षा होने का अनुमान है। बांका नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना
1: अच्छा।
2: है। अधिकतम तापमान जो है 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% तथा दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलने का अनुमान है। जी,
1: और किसान भाइयों के लिए सलाह है कि देखिए अभी अरहर की खेती भी, मक्के की, और ये श्री अन्न जिसको मोटा अनाज कहते हैं, और धान,
2: जी,
1: साग सब्जी, ये सारे चीजों को अभी लगाने का समय आ गया है। तो आप उचित समय देकर, आसमान की स्थिति देखकर अपनी खेती बाड़ी में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें, उत्तम प्रभेदों का चयन करें और अपने खेतों में लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और हम लोग एक सुनते हैं पूर्वी।
2: जी,

0: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: जी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अपने कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। तो अपने श्रोताओं की पूर्व प्रसारित वार्ता हम लोग शंकर भाई सुनवाते हैं कि मड़ुआ और कोदो की खेती कैसे होती है। अच्छा। वार्ताकार है हमारे महेश कुमार सिंह जी।
3: आज हम मड़ुआ की खेती के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। मड़ुआ, जिसको हम रागी या खेड़ी के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसको हम फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। परिचय एवं महत्व, बिहार में इसकी खेती ट्राइबल, देहरा तथा पर्वतीय क्षेत्रों के शुष्क भूमि में की जा रही है। लगभग 17,000 हेक्टेयर में उगाए जाने वाली मड़ुआ से 12,000 मीट्रिक टन अनाज उत्पादित होता है। इसके दानों का प्रयोग भोजन एवं औद्योगिक रूप में किया जा रहा है। औषधि गुणों वाली मड़ुआ में पोषक तत्वों तथा रेशों की मात्रा समुचित होती है, जिससे दानों को पीस कर आटा तैयार कर रोटी भी बनाई जाती है और दाने को उबालकर चावल की तरह भी खाया जाता है। मड़ुआ के दानों से उत्तम गुणों वाली शराब भी तैयार की जाती है। दक्षिण भारत में इससे केक, पुडिंग, मिठाइयाँ इत्यादि बनाया जाता है। इसके अंकुरित बीजों से माल्ट बनाते हैं, जिसे शिशु आहार तैयार किया जाता है। मड़ुआ मधुमेह रोगी के लिए भी उत्तम आहार है, क्योंकि इसमें चिपचिपापन वाला ग्लूटीन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका दाना मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम आहार है। इसके दाने में 10.5% प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट, 1.3% वसा तथा 2.3% खनिज लवण होते हैं। मड़ुआ का दाना फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए एवं बी से भी परिपूर्ण होता है। इसके भूसे व हरे चारे का उपयोग पशुओं के आहार के रूप में भी किया जाता है। फसलोत्पादन की दृष्टि से मड़ुआ की खेती शुष्क क्षेत्रों में या जहाँ पर दूसरी मुख्य अन्न की फसलें सुगमतापूर्वक नहीं उगाई जा सकती, वहाँ पर भी मड़ुआ को सुगमतापूर्वक उगाया जा सकता है। आज के परिवेश में अगर हम देखें तो दिन प्रतिदिन सूखे की स्थिति बढ़ती जा रही है और वर्षा की अनिश्चितता तथा नियमित वितरण न होने से भी अन्य फसलें जो है प्रभावित होती हैं। ऐसी स्थिति में, अर्थात सूखे और अकाल की स्थिति में, मड़ुआ को लगाकर वहाँ कुछ न कुछ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सूखे व अकाल को मड़ुआ आसानी से सह लेता है। और तो और फसलों की अवधि भी बहुत कम होती है, 90 से 100 दिन में मड़ुआ तैयार हो जाती है तथा फसलों पर कीट पतंगों व बीमारियों का आक्रमण भी कम होता है। इस तरह से

0: इसकी खेती से लाभ लिया जा सकता है। आजकल अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर दिखने लगा है। वर्षा की कमी तथा अनिश्चितता, तापमान का बढ़ना इत्यादि मृदा जल को भी प्रभावित कर चुके हैं, जिससे फसल उत्पादन के लिए जल की समस्या आ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मड़ुआ जैसे फसलों का महत्व बढ़ जाता है। अतः भविष्य में इन फसलों की खेती विस्तार करके जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है तथा खाद्यान्न आपूर्ति में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन तकनीक की। सबसे पहले बीज की मात्रा। मड़ुआ की उचित खेती के लिए पौधों की उचित संख्या प्राप्त करना बहुत जरूरी होती है, जिसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। अर्थात 8 से 10 किलोग्राम बीज की बुआई 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बुआई से पहले बीजोपचार किया जाता है। बीजोपचार के लिए कैप्टान, थीरम या बाविस्टीन नामक रसायन की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किग्रा बीज की दर से अवश्य उपचारित करना चाहिए। बुआई का समय। मड़ुआ की उचित बुआई का समय मानसून के आगमन के समय शुरू होता है, अर्थात जितना जल्द हो सके मानसून के आने पर तत्काल मड़ुआ की खेती करना चाहिए, मड़ुआ की बुआई करना चाहिए। हालांकि इसकी बुआई जो किसान भाई अभी तक नहीं कर पाए हैं वो पूरे जुलाई महीने तक बुआई कर सकते हैं। दूसरा उचित समय होता है गर्मी में मड़ुआ की खेती करना। तो गर्मी में खेती करने के लिए फरवरी मार्च का महीना सर्वोत्तम होता है। फरवरी मार्च में इसकी बुआई करके किसान भाई गर्मी की फसल को उगा सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए मड़ुआ की सफल उत्पादन हेतु 2 से 3 जुताई करनी चाहिए तथा पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर देना चाहिए। बुआई का तरीका। मड़ुआ को हो सके तो लाइन में बोएं, और यदि लाइन में बोते हैं तो 20 से 22 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बनाकर उसमें बीज को गिराना चाहिए, और बीज को इस तरह से मेंटेन करें कि पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रहे, और मड़ुआ को ज़्यादा गहराई पर नहीं बोना चाहिए। इसको 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोना चाहिए, उससे ज़्यादा गहराई बोने से पौधों का जमाव नहीं होगा। अब बात आती है उन्नत प्रभेदों की। बिहार में अभी बहुत ज़्यादा प्रभेद का टेस्ट नहीं किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा टेस्ट की गई कुछ किस्में हैं, जैसे VR 708, VL 352, GPU 45, GPU एंड VL 348। ये सभी किस्में शीघ्र अवधि वाली किस्में हैं जो कि 90 से 95 दिन का समय लेती हैं और 18 से 20 कुंटल दाने प्रति हेक्टेयर इनसे प्राप्त हो जाती है, और साथ साथ 25 से 30 कुंटल भूसा या कड़वी का भी उत्पादन मिल जाता है।
1: श्रोताओं, आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें और दें अपने शंकर को विदा। नमस्कार।
2: सभी को पूर्व का भी नमस्कार।

प्रस्तुत है प्रादेशिक। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कहा सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। विश्व जनसंख्या दिवस पर रांची में जागरूकता कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने गुमला में की बैठक, समय सीमा के अंदर RTI के लंबित मामलों के निपटारे का दिया निर्देश। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। और रांची में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ आगाज, सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रांची में सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हर माह दिया जाएगा।

0: केंद्रीय मंत्री आज रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री सेठ ने कहा कि वेंडर्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
1: कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो रेड़ी पटरी वाले हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और वर्षों वर्षों से एक ही जगह सामान बेच रहे हैं, कोई बंदूक नहीं उठा रहे, कहीं रोड जाम नहीं है, तो उनको जीने का अधिकार। अब जैसे मोराबादी में जो सब्जी बाजार लगता है बुधवार को और शनिवार, 4 घंटे में हफ्ते भर की वो कमाई कर ले, किसको वहाँ परेशानी है।
0: बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस मौके पर विधायक सीपी सिंह, रांची की मेयर रोशनी खालखो समेत वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एम्स और रिम्स 2 के निर्माण से चिकित्सकों की कमी दूर होगी।
2: आबादी में हम लोग कंट्रोल हैं हम लोग, लेकिन एक चैलेंज है उन तक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम पहुंचाएं, ये हमारा फोकस है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम दें उनको और हमें लगता है कि अब तो लोग जागरूक हो चुके हैं, अब ये चैलेंज नहीं है, चैलेंज है कि बेहतर इलाज हम कैसे करें।
0: इस अवसर पर बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री की अध्यक्षता में गुमला में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित आरटीई मामलों के निपटारे और समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर सही और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयोग लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
3: गुमला जिले में जहां मुझे जो अधिकारियों ने जो बताया हमें बैठक के दौरान कि अभी तक 2024 से लेकर के 2026 तक उन्होंने बखूबी सभी मामलों का निष्पादन भी कर, जो एक अच्छी पहल है। हम समझते हैं कि पूरे राज्य में इस प्रकार से अगर काम होगा तो आरटीआई एक्ट जो है वो प्रभावी रूप से अंतिम लोगों तक जो उसके हकदार है उन तक पहुँचेगा।
0: खूंटी नगर पंचायत के वार्ड 6 और 16 में आज कई पीसीसी सड़क मरम्मत कार्यों का शिलान्यास किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी ने कहा कि जर्जर सड़कों की मरम्मत से स्कूली बच्चों और आम लोगों की आवाजाही सुगम होगी। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क और नाली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने और किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को दुकानों पर निर्धारित मूल्य सूची, उर्वरक संबंधी सूचना चार्ट तथा वैध लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने और अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो कल सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाने, हथियार लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग तथा सभा आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। देवघर के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मतदाता

0: सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण का कार्य तय समय सीमा में शत प्रतिशत और त्रुटि रहित पूरा किया जाना चाहिए। इसे लेकर श्री कुमार ने विशेष टीमों का गठन कर मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
1: सभी को जितने भी वोटर्स हैं यहाँ पे जिनका नाम वोटर लिस्ट में है सभी को दो फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भर के जल्द से जल्द वापस रिटर्न करिए। हम आपके फॉर्म को डिजिटाइज करेंगे, हम आपके फॉर्म को मैप करेंगे आपके माता पिता के साथ, जिससे कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं। जिनके पास कोई मैपिंग डिटेल नहीं है 2003 का, वो भी अपना फॉर्म भर के दे, खाली पद भर के दे, 2003 का कोई हिस्ट्री नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, फॉर्म भर के रिटर्न करिए, प्रथम मतदाता सूची में आपका नाम अवश्य आएगा।
0: खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिले के कोरवा सिंदरी मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक भी घायल हुए, जिनमें से 2 ने रास्ते में दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल एक युवक का रिम्स में इलाज चल रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह पर यौन उत्पीड़न मामले में आवाज उठाने के बाद धमकी देने का आरोप लगाया है। असुंता लकड़ा का कहना है कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग करने पर उन्हें उनका हॉकी करियर समाप्त करने की चेतावनी दी गई।
2: लड़कियों की सुरक्षा के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ तो उसमें मुझे ही धमकी। मैंने देश को मेडल दिया है, देश के लिए मैंने खेला है, देश के लिए काम किया है और धमकियां हम सुनेंगे। आज भी मैं अपनी छुट्टियां लेके जाती हूँ सिलेक्शन में, जब से ये बात पे चर्चा हुई सुधीर गोला के बात पे, उसके बाद से मुझे साइडलाइन पे रखा जा रहा है।
0: योग, रांची जिला योग संघ की ओर से 2 दिवसीय रांची जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज रांची में शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल जूनियर वर्ग की स्पर्धाएं और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कहा सफाई पर विशेष ध्यान देने वाले वार्डों को स्वच्छ वार्ड पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। विश्व जनसंख्या दिवस पर रांची में जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने गुमला में की बैठक, समय सीमा के अंदर RTI के लंबित मामलों के निपटारे का दिया निर्देश। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। और रांची में जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ आगाज, सीनियर वर्ग की स्पर्धाओं में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगासन का किया प्रदर्शन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर पर 7:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं विशेष भेंटवार्ता। विषय है विश्व जनसंख्या दिवस 2026, युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज के लिए और भविष्य के लिए। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा और भेंट करता हैं सुप्रभात राय।
1: श्रोता मित्रों नमस्कार। आज पूरा विश्व बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान है, संसाधन सीमित हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अपने स्टूडियो में आज हमारे बीच आमंत्रित हैं पूर्व उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल नगुछिया डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: आज के इस भेंटवार्ता में हम आपसे जनसंख्या के विषय में व्यापक और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या

0: आज भारत ही नहीं अपितु विश्व के लिए कितनी बड़ी चुनौती है?
1: भारत के लिए तो एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जनसंख्या के मामले में चीन के बाद सबसे बड़ा देश है।
0: तो जनसंख्या के रोकथाम के लिए हमें मुख्य रूप से परिवार नियोजन की आवश्यकता है।
1: हाँ जी सर।
0: तो इस परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ सर क्या है?
1: परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ है कि इच्छित दंपति या अपेक्षित दंपति द्वारा अपने संतान को सीमित करना या अंतराल बढ़ाना, ताकि उनका माँ और बच्चे स्वस्थ रह सकें। यही इसका उद्देश्य है और अर्थ भी यही है इसका।
0: जी, जब भी परिवार नियोजन की बात सर आती है तो अक्सर इसका सारा दारोमदार महिलाओं के ऊपर डाल दिया जाता है। क्या इस परिवार नियोजन में पुरुषों की भी समान भूमिका है?
1: हाँ, बच्चों का जन्म लेना पुरुष और महिला दंपति दोनों का सहयोग होता है, इसलिए सिर्फ महिला को ही दोषी देना अपेक्षित नहीं है, ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों की सहभागिता रहती है। इसमें पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि महिलाएं।
0: लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब भी परिवार नियोजन की बात आती है तो अक्सर महिलाओं को आगे किया जाता है, पुरुष का जो आंकड़ा है इस विषय में काफ़ी कम है। तो लगता है कि इसमें व्यापक प्रचार प्रसार की ज़रूरत है।
1: हाँ, परिवार नियोजन अपनाने में महिलाओं की सहभागिता ज़्यादा है।
0: जी,
1: ये पूर्वाग्रह के कारण है, अशिक्षा के कारण है, लोगों की जानकारी के अभाव में ऐसा विचार हो गया है।
0: डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि छोटे परिवार के क्या फायदे हैं?
1: सीमित संसाधनों का बड़े परिवार होना पर उनका बहुत ही तुच्छ मात्रा में वितरण हो पाता है। संसाधन सीमित रहने पर कम बच्चे होंगे तो उनको उचित रख रखाव और देखभाल होगा और काफ़ी संसाधनों का उचित वितरण भी होगा।
0: बच्चों की देखरेख और परवरिश सही ढंग से हो पाएगी, अगर
1: शिक्षा भी उचित मिलेगी,
0: भी सही मिल पाएगी,
1: और उनका विकास भी सही,
0: परिवार की आर्थिक स्थिति भी
1: सही रहेगी।
0: हाँ। अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो कैरियर कॉन्शस हैं, लेकिन कैरियर बनाने के चक्कर में अपनी शादी वो काफ़ी लेट से करते हैं, इस वजह से कई तरह की दिक्कतें आती है। तो हम आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कहाँ तक उचित है और इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे?
1: शादी की वास्तविक उम्र कानूनन रूप से पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखा गया है, और इससे भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है अपनी शिक्षा के अनुसार, आर्थिक स्थिति के सुधार को देखते हुए उम्र को लोग बढ़ाते हैं, बढ़ाया जा सकता है। देर से शादी करने पर कभी कभी अनेक समस्याएँ भी आ जाती हैं, जैसे कि अगर महिलाएं की उम्र ज़्यादा हो जाए
0: जी,
1: तो बच्चों में विकलांगता हो जाती है
0: जी,
1: जन्मजात विकृति पैदा हो जाती है, या इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा न होने की शिकायत होने लगती है। इसलिए सही उम्र में महिलाओं की उम्र 18 और पुरुषों की उम्र 21 होने पर ज़्यादा उपयुक्त शादी का समय है ये
0: जी,
1: ताकि दंपति रिप्रोडक्टिव एज में रहें अपने
0: जी। डॉक्टर साहब, हम ये आपसे आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहेंगे कि अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में या कोई पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ पर शादी कम उम्र में कर दी जाती है, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? जच्चा और बच्चा पर इसका क्या प्रभाव है और परिवार पर इसका क्या प्रभाव है?
1: प्राचीन काल में या पहले में बाल विवाह की प्रथा थी, बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। उसका दुष्प्रभाव ये होता था कि महिलाओं का शरीर जो है बच्चे गर्भ धारण करने के उपयुक्त नहीं होता था, उनका शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था, इसलिए वो अपने परिवार के बारे में अपना निर्णय खुद नहीं ले पाते थे, वो परिवार के दबाव में ऐसा करते थे, शादी हो जाती थी, बच्चे भी कम उम्र में पैदा हो जाते थे। इसका काफ़ी दुष्प्रभाव बच्चे पर और माँ पर भी पड़ता था।
0: अक्सर बच्चे कमजोर हो जाते थे, माँ का भी स्वास्थ्य निरंतर गिरते रहता था।
1: बच्चे कमजोर हो जाते थे, माँ का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, माँ को खून की कमी या अन्य बीमारियाँ भी हो जाया करती थी।
0: डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे जो हैं ऊपर वाले की देन है, वो अपने भाग्य से आते हैं, लेकिन इसका कुछ वैज्ञानिक तथ्य है कि दो बच्चों के बीच में कितना अंतर रहना चाहिए ताकि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बेहतर रहे।
1: स्वास्थ्य की रक्षा हेतु देखते हुए बच्चे का अंतराल 3 वर्ष कम से कम होना चाहिए, ताकि माँ भी पुनः गर्भ धारण करने के योग्य हो जाए और

0: बच्चे भी विकसित और स्वस्थ हो जाएं।
1: इसका विज्ञापन ही आता है, विज्ञापन भी अक्सर हम लोग रेडियो टीवी में सुनते हैं कि 3 साल का अंतर अच्छा, स्वस्थ माँ मजबूत बच्चा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा।
1: इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि परिवार नियोजन के सुरक्षित और उपलब्ध साधन कौन कौन से हैं।
0: परिवार नियोजन के ये 2 तरह के साधन होते हैं, एक अस्थाई और अस्थाई।
1: जी,
0: अस्थाई में पुरुषों के लिए कंडोम, महिलाओं के लिए ओरल पिल्स, कॉपर टी और इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कि कॉपर टी रखा जाता है और एक और होता है जिसके इम्प्लांट बोलते हैं, आजकल नया तरीका आया है कि महिलाओं के यूट्रस में एक इम्प्लांट लगा दिया जाता है, उससे कुछ कुछ तत्व समय से न धीरे धीरे रिलीज होते हैं और गर्भ धारण करने में रुकावट डालते हैं। और अस्थाई में हो गया वैसेक्टोमी, जिसमें पुरुषों की नसबंदी कहा जाता है, और महिलाओं में होता है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें ट्यूब को बंध्याकरण कर दिया जाता है ताकि अस्थायी रूप से वो गर्भधारण नहीं कर सके।
1: इन चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं डॉक्टर साहब?
0: सरकार के इसमें फैमिली प्लानिंग और MCH प्रोग्राम चलता है।
1: जी,
0: फैमिली प्लानिंग के 1952 में भारत में सर्वप्रथम चालू किया गया था विश्व में, और चीन से चूंकि दूसरे नंबर पर जनसंख्या में है, इसलिए भारत के लिए जनसंख्या एक ज्वलंत समस्या है। इसके रोकने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी तत्परता से ग्रामीण स्तर पर इस कार्यक्रम को लागू किया है। इसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ पूर्ण रूप से सहयोग करती हैं।
1: जो भी परिवारजन है ग्रामीण क्षेत्र के, पुरुष हो या महिला हो, अगर वो नसबंदी कराते हैं तो क्या सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद भी उनको मिलती है?
0: हाँ, पुरुषों और महिलाओं को भी इस रूप में आर्थिक मदद दी जाती है। अस्थाई बंध्याकरण या नसबंदी कराने पर महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को आर्थिक लाभ दी जाती है।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर हम लोग देखते हैं कि शहरी क्षेत्र तो योजनाओं को सही ढंग से लागू हो जाती है योजनाएं शहरी क्षेत्र में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन को अपनाने में बड़ी बाधाएं आती हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में इस परिवार नियोजन को अपनाने में बड़ी बड़ी बाधाएं कौन सी हैं?
0: ग्रामीण क्षेत्रों में बाधाओं में मूल रूप से अशिक्षा है।
1: जी,
0: लोगों को सही जानकारी नहीं होती है और स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता भी एक कमी है, ताकि दूर लोगों को जाना पड़ता है।
1: जी,
0: इस कारण से, और एक अंधविश्वास रहता है
1: जी
0: कि बच्चे तो भगवान की देन हैं,
1: जी,
0: इसलिए बच्चे को रुकना नहीं चाहिए, ये सब भी अशिक्षा का कारण है।
1: जी,
0: इसके चलते लोग परिवार नियोजन के उपाय नहीं अपना पाते हैं।
1: ये भी धारणा है कि भगवान मुंह दिए हैं तो अन्न भी देंगे ही।
0: हाँ जी,
1: इसका प्रभाव कालांतर में पड़ता है कि शिक्षा स्वास्थ्य कई क्षेत्रों में वो बच्चे पिछड़ जाते हैं,
0: क्योंकि
1: आर्थिक स्थिति उस तरह की नहीं रहती है।
0: जी,
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार नियोजन को लेकर लोगों में कौन कौन सी गलत धारणाएं हैं।
0: लोगों के गांव में मानना है कि संतान ईश्वर की देन है।
1: जी,
0: जबकि ऐसा नहीं है, जब दंपति चाहेंगे तभी उन्हें संतान होगा। और दूसरा गलत धारणा है कि एक बेटा हो जाए, एक पुत्र हो जाए, और इसके पुत्र की इच्छा में परिवार की संख्या बढ़ती जाती है।
1: जी,
0: इससे परिवार नियोजन असफल होने का डर रहता है।
1: कहीं कहीं एक पुत्र हो भी जाता है तो लोग चाहते हैं कि दो पुत्र हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: हाँ,
1: ये सब चीज़ अक्सर हम लोग अपने ग्रामीण परिवेश में देखते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को शादी और परिवार नियोजन के बारे में क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए।
0: जब युवा अपने आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएं, ताकि अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकें, पालन पोषण कर सकें और उचित शिक्षा दे सकें, तभी उन्हें शादी करनी चाहिए, ताकि अपने परिवार और पत्नी का उचित रख रखाव देखरेख कर सकें और उचित शिक्षा दे सकें।
1: यदि कोई दंपत्ति परिवार नियोजन के बारे में सलाह लेना चाहता है तो वह कहाँ संपर्क कर सकता है?
0: ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
1: जी,
0: या CHC
1: जी,
0: या अनुमंडलीय अस्पताल या जिला अस्पताल में फैमिली प्लानिंग काउंसलर का एक पद होता है।
1: जी,
0: उनकी जवाबदेही होती है परिवार नियोजन संबंधित संपूर्ण जानकारी इच्छित दंपति को देना है।
1: जी, आपके अनुसार

0: स्वस्थ और समृद्ध परिवार बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है?
1: छोटा परिवार सुखी परिवार,
0: जी
1: यही मेरा संदेश है।
0: अक्सर विद्वानों में एक विरोधाभास है कि कुछ कहते हैं कि जनसंख्या समस्या नहीं बल्कि संसाधन है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं?
1: सीमित संसाधन को अगर अधिक लोग उपयोग करेंगे तो संसाधन कम होते जाएगा
0: जी,
1: लोगों को कम संसाधन मिल पाएंगे अगर इसलिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। खासकर युवा पीढ़ी की जनसंख्या किसी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है।
0: विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम है युवा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
1: इसमें मेरा विचार है कि स्वस्थ युवा पीढ़ी
0: जी,
1: छोटा परिवार सुखी परिवार और संपन्न परिवार होता है
0: जी।
1: इसी दिन यही मेरा कहना है।
0: डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी युवा पीढ़ी एक समझदारी के साथ सही उम्र में शादी करें, परिवार को नियोजित रखें ताकि उनका परिवार सुखी रह सके, शिक्षित हो सके और संसाधनों का उपयोग सही ढंग से कर सके ताकि विश्व में संसाधनों की कमी ना हो।
0: धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, आप पूर्व उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल नगुछिया में कार्यरत रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: विश्व जनसंख्या दिवस 2026 युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज के लिए और भविष्य के लिए, इसी विषय पर अभी आपने विशेष भेंटवार्ता सुनी। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा और भेंटकर्ता थे सुप्रभात राय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। शाम के 7:25 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
4: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, शुगर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
3: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम का किया उद्घाटन, कहा लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि। प्रदेश में आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक निर्दलीय समेत 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर 13 जुलाई को करेंगे नामांकन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी और पूर्णिया समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और जन कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। श्री राधाकृष्णन गया जी के पिपाट परिसर में विधानसभा सदस्यों के

0: संविधान सदैव हमारा साझा मार्गदर्शक होना चाहिए। मैं राज्यसभा में प्रायः कहा करता हूँ कि बहस, चर्चा और कभी कभी व्यवधान भी अंततः किसी निर्णय तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि निर्णय के बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।
1: उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित बिहार के बिना विकसित भारत का लक्ष्य साकार नहीं हो सकता है।
0: हमको चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर लड़ना होता है, यही लोकतंत्र है। यह दलों के आधार पर लड़ा जाता है, यह बात ठीक है, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो हम सभी दलों के नेताओं का यह दायित्व बनता है कि हम मिल करके बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए कार्य करें। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित प्रदेश नहीं।
1: प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा कि जन सेवा को प्रभावी बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों को संसदीय और विधायी कार्यों के हरेक पहलू का प्रशिक्षण देने का फैसला स्वागत योग्य है।
2: बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए आयोजित इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में भाग लेकर बेहद खुश। संयुक्त रूप से किया गया ये कार्यक्रम सदस्यों के संसदीय ज्ञान, न्यायिक कौशल, लोकतांत्रिक जवाबदारी और अधिक मजबूत बनाने की ओर एक जरूरी पहल है।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की अपील की।
3: बिहार में जो विधायी कार्य हो उसमें माननीय विधायकों की सहभागी कैसे हो, इसकी चिंता के लिए 2 दिवसीय बैठक बुलाएंगे और 2 दिन लोगों को सीखने का ही कार्यक्रम करना है। अभी तक माननीय मंत्री, माननीय विधायक, हम लोग दूसरे को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे विधायी कार्य में आप जुड़ सकते हैं, और महामहिम उपराष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, और इससे ज्यादा गंभीर बात नहीं हो सकती है कि बिहार के विकास में आपका एक एक योगदान मिले, ये पूरा विधानसभा चाहता है।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि यह प्रबोधन कार्यक्रम देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती प्रदान करेगा।
4: इसलिए जनप्रतिनिधियों का निरंतर प्रशिक्षण लोकतंत्र की आवश्यकता है, औपचारिकता नहीं। यह प्रबोधन कार्यक्रम संसदीय नियमों, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधेयकों, समितियों, वित्तीय नियंत्रण, संसदीय शिष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर सार्थक विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।
1: समारोह को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी संबोधित किया। 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय कार्यप्रणाली और विधानसभा की नियमावलियों से परिचित कराना है। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह से इस सुविधा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के आग्रह पर यह सेवा 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगी।
3: सारी सुविधा आपको घर पे मिले, पूरी सरकार की ये सोच है कि निबंधन का काम जो भी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनके घरों पर पहुंचकर मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट हमारा पहुंचे और आपको लाभ वहां मिले। मुख्यमंत्री विजेंद्र बाबू ने आग्रह किया है कि इसको 80 से 75 कर दीजिए, तो मैं जरूर ये विश्वास दिलाता हूँ बिहार के लोगों को कि जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं सबका रजिस्ट्रेशन उनके घर पर हमारा मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट पहुंचेगा और आपके घर पे ही रजिस्ट्रेशन करेगा।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पेपरलेस निबंधन, सीओ द्वारा निबंधन संबंधी पूर्व जानकारी और जीआईएस तकनीक के माध्यम से स्थल निरीक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह व्यवस्था राज्य के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी। बांकीपुर विधानसभा

0: उपचुनाव के लिए अब तक 4 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है उनमें प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के प्रेम शंकर प्रसाद, प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव और निर्दलीय सिकंदर कुमार तथा मिथिलेश कुमार शामिल हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे।
1: जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, तो बाकीपुर के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते वो काम कर रहे हैं। 13 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। उनमें जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त की चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा, चुनाव में भी पूरी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता।
0: जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर 13 जुलाई को ही अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित है। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच एनडीए के उम्मीदवार बदले जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रिक्त हुई सीट पर पार्टी को सक्षम उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। राजद ने कहा है कि हार के डर से भाजपा ने प्रत्याशी बदला है। राजद ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय समुदाय से पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि हरिमंदिर साहिब में दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र श्री चोड़े साहिब मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय मूल के लोग भारत आएं तो पटना साहिब जाकर इनका श्रद्धापूर्वक दर्शन अवश्य करें।
2: साथियों, मैं आपसे पवित्र जोड़े साहब की भी बात आज करना चाहता हूँ। मेरे एक साथी हैं श्रीमान हरदीप पुरी जी। पुरी परिवार के पूर्वज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार थे। हरदीप पुरी जी ने मुझे यह बताया था, उनका परिवार सिख संगत को सौंपना चाहता था। फिर हमने एक समिति बनाई और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें।
1: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के अधिकांश स्थानों में, उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों में, जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय जूनियर बालक रग्बी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने महाराष्ट्र को एकतरफा मुकाबले में 31-5 से पराजित किया। इससे पहले बिहार की बालिका टीम तीसरे स्थान पर रही थी। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच जारी है। आरा में गठित न्यायिक जांच आयोग के समक्ष आज भरत तिवारी के माता पिता ने अपना बयान दर्ज कराया। वहीं उनके भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके तथा व्यक्तिगत कारणों से बाद में बयान दर्ज कराने के लिए समय मांगा। आयोग ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। बांका के अमरपुर दोहरे हत्याकांड का मुख्य शूटर सचिन सिंह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया है। अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर एक हाईवा ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बगहा की एक अदालत ने मानव तस्करी के एक मामले में पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी। कटिहार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाछी टोला डहरिया चौक के पास से पुलिस ने 385 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। अररिया जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक चार पहिया वाहन से 18 किलो गांजा के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की है। बक्सर जिले के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य स्तर पर जारी टेली कंसल्टेशन जिला रैंकिंग में औरंगाबाद जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लखीसराय में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शिवनगर वनरोपण अभियान का आज शुभारंभ किया गया। किशनगंज में बीएसएफ की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में पूर्णिया आदिवासी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम विजेता बनी। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि। प्रदेश में आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक निर्दलीय समेत 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर 13 जुलाई को करेंगे नामांकन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज सिवान सारण सीतामढ़ी और पूर्णिया समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुपौल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी।
6: सुपौल जिले में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। जिले के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही वर्षा से मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है। इधर पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले दिनों कोसी का जलस्तर 1,85,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जो इस वर्ष अब तक का सर्वाधिक डिस्चार्ज है। ताजा अपडेट के अनुसार कोसी बराज से आज सुबह 10 बजे तक 1,07,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से 86,250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। जल संसाधन विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के 91 में सुपौल जिले ने जून माह में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के 91 में उपलब्धियों के आधार पर जिलों की रैंकिंग निर्धारित मापदंडों और कार्य निष्पादन के आंकड़ों के आधार पर की गई। इसमें सुपौल जिले ने 89.61 अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो भी वादे किए थे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में सुपौल सांसद दिलेश्वर कामैत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विद्युत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद ने विभिन्न विद्युत योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले में विद्युत संरचना से जुड़े निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सांसद ने सभी संबंधित अधिकारियों को विद्युत योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिले में निर्माणाधीन अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने बीते दिन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को आवासीय विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कर हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बीते दिनों जिले के विभिन्न पंचायतों में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निष्पादन किया गया तथा आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। इधर जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सचिदानंद सुमन ने जिले के 29 नव नियुक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति प्रदान की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी नव नियुक्त विक्रेताओं को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी तथा समयबद्ध तरीके से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है।
1: अभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले की हलचल।
7: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपाय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
8: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है कार्यक्रम और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद।
9: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 205.76 मीटर।

पर 7:52 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी। कार्यक्रम के आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं एक भजन, गुरु तेग बहादुर का।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान की अगली कड़ी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच आ गया। थैंक यू, बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो रिस्पांस दिखाया है उड़ान कार्यक्रम में। ढेर सारे सवाल पूछे गए जो हम नंबर देते हैं 75208080। जी हाँ, 75208080 पर आपने BCA और BBA के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं अपने करियर के लिए। और मानो ऐसा लगता है राजेश हूँ आपका, राजेश को, कि हमारा ये उड़ान कार्यक्रम लाना आर्किड बिजनेस कॉलेज की तरफ से सफल हो रहा है इस साल भी। हम हर साल आते हैं अभी ही और आपको जानकारियां देते हैं। सवाल ये भी पूछे गए कि BCA और BBA करके आप क्या कर सकते हैं। आपने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तो जवाब मिला कि आप वहां से भी रोजगार ले सकते हैं और अगर जो आगे पढ़ना चाहें तो MBA और MCA भी कर सकते हैं। और इसी आरके बिजनेस कॉलेज, जो इस कार्यक्रम को जिनकी तरफ से हम लेकर आ रहे हैं, जो कि आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना में है, उनका संस्थान है ABC कॉलेज ऑफ एडुकेशन। वहां से आप MCA और MBA भी कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे, हाँ ढेर सारे सवाल आए जिसके जवाब दिए गए, मन गद गद हो गया। और ये जो नंबर है ना 25208080 7520800800, सचमुच अपनी प्रासंगिकता बना लिया। आप युवा साथियों की तरफ से फोन आए हमें भागलपुर से, सुपौल से, कटिहार से, बक्सर से, दरभंगा से, लहरिया सराय से, जी हाँ लहरिया सराय से, पटना से भी फोन कॉल्स आए, बहुत अच्छा लगा। और इसमें युवतियों, हाँ छात्राओं, हाँ के भी फोन कॉल आए, जो हमें और भी अच्छा लगा, जो एक उन्नत भविष्य है हमारे बिहार का ये दर्शाता है। बहरहाल BCA और BBA की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कर सकते हैं। आज हमने बातचीत की है स्पेशली आप लोगों के लिए। आशीष जी आज नहीं होंगे, आज होंगे आर्किड बिजनेस कॉलेज के वैसे युवा और युवती जो BCA और BBA कर रहे हैं और फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्लानिंग लेकर बैठे हैं कि उन्हें करियर में ये मिल जाएगा और कितना कॉन्फिडेंट है। उनकी बातचीत जो हमारे से हुई, आपके राजेश से हुई, मैं आर्किड बिजनेस कॉलेज गया और उन लोगों से बात किया रैंडमली, इसने कि नहीं कि छाट लिया, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, हमने रैंडमली बातचीत किया। अभी उसके अंश आपको हम सुनवाएंगे। फिलहाल एक बात बता दें, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए लेकिन ये जरूर देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका, फैकल्टीज कैसे हैं, ये सारी बातें उन लोगों ने बोली है अपने अपने बातचीत में। और कहां से एफिलिएशन है, एफिलिएशन जो परमानेंट है या टेम्पररी है। आर्किड बिजनेस कॉलेज जो है ना, ये स्थायी मान्यता प्राप्त है BCA और BBA के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। 27 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ काम कर रहा है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश सुनिए।
3: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
4: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
3: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहाँ से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
3: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
5: आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
2: और अब बारी आती है कि हम आज जिन युवाओं से हमने बातचीत की है उनके बात को आप तक पहुंचाएं। अमन है, हाँ अनुप्रिया है, खुशी है, अनुराग है, ढेर सारे लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की। तो आइए शुरुआत करते हैं अमन से, फिर अनुप्रिया, फिर अनुराग और फिर खुशी। और अगर समय बचेगा तो और भी बहुत सारे लोग अपनी बात आपको इस उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से, इस रेडियो के माध्यम से अंतिम युवा तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। आपका नाम?
6: अमन कुमार।
2: कहाँ के रहने वाले हो?
6: लखीसराय।
2: क्या कर रहे हो आप?
6: मैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से बीसीए कर रहा हूँ।
2: बीसीए ही क्यों कर रहे हो?
6: बीसीए क्योंकि अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आईटी फील्ड इंटरफेयर ना कर रहा हो। तो अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, अगर आपको इस चीज से प्रेम है, तो आप

0: फिलहाल बीसीए कर सकते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से।
1: आर्केड बिजनेस कॉलेज को कैसे चुना?
0: यहाँ से मेरे मामा ने बीसीए किया था और आज वो गुड़गांव में टीसीएस में जॉब कर रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक जगह बनाती है कि अगर आप आर्केड से अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हो तो आप भी एक वेल प्लेस्ड हो सकते हो।
1: इस कोर्स को कर लेने के बाद अगर जो आप जॉब करना चाहते हैं तो आर्केड बिजनेस कॉलेज से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा आपका, कुछ चाहत होगी आपकी, क्या?
0: मैं अगर बताऊं तो पिछले साल की बात है कि एक मृणाल पाठक जो हमारे सीनियर थे उन्होंने टीसीएस में जॉब लिया है, वो भी 8 लाख के पैकेज के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बताती है कि आर्केड जॉब देती है। अब बच्चे में काबिलियत है कि नहीं ये बच्चे पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अपना पूरा टाइम अपने करियर को दें तो हम भी जॉब ले सकते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से।
1: बहुत अच्छी बात कही अमन आपने कि अगर आप में काबिलियत है, आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप खुद से नौकरी ले लेंगे। और आपने ये भी कहा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ने के बाद नौकरी मिलती है। बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट है आपका। एक बात अब हम आपसे कहना चाहेंगे, जो लोग सुन रहे हैं इस रेडियो प्रोग्राम को, पूरा बिहार सुन रहा है, उन युवा साथियों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, कुछ कहिए।
0: अगर आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि नौकरी मिल जाए तो फिर मत पढ़ो, मेरा यही कहना है। अगर पढ़ाई से प्रेम है, कर सकते हो, तो आके आर्केड बिजनेस में पढ़ो, क्योंकि आर्केड बिजनेस कॉलेज कहीं ना कहीं पहले दिन से ही ये सिखाता है कि इफ यू हैव द स्किल देन यू फिक्स्ड योर प्राइस।
1: अच्छा एक बात बताइए, क्या आप शुरू से ही क्षेत्र में जाने वाले थे या कहीं और जाना चाहते थे और वहां नहीं हुआ जिसकी वजह से आप इधर आए?
0: मैंने भी जेई का तैयारी किया था, मुझसे नहीं हुआ, मैं अच्छे कॉलेज पे नहीं जा पाया। तो मैं उनके लिए बता दूं कि आर्केड बिजनेस कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छी जगह है अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हो। तो
1: चलते चलते आर्केड बिजनेस कॉलेज के विषय में कुछ कहना चाहिएगा?
0: इस कॉलेज को 27 वर्षों का अनुभव है और इस कॉलेज को किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार का नंबर वन कॉलेज है, पाटलिपुत्रा से परमानेंटली एफिलिएटेड है।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800। याद रखें 7520800800।
1: उड़ान, उड़ान कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं बीसीए और बीबीए की। जी हाँ, बीसीए और बीबीए वो पढ़ाई है जिसको करके रोजगार मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आज हम कॉलेज की तरफ से या गार्जियन से या और किसी से, करियर काउंसलर से, किसी से बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज के स्टूडेंट से। वो क्या सोचते हैं, हाँ क्या करते हैं, क्या फ्यूचर है उनका, उन्होंने क्यों चुना इस कोर्स को, ये जानना चाहते हैं। और आप युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा ये, अगर आप बीसी और बीबीए करना चाहते हैं तो आर्केड बिजनेस कॉलेज जो 27 वर्षों से लगातार आप युवाओं के साथ बीसी और बीबीए के लिए काम कर रहा है, उनसे आपको बात करनी चाहिए। नंबर है 7520800800, 7520800800। और अब बेगूसराय की खुशी रस्तोगी क्या कहती हैं, इनसे सुनते हैं।
4: माय नेम इज खुशी रस्तोगी। मेरे एक दोस्त आर्केड में पढ़ता था, उसी ने मेरे को रिकमेंड किया है आर्केड बिजनेस कॉलेज के लिए। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। और यहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब यहाँ के फैकल्टीज वगैरह बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में जाए, या फिर आपको बीसीए वगैरह या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में आना है तो उसमें आए।
1: बिल्कुल बिल्कुल खुशी, टाइम वेस्ट तो कभी नहीं करना चाहिए। समय की बर्बादी अपनी बर्बादी है। आप पैसा फिर से कमा सकते हैं लेकिन गुजरा हुआ वक्त आपको फिर से वापस नहीं मिल सकता। अगर आपने एक बार गलत कोर्स का चुनाव कर लिया, गलत इंस्टीट्यूशन का चुनाव कर लिया तो बहुत मुश्किल में पढ़ सकते हैं, सिर्फ वर्तमान में नहीं भविष्य में भी। इसीलिए बीसीए और बीबीए हम बार बार कहते हैं और सालों से इसी समय आते हैं उड़ान कार्यक्रम लेकर और आप सबों को मोटिवेट करते हैं। आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से ये कार्यक्रम लेकर आते हैं हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आप डायल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, 7520800800 ये नंबर है, 7520800800। और अब आइए मिलते हैं।
5: मेरा नाम अनुराग कुमार है, मेरा घर सिवान हुआ, मैं यहाँ पटना आया था मुझे आईटी फील्ड में ही काम करना था और उसी में जॉब करना था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बीसीए कर लेता हूँ, बीसीए एक अच्छा कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अच्छा ग्रेजुएशन का कोर्स है। फिर मैंने इसको ऑनलाइन रिव्यू पे चेक किया कि पटना में सबसे अच्छा बीसीए के लिए कौन सा है। ऑनलाइन पता चला कि आर्केड बिजनेस कॉलेज अच्छा है, बाकी दो तीन कॉलेजेस भी आए। मैंने सबका ऑफलाइन रिव्यू भी चेक किया कि ऑनलाइन सच नहीं हो सकता है, कुछ भी डाल देगा लोग। मैंने ऑफलाइन भी चेक किया कि क्या क्लासेस रेगुलर चलती हैं, क्या काम होता है यहाँ पे। मैंने वो सब पता किया, मेरा एक मित्र भी था इसमें और उसको भी भेज के पता किया, हॉस्टल्स में भी बाकी पता किया, तब पता चला कि नहीं, सही में क्लासेस रेगुलर होती हैं और यहाँ के बच्चों पे दबाव बनाया जाता है। क्योंकि आजकल के मैं बच्चों में देखता हूँ कि आजकल के जो भी बच्चे होते हैं वो उन पे दबाव नहीं बनाया जाए तो वो बस कोर्स करे, ख़त्म करे, निकल जाए, बस वो ख़त्म करने आते हैं। कि बच्चे अगर अगर जैसे सप्ताह में 5 दिन तो रेगुलर क्लासेस होते हैं, कभी कभी शनिवार को भी क्लासेस हो जाते हैं, जैसे सोमवार से शुक्रवार तो क्लासेस होते ही हैं, शनिवार को कभी कभी क्लासेस हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है कि बच्चों को अटेंडेंस बनाया गया कि 75% से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है, इसका मतलब कि बच्चों में कमी है, तो फिर उस एक हर महीने एक अटेंडेंस रिपोर्ट बनाया जाता है। वो रिपोर्ट पेरेंट्स ग्रुप में रहता है, पेरेंट्स ग्रुप जो कि बच्चों के ग्रुप से अलग होता है, उसमें कोई बच्चा नहीं रहता है, उसमें सिर्फ फैकल्टी मेंबर रहते हैं और पेरेंट्स रहते हैं। तो पेरेंट्स को डायरेक्ट पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कॉलेज गया है कि नहीं गया है। तो इससे बच्चों पे दबाव बना रहता है कि हमेशा कॉलेज जाना है, कॉलेज में पढ़ाई करना है, कॉलेज ऐसा इन्वायरमेंट देता है। ये हमारा कॉलेज सुंदर सा है, छोटा सा है, अच्छा सा है, इतना अच्छा है कि इसमें जो इन्वायरमेंट वो बनता है, वो वातावरण बनता है पढ़ाई का, इससे बच्चों पे दबाव बनता है कि अगर मरने का मन नहीं भी करे, आगे सिर्फ बैठ भी जाओ तो सुन लेने से उतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आपको जॉब मिल सकता।
1: अच्छा, कहा जाता है कि प्लेसमेंट में या जॉब के लिए ये 100% असिस्टेंस देते हैं, आप लोगों को क्या पता चला, क्या पता चला यहाँ जॉब की क्या संभावनाएं हैं?
5: जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस कॉलेज में आने के बाद आप अगर इनकी बातों को मान ले, अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाए, सिर्फ इनकी बात मान ले, जो फैकल्टी मेंबर है, जो हमारी एचओडी मैम है, जो यहाँ के प्लेसमेंट सेल वाले हैं, सिर्फ उनकी बात मान ले, वो जो जो कह रहे हैं वो कर ले, सिर्फ उतना करने से आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है अच्छी कंपनी।
1: पूरा बिहार सुन रहा है इस कार्यक्रम को, आकाशवाणी के 6 रेडियो स्टेशन से हम पहुंच रहे हैं। आप हमें ये बताइए, बेगूसराय से आप पटना तो आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी घर पर बैठे हैं, सोच रहे हैं, उनको बताइए कि आर्केड बिजनेस कॉलेज कैसा है, क्या है, कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा रह सकता है।
5: आर्केड वो कॉलेज है, आर्केड बिजनेस वो कॉलेज है जो हमें वोकेशनल कोर्स के माध्यम से अच्छे जगह पर जॉब दे सकता है। आर्केड बिजनेस वो कॉलेज है जो हमें पढ़ाई के साथ साथ अदर स्किल्स पे भी ध्यान देने के लिए काफी प्रेशर बनाता है। आर्केड बिजनेस कॉलेज हमारे एंटरटेनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए अदर कल्चरल एक्टिविटीज या फिर अदर को करिकुलम एक्टिविटीज भी कराते रहती है।
1: बहुत खूब, और अब बारी आई अनुप्रिया की। अनुप्रिया,
6: मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं आर्केड बिजनेस कॉलेज की छात्रा हूँ, बीसीए सेकंड ईयर में। मेरा घर नवादा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे को बिहार में कॉलेज लेना था और मेरे को आईटी फील्ड में और टेक फील्ड में इंटरेस्ट था, तो मैंने सर्च किया और रिव्यूज देखा तो मेरे को पटना का बेस्ट कॉलेज आर्केड लगा और यहाँ रेगुलर क्लासेस होते हैं जो कि मेरे को वो सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने एडमिशन लिया।
1: आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन कि आप उड़ान कार्यक्रम में आए और पूरे बिहार के युवा साथियों और उनके माता पिता तक सही बातें रखी। जी हाँ, बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत ही प्रोफेशनल है। उड़ान कार्यक्रम हर साल इसी समय हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस बार भी लगातार लेकर आ रहे हैं, सुनना नहीं भूलिएगा। और जो अगर आपके पास कोई सवाल है ना, तो इस कार्यक्रम को हम जिनकी तरफ से लेकर आते हैं, आर्केड बिजनेस कॉलेज 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई करवा रहे हैं और लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। इनका नंबर है 75 20 800 800, इस नंबर पर फोन करें और बात करें। तब तक राजेश को दे इजाजत, नमस्कार।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
8: उड़ान अभी आपने ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम है रजनीगंधा। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म बरसात में।

1942 ए लव स्टोरी। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। और रजनीगंधा कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मन्ना डे के साथ लता मंगेशकर को, फिल्म है चोरी चोरी।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब दिल्ली से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: उठा ली।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव दिनों में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
0: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789154915237141 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
5: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना, कहा दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, ते कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामूहिक

0: उतना उसे लौटाए भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहाँ आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो जगन्नाथो चढ़ी नंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नव दिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्न वेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ट संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायत कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है, फांसी। इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा ये रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भौंर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञा मार आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौंरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ

0: से बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक पथी पांचन होता है, आम, केला, पनस, सपुरी, सपका, ये 5 प्रकार फल भोग होता है। पथी होता है मूंग और नारियल का पूरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निष्ठानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मूठ वाले झाड़ू से छेरा कोहरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दवद करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में ये परिचित करा सकें। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कम्प्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीक्षिता भी रिलीज की है। मोस्टली अमरपाली और संकरण के संकरण से बना है पर कुछ किस्में उसमें दशहरी और लाल सिंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
5: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
6: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो

0: दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देखी जाती है।
1: ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटन अटारी ये हमारा ध्रुव वह के जन्म है। उस दिन हम अटारी में रहें, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले आईस। वहाँ हमार लालन पालन हुईस। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो सब ज्ञान हो गए तो लोग लैका ला छोड़ के चल देवे। भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ। माँ गावे आरु गण दिया के बारूद कुदरिया जी बारूद कुदरिया पैरी।

0: या या जनकारी राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हो, कबड्डी खेलत रहे हो, सुर खेलत रहे हो, खो खो खेलत रहे हो, तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के गनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से, बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगाओ है, तो सुने बराते की वो छोटे से चटाई निकाली सो कथे में बैठ बेटा में बैठ। अब कतका कन सुने ऐसे की कही तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सकी हूँ इसी की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगाता हूँ जब पंडवानी गाता हूँ। तो सबसे गंगा रूपी जो जनता जनार्दन के सम्मान हमल ल मिलते वो गदगद कर देते, ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं के स्वर्ग में हनका, ऐसे लागते मोर मन लागते।

जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है उन मन रोना शुरू कर देते, हम उतना सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देथन ते हमला कई कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है अब आगे बार मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझने लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जो शिला गदा पकड़ के रिंग था तेकर कारण हुई है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हो तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐती तेती बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे, कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूर यारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत अच्छा लागते, लेकर मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरला भेटे और नरसिंह ला भेटे खंभा भूर बिनत सौरी ला भेटे क्यों टल भेटे गंगा मा।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय

संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. Ramavarapu Madhuri Devi is accompanied by Sri Mahadasu Yedukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Suryaprasad on the ghatam.
0: Dr. R. Madhuri Devi, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: Dr. Ramavarapu Madhuri Devi begins her concert with Shakti Ganapati, a composition of Muthaiya Bhagavatar in Natharagam Rupak Talam.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावुडूरु सूर्य प्रसाद।

0: का तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Adithalam.

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the Ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahindragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed the 9-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagat Roy is one of the members of the committee. Union Railways and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub, with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres. Legendary playback singer S. Janaki, fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 today in Mysuru, Karnataka, after battling age-related health issues. Spanning over 6 decades, her career saw her singing in nearly 48,000 songs in multiple languages, including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. She is conferred with 33 state film awards. She was chosen for Padma Bhushan in 2013. Food safety and standards.